सुप्रभात, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे ही वंदना का स्वर हमारे कानों में गूंजता है तो हमारा मन स्वतः ही भक्तिमय हो जाता है। श्रोताओं, आज सोमवार का दिन है और सोमवार को आराध्य देव होते हैं शिव जी। तो आइए हम सब भोले बाबा के चरणों में स्तुति करते हैं इस प्यारे से भजन के साथ।

भोले बाबा। श्रोताओं, अभी आपने सुना ये भजन कुमार विशु की आवाज में। श्रोताओं, शिव का नाम बहुत सुखदाई है। ओम नाम जब जब हम जपते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और यदि ये ओम नाम किसी रिदम के साथ, किसी भजन के साथ, किसी गायन के साथ हो तो और भी हमारे लिए सुखदाई होता है। तो आइए अनूप जलोटा की आवाज़ में ऐसा ही एक प्यारा सा भजन सुनते हैं,

श्रोताओं, अनूप जलोठा की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा भजन। और श्रोताओं, जब जब हम कभी भटकते हैं तो हमारे सच्चे गुरु जीवन की सही राह दिखाते हैं। जब जब हम सतगुरु के बताए कदमों पर चलने लगते हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने लगते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आइए सतगुरु की गुणों की रचना और उनकी प्रशंसा का ये प्यारा सा शब्द हम आपको सुनवा रहे हैं सुरिंदर कौर की आवाज़ में।

श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना ये प्यारा सा शब्द सुरिंदर कौर की आवाज़ में। और आइए अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं राजा सरफराज और साथियों की आवाज़ में ये नात।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी राजा सरफराज और साथियों की आवाज़ में ये प्यारी सी नात। और आइए अब वंदना कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुना रहे हैं हरिहरन, सुरेश वाडेकर, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन।

श्रोताओं, इसी भक्तिमय रचना के साथ वंदना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में आवाज है भूपेंद्र सिंह की और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषादराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए। वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आवाज थी भूपेंद्र सिंह की और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए चिंतन।
1: चिंतन करना मनुष्य की प्रकृति है। अपने जन्म के उपरांत सभी प्रकार के ज्ञान उत्पादन के साथ साथ ही मनुष्य चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मस्तिष्क की सुषुप्तावस्था, अचेतावस्था या समाधि की अवस्था को छोड़कर सभी अवस्थाओं में मनुष्य चिंतन करता है। यह चिंतन दोनों प्रकार का होता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। जब नकारात्मक चिंतन बहुत अधिक होने लगता है तो व्यक्ति के विचार, कल्पनाएं और भाव किसी संभावित चुनौतियों का सामना करने की योजना में लग जाते हैं। इसी को चिंता कहते हैं। चिंता की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ये चुनौतियां वास्तविक के बजाय काल्पनिक होने लगती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती और व्यक्ति लगातार भयग्रस्त रहने लगता है और कभी कभी वह अवसाद की स्थिति में चला जाता है। उसके लिए अनिश्चितताओं से भरे वातावरण का सामना करना मुश्किल हो जाता है। जैसे यदि पिताजी को कभी कैंसर हो गया तो क्या होगा। आजकल पैसे और स्वास्थ्य की चिंता सर्वाधिक महसूस की जाती है। ये चिंताएं अपने आप में एक समस्या बनकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे व्यक्तियों का चयन, कार्यशैली, नींद, खानपान, नित्य कर्म, स्वास्थ्य और व्यवहार प्रभावित होने लगते हैं। अनेक बार तो व्यक्ति को निरर्थक चिंतित रहने का अभ्यास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के सामने यदि किसी समय कोई समस्या उपस्थित ना भी हो तो व्यक्ति आदतन यही सोचकर चिंतित हो जाता है कि फिलहाल कोई समस्या क्यों नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निकट भविष्य में एक साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। चिंतित रहने के इस अभ्यास पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। आज के परिवेश में ये संभव नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए, किंतु चिंता से भय मुक्त होना बहुत जरूरी है। यह अभ्यास के माध्यम से ही किया जा सकता है। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान में इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य हुआ है, किंतु अभी तक इसकी कोई एक सर्वमान्य परिष्कृत औषधि बनी हो ऐसा प्रकाश में नहीं आया है। कुछ समय के लिए चिंता मुक्त होने के लिए नींद की दवा ले लेना अथवा नशे का शिकार हो जाना कोई उपचार नहीं होता। अंततः चिंता को दूर करने के लिए अपने अभ्यास को ही ठीक करना आवश्यक है। इसका सर्वोत्तम उपचार निर्विवाद रूप से योग एवं प्राणायाम है। चिंता को हम सकारात्मक रूप में देखने और उसका उपयोग करने का प्रयास करें तो एक नियंत्रित मात्रा में चिंता व्यक्ति के लिए लाभकारी भी साबित होती है। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार का आत्मानुशासन अपनाया जा सकता है, जो चिंतित रहने की प्रवृत्ति पर विराम लगा सकता है। इसका एक उपाय यह है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में एक चिंतन समय का निर्धारण कर ले, जैसे प्रातः 6 से 6:30 तक। इस समय में व्यक्ति खाली बैठकर केवल चिंतन ही करे और किसी अन्य कार्य में संलिप्त न हो। इस चिंतन समय के अलावा किसी अन्य समय में यदि कोई समस्या उपस्थित हो तो उस पर तत्काल विचार करने के बजाय उसे चिंतन समय तक टाल दे और चिंतन समय में ही उस पर विचार करे। इससे व्यक्ति को हमेशा चिंतित रहने के अभ्यास से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा किसी समस्या को लेकर यदि हम अपने आप से कुछ प्रश्न करें तो उससे भी निरर्थक चिंतित रहने के स्वभाव में सुधार हो सकता है। जैसे क्या समस्या ऐसी है जिसका वास्तव में सामना करना ही है अथवा ये एक कल्पना या शंका मात्र है। यदि ये एक कल्पना या शंका मात्र है

0: तो क्या इसकी कोई पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है? और यदि पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है तो उस तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी कभी अपने से कुछ प्रश्न करना भी चिंता मुक्त करने में मदद करता है। जैसे मन में आई दुश्चिंता किस आधार पर है? क्या एक खास स्थिति पर अधिक सकारात्मक दृष्टि से विचार किया जा सकता है? जिसका डर है वही बात होने की संभावना कितनी है? यदि ऐसा होता है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? कोई विचार मुझे किस प्रकार सहायता और किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है? यदि मेरे किसी मित्र के सामने ऐसी कोई समस्या उपस्थित हो तो मैं उसे क्या सुझाव दूंगा, आदि आदि। निष्कर्ष यह है कि चिंता को चिता मत बनने दीजिए, अपितु अपने आप को संवारने, सावधान रखने और दूरदृष्टि के लिए इसका उपयोग करें। दिनचर्या में योग, प्राणायाम व ध्यान को स्थान दें। जीवन को बोझ या समस्या न बनने दें, अपितु सार्थक बनाएं और आनंद से जिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आज का विषय था चिंता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अनिल चौधरी का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: पहले एक मुक्तक दे रहा हूं पर्यावरण के ऊपर, क्योंकि पर्यावरण का क्या हाल है सब लोग देखते हैं, सब लोग जानते हैं। एक मुक्तक देखें। पर्यावरण बचा लो भाई वरना सब पछताओगे, पीछे पीछे एक बीमारी के दूजी घर लाओगे। सोच रहे हैं हम तो सरपट दौड़ रहे हैं पश्चिम को, आंख मिचोली गरियों खेली कल को धोखा खाओगे। और एक मुक्तक और दे रहा हूं इसी पर। रूठ जाएंगे अगर पौधे यहां, रूठ जाएंगे अगर पौधे यहां, टूट जाएंगे सभी सपने यहां। और घर हिफाजत की कमी छोड़ी अनिल, फिर तड़पती देखना सांसे यहां। मुक्तक के बाद आता हूं हिंदी गजल की तरफ और एक हिंदी गजल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हम दोनों के बीच हुआ क्या वो जाने या मैं जानू, हम दोनों के बीच हुआ क्या मैं जानू, वो जाने या मैं जानू, आंखें बरसी या दिल तड़पा वो जाने या मैं जानू। और दूसरा शेर देखें। प्रेम वफा की बातें कहते कैसे यार सरे महफिल, शर्म भरी आंखों का जलवा वो जाने या मैं जानू। और एक शेर और देखें। एक एक पल में याद के नस्तर कितने चुभे दिल के भीतर, तुम क्या जानो प्रेम पिया क्या वो जाने या मैं जानू। और देखें एक बारीक सा शेर। किसने अश्क के मोती भेजे किसने दर्द भरी रातें, किसने अश्क के मोती भेजे किसने दर्द भरी रातें, किसने किसको दिल भेजा था वो जाने या मैं जानू। शेर देखें। कैसे प्यार हुआ दोनों में कैसे चढ़े सूली रिश्ते, कैसे प्यार हुआ दोनों में कैसे चढ़े सूली रिश्ते, कैसे प्यार हुआ सपना कैसे प्यार हुआ अब सपना वो जाने या मैं जानू। और देखें शेर। कितने कितने तीर चलाए नफरत के इस दुनिया ने, कितने कितने तीर चलाए नफरत के इस दुनिया ने, हमने मिलकर क्या क्या झेला वो जाने या मैं जानू। और अंतिम शेर देखें। चांद सितारे जुगनू सबिये अपनी जगह पर फिर भी अनिल, चांद सितारे जुगनू सबिये अपनी जगह पर फिर भी अनिल, रात का किसने चैन चुराया वो जाने या मैं जानू। और इसी को आगे बढ़ाता हूँ और एक हिंदी गजल और प्रस्तुत करता हूँ। आई ना किरदार है दिल तक दिखा बैठा हूँ मैं, आई ना किरदार है दिल तक दिखा बैठा हूँ मैं, तुम समझते हो अभी भी कुछ छिपा बैठा हूँ मैं। और ध्यान चाहूंगा आप सभी का। जिन सवालों के कोई उत्तर नहीं देता मुझे, जिन सवालों के कोई उत्तर नहीं देता मुझे, जिंदगी के उन सवालों से घिरा बैठा हूँ मैं, जिंदगी के उन सवालों से घिरा बैठा हूँ मैं। और अपने भीतर आदमियत को कभी देखा नहीं, अपने भीतर आदमियत को कभी देखा नहीं, फिर भी यारो आदमी जैसा बना बैठा हूँ मैं, फिर भी यारो आदमी जैसा बना बैठा हूँ मैं। और ये सरे महफिल छलक जाएंगी आंखें हैं मेरी, ये भरी महफिल छलक जाएंगी आंखें हैं मेरी, दर्दे गम की बात ये किसको सुना बैठा हूं मैं। और शेर देखें। वो तो मुझसा आदमी है उसके वश में क्या है रब, वो तो मुझसा आदमी है उसके वश में क्या है रब, फिर क्यों उसके सामने सर ये झुका बैठा हूं मैं। और अंतिम शेर देखें। अब भरोसे के लिए बाकी नहीं है कुछ अनिल, अब भरोसे के लिए बाकी नहीं है कुछ अनिल, इश्क की नादान वादी में लुटा बैठा हूं मैं, इश्क की नादान वादी में लुटा बैठा हूं मैं। और थोड़ा सा रंग बदलता हूं और एक मुक्तक की ओर ले चलता हूं। माँ बाप का अनादर तिरस्कार किस तरह से आज की युवा पीढ़ी के बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखी है। डर लगता है कल बूढ़ा हो जाऊंगा, डर लगता है कल बूढ़ा हो जाऊंगा, शायद रो रो सबको हाल सुनाऊंगा। डर लगता है कल बूढ़ा हो जाऊंगा, शायद रो रो सबको हाल सुनाऊंगा। दुनिया के बच्चों को मैं भी देख रहा, दुनिया के बच्चों को मैं भी देख रहा, गीत विरह के शायद कल दोहराऊंगा, गीत विरह के शायद कल दोहराऊंगा। और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि ये चार पंक्तियां जरूर सुने। बच्चों के संदेश के रूप में चार पंक्तियां मैंने लिखी हैं। मात पिता जैसा धरती पर प्यार नहीं, मात पिता जैसा धरती पर प्यार नहीं, मात पिता बिन सांसों में संचार नहीं, मात पिता जैसा धरती पर प्यार नहीं, मात पिता बिन सांसों में संचार नहीं, मात पिता ना होते क्या खिलती बगिया, मात पिता ना होते क्या खिलती बगिया, मात पिता बिन जीवन का आधार नहीं, मात पिता बिन जीवन का आधार नहीं। और मुक्तक के बाद फिर आपको एक हिंदी गजल की ओर ले चलता हूं। देखें, देखता हूं कैसा मंजर हो गया, देखता हूं कैसा मंजर हो गया, दिल तो दिल था ये भी पत्थर हो गया, दिल तो दिल था ये भी पत्थर हो गया। और ये देखिए आप शेर, आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा, आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा, एक नदी से मैं समंदर हो गया, आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा, एक नदी से मैं समंदर हो गया। और आंधियां उठने लगी हैं इर्द गिर्द, आंधियां उठने लगी हैं इर्द गिर्द, फिर से लुटने का मुझे डर हो गया, और मैं तो आजर था पत्थर तराशने वाला, मैं तो आजर था मगर ये क्या हुआ, पत्थरों के साथ पत्थर हो गया। आगे बढ़ता हूँ और एक हिंदी दूसरी गजल प्रस्तुत करता हूँ। सपनों की ताबीर बदलनी पड़ती है, सपनों की ताबीर बदलनी पड़ती है, अपनी खुद तकदीर बदलनी पड़ती है, सपनों की ताबीर बदलनी पड़ती है, अपनी खुद तकदीर बदलनी पड़ती है, दीवारों की सीलन हद से जब बढ़ती, दीवारों की सीलन हद से जब बढ़ती, घर की हर तस्वीर बदलनी पड़ती है। और शेर देखें, ऐसे कैसे मंजिल कदमों में होगी, ऐसे कैसे मंजिल कदमों में होगी, पैरों की जंजीर बदलनी पड़ती है, ऐसे कैसे मंजिल कदमों में होगी, पैरों की जंजीर बदलनी पड़ती है। और ऐसे तो दुश्मन हावी हो जाएगा, ऐसे तो दुश्मन हावी हो जाएगा, जंग लगी शमशीर बदलनी पड़ती है, जंग लगी शमशीर बदलनी पड़ती है। ओ कैसा मंजर देख रही है अब आंखें, कैसा मंजर देख रही है अब आंखें, रांझे को भी हीर बदलनी पड़ती है, देख रही हैं कैसा मंजर अब आंखें, रांझे को भी हीर बदलनी पड़ती है। और इन आंखों की मजबूरी ने ये देखा, इन आंखों की मजबूरी ने ये देखा, दिल जैसी जागीर बदलनी पड़ती है, सपनों की ताबीर बदलनी पड़ती है, अपनी खुद तकदीर बदलनी पड़ती है। आता हूं फिर गजल की ओर। मेरे भीतर चीख रही है अरमानों की आंधी, मेरे भीतर चीख रही है अरमानों की आंधी, और उसे उकसाती है ये बरसातों की आंधी, मेरे भीतर चीख रही है अरमानों की आंधी, और उसे उकसाती है ये बरसातों की आंधी। और देखें शेर भाई, सूरज पर गुब्बार गर्द का आ बैठा हो जैसे, सूरज पर गुब्बार गर्द का आ बैठा हो जैसे, दूर तलक बिखरी है मुझमें सन्नाटों की आंधी, सूरज पर गुब्बार गर्द का आ बैठा हो जैसे, दूर तलक बिखरी है मुझमें सन्नाटों की आंधी। और शेर देखें, अरमानों के जिस्म को पहले लोहा कर लूं मैं भी, अरमानों के जिस्म को पहले लोहा कर लूं मैं भी, फिर चलती है चल जाए वो आघातों की आंधी, अरमानों के जिस्म को पहले लोहा कर लूं मैं भी, फिर चलती है चल जाए तो अरमानों की आंधी, फिर चलती है चल जाए तो आघातों की आंधी। और शेर देखें, ये कैसा माहौल बना डाला मिलकर हम सबने, ये कैसा माहौल बना डाला मिलकर हम सबने, दिख रही है दिन में भी काली रातों की आंधी, ये कैसा माहौल बना डाला मिलकर।

0: ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्ण पदके द्वे कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आज इसके अंतर्गत जानकारी का विषय है संगीत सुनिए स्वस्थ रहिए।
4: संगीत हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी शांत करता है। संगीत का प्रभाव शब्दों से भी ज्यादा गहरा होता है। संगीत हमें तरोताजा एवं एकाग्रचित रखता है। संगीत भावनात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को इकट्ठा करता है। इन शक्तियों को संतुलित कर एक स्तर कायम करने का नाम है संगीत। संगीत दरअसल कला और विज्ञान दोनों ही है। विज्ञान के रूप में ये हमारे बेसिक मेटाबॉलिज्म, श्वास लेने की प्रक्रिया और लो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। वहीं दूसरी तरफ चिंता और हताशा को कम करता है, जो बहुत सी बीमारियों की जड़ है। संगीत एंडोर्फिन्स को बढ़ाकर दर्द कम करता है और प्रोटीन के उत्पादन को भी बढ़ाता है, जो शरीर के खावों को जल्दी भरता है और किसी भी तरह के संक्रमण को दूर रखता है। लेकिन संगीत की खूबियां केवल साइंस के जरिए समझाई नहीं जा सकती। संगीत एक कला है, दिमाग को शांत रखने की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, रिश्तों को मजबूत बनाने की, तनाव को कम कर राहत पहुंचाने की। अकेलेपन के एहसास को भी संगीत के माध्यम से कम किया जा सकता है। हर व्यक्ति के लिए संगीत का अपना अलग मतलब होता है। कुछ लोगों के हिसाब से ये उन्हें प्रकृति के नजदीक ले जाता है, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हें संगीत शांति देता है या एनर्जी देता है और उनकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। संगीत का उपयोग ध्यान लगाने या एकाग्रचित होने में भी किया जा सकता है। संगीत हमें एक आरामदेह स्थिति तक पहुंचाने में मदद करता है। जब संगीत दिमाग के दाहिने भाग को प्रेरित करता है, तब ये कल्पना शक्ति को बढ़ाता है और भावनाओं को जागृत करता है, बल्कि हमें आराम पहुंचाकर तरोताजा भी बनाता है। संगीत एक तरह से जोड़ने का काम करता है, जिसे कोई भी दूसरा माध्यम इतने प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। संगीत एक सरिया है, जिसके माध्यम से लोग अपनी अच्छाइयों और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। संगीत जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। इसका इस्तेमाल बच्चों, किशोरों, वयस्कों या बुजुर्गों, यानी हर आयु वर्ग की सभी तरह की समस्याओं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, मानसिक चोट, शारीरिक असमर्थता या किसी तरह का जबरदस्त दर्द, यहाँ तक कि मां को प्रसव के दौरान होने वाले दर्द तक में राहत पहुंचाने के लिए संगीत इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम आराम की सख्त जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसी भी ऐसी स्थिति में बैठ जाएं जो आपको आरामदायक लगती हो, जैसे किसी बिस्तर पर लेट जाएं, 4-6 तकिए लगा लें या किसी कुर्सी पर बैठ जाएं। अब कोई ऐसा संगीत शुरू करें जो आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। ऐसे समय में हम अपनी अनकही भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी साज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम परेशानी में हैं, तो संगीत सुनकर या उसकी चर्चा करके भी फायदा पा सकते हैं। एक इंसान के लिए सबसे जरूरी काम है बिना अवरोध बोलना। कोई साधारण सा यंत्र बजाना सीखने से ही उन बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि देखी गई है जो मानसिक रूप से कमजोर हैं। गाना गाना या किसी भी तरह का संगीत सुनना, जैसे जैज, क्लासिकल, मेटेलिक या फिर राग, हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। संगीत से उपजी कल्पनाएं आपको अतीत की कड़वाहटों से खींचकर बाहर ला सकती हैं। संगीत के साथ होने वाले प्रयोगों का तो कहीं अंत नहीं है, लेकिन इसके फायदे जरूर हैं। बातचीत करने की कला को संगीत विकसित करता है। संगीत व्यवहार की असमानता को कम करता है। संगीत दर्द को

0: दूर करने में भी सहायता करता है। संगीत शारीरिक और मानसिक तनावों में भी आराम पहुंचाता है। इतने सारे फायदे हैं संगीत सुनने के, तो फिर देर किस बात की? संगीत सुनिए और स्वस्थ रहिए।
1: संगीत सुनिए, स्वस्थ रहिए। इस विषय पर अभी आपने सुनी जानकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं सघन कृषि आज की आवश्यकता के संबंध में। किसान भाइयों भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और सीमित कृषि भूमि तथा खाद्यान्न की बढ़ती मांग ने खेती क्षेत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। किसान भाइयों ऐसी स्थिति में सघन खेती आज एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाती है। किसान भाइयों सघन कृषि वो पद्धति है जिसमें कम भूमि पर आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों तथा कृषि यंत्रों का उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। किसान भाइयों वर्तमान समय में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग स्थिर है। किसान भाइयों शहरों के विस्तार, औद्योगिकरण तथा कारण कृषि भूमि में कमी आ रही है। ऐसे में केवल खेती का क्षेत्र बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है। किसान भाइयों प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सघन कृषि को अपनाना आवश्यक हो जाता है। ये पद्धति खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाती है। किसान भाइयों सघन कृषि के अंतर्गत वैज्ञानिक खेती पर विशेष बल दिया जाता है। उन्नत किस्म के बीज, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, आधुनिक सिंचाई तकनीकें जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई तथा कीट एवं रोग नियंत्रण के उपाय उत्पादन को कई गुना बढ़ा देते हैं। किसान भाइयों इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र किसानों का समय समय पर श्रम बचाते हैं। इससे खेती अधिक लाभदायक बन जाती है। किसान भाइयों कम समय में अधिक उत्पादन हमारे किसान भाई ले लेते हैं और साथ ही साथ आज देखते भी हैं कि हमारे किसान भाई एक ही खेत में सह फसली ले रहे हैं, साथ ही साथ मिश्रित खेती कर रहे हैं। एक मुख्य फसल उगाकर दूसरी खाली जगह में भैया एक ऐसी फसल उगा लेते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को आमदनी निरंतर होती रहती है। किसान भाइयों भारत में हरित क्रांति सघन कृषि का एक सफल उदाहरण है। इसके माध्यम से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। आज भी यदि किसानों को आधुनिक तकनीकों, प्रशिक्षण की सुविधा मिले, कृषि उत्पादन में और अधिक वृद्धि संभव है। किसान भाइयों सघन खेती किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि अधिक उत्पादन से उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। किसान भाइयों सघन खेती में हमारे किसान भाई आज जो फसलों में अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, अत्यधिक खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं, तो भाई हम अपने किसान भाइयों को थोड़ी सी ये जानकारी भी देना चाहेंगे यहीं पर कि भाई आप अपने फसलों में जैविक कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें और अपने खेतों की मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखें। क्योंकि भाई हम देखते हैं कि जहां अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने से हमारी मिट्टी का तापमान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, जिससे सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों हम ऐसा काम करना है जिससे भैया हमारे दोनों घर बचे रहें, भाई मानव स्वास्थ्य भी ठीक रहे, हमारी खेती किसानी की जो भूमि है वो भी भैया उपजाऊ बनी रहे। तो किसान भाइयों सघन कृषि आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है और सीमित संसाधनों में बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों के साथ सघन कृषि को अपनाया जाए तो न केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाएगी बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाएगी। तो किसान भाइयों इस तरह से यदि आप अपनी खेती किसानी करेंगे तो आप अपनी खेती किसानी से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेती एवं अन्य विषयों

0: से जुड़ी जानकारी के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों नमस्कार।
1: खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानकारी सघन कृषि आज की आवश्यकता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। श्रोताओं, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। आज सुबह 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जिले की हलचल। इस कार्यक्रम में कानपुर और अमरोहा जिले की हलचल आप सुनेंगे और ये प्रोग्राम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। ज्ञान, जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सवेरे 7:31 पर। इस कार्यक्रम में जानकारी के विषय होंगे विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और साथ ही चर्चा होगी विश्व महासागर दिवस पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत सुबह 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे गीता पंत की आवाज में रोहेलखंडी लोक गीत। सुबह 9:50 पर कार्यक्रम बात आसपास की में आज वाचन स्वर और संकलन होगा दिव्यम कंडवाल और ईशिका कौशिक का। सुबह 10:00 आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर। आज इस कार्यक्रम में बातें होंगी वर्ष 2026 के विषय में। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे आज दिन में 11:30 पर। दोपहर 12:05 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित मनीराम का गाया राग पट दीप की विलंबित एक ताल और द्रुत तीन ताल। तबले पर संगत करेंगे उस्ताद निजामुद्दीन खान और सारंगी पर साथ देंगे उस्ताद सुल्तान खान। परिवार जगत कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर आज चर्चा का विषय होगा विश्व महासागर दिवस। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एक भेंटवार्ता जिसका विषय रहेगा मॉडर्न करियर में टेक्नोलॉजी की भूमिका। इसके अंतर्गत डॉक्टर रेशु शर्मा से बातचीत करेंगी ज्योति पाल। लोकधारा कार्यक्रम में आज दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे कुमारी मीना की आवाज में जौनसारी लोकगीत। शाम 5:00 आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े प्रोग्राम और श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है आप सुनेंगे। समय याद रखिएगा शाम 5:00। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के क्रम होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा और क्रैश कोर्स पैसा वसूल। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:18 हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।
2: प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के कई मंत्रीगण ने कल अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। श्री चौधरी ने पार्टी के जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
5: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी, और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है।
4: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
6: मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
4: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के विभिन्न प्राविधानों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री ने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से लेकर विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता तथा पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
4: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की समीक्षा करते हुए कहा कि डेटा, एआई और डिजिटल अवसंरचना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। प्रदेश ने वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट से अधिक की अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। श्री मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 जून को सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव मिलने पर अग्रिम बधाई दी।
8: मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
4: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
9: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
4: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने बस के किराए में भी 50% छूट देने का फैसला लिया है। इस छूट का लाभ अभ्यर्थियों द्वारा अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं।
10: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: कल से घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। प्रदेश भर में एक बार फिर तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:32 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

श्रोताओं नमस्कार। आपके फेवरेट प्रोग्राम सूरज के साथ साथ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो मित्र जसवंत सिंह। श्रोता मित्रों, सुबह का मौसम वैसे भी मनभावन होता है। जब सूरज अपनी किरणों से जैसे हम सबको बांधने का प्रयास करता है, पक्षी गीत सुनाकर हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और सुबह का वो सुहाना मौसम और भी सुहाना हो जाता है जब हम अपनों के साथ बातचीत करते हैं, जब प्राकृतिक आकर्षण के साथ अपने और अपनों की प्यारी प्यारी बातें घुल मिल जाती हैं, तो वो लम्हे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। श्रोताओं, ये कार्यक्रम जानकारी और मनोरंजन का खजाना है, तो जानकारी के क्रम में आज हम आपको बता दें कि आज पूरा विश्व मना रहा है विश्व महासागर दिवस। जी हाँ श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 8 जून को प्रतिवर्ष ये दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का एक खास उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन में महासागरों के महत्व को समझें, महासागरों से किस तरह पृथ्वी का और प्रकृति का संतुलन बना हुआ है ये सब जानें। मानव जीवन में महासागरों की इतनी भूमिका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासागरों को पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दी है। जी हाँ, लंग्स ऑफ द अर्थ। यूएनओ ने तो ये भी सिद्ध कर दिया है कि हमारी सांसों के लिए 50% ऑक्सीजन का उत्पादन महासागरों के माध्यम से ही होता है। और इतना ही नहीं श्रोता मित्रों, महासागर पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को भी नियंत्रित करते हैं। ये महासागर आज दुनिया के अरबों लोगों के लिए भोजन और आजीविका का भी साधन है। श्रोताओं, आपको बता दें कि पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता महासागरों में ही पाई जाती है। महासागरों में लाखों ज्ञात और अज्ञात प्रजातियां मौजूद हैं जो मानव जीवन को और भी सरल बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में भी महासागर अहम भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, मानव जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है उसका लगभग 30% भाग तो महासागर ही अवशोषित कर लेते हैं, यानी हमारे जीवन को कितना सरल और कितना आसान बनाते हैं ये महासागर। श्रोताओं, जैव विविधता और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है ये महासागर। तो आइए महासागरों से ही जुड़ा हुआ एक गीत भी हम आपको सुनवाते हैं जिसके माध्यम से होगा आपका मनोरंजन।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक को फिल्म मझधार से। गीत लिखा था समीर ने और धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला अभी हम और भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ ज़रा रुकते हैं कुछ ज़रूरी संदेशों के लिए।
1: अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
6: तो इंतजार किस बात का,
5: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
6: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
5: और हमारा ईमेल आईडी है
6: akashwaninajibabad@gmail.com।
5: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। आइए फिर से जानकारी का सिलसिला करते हैं शुरू। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया में एक और विशेष दिन मनाया जा रहा है। जी हां श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ये दिन भी आज ही के दिन यानी 8 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। श्रोताओं, वर्ष 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जो इस तरह की बीमारियां हैं यानी ब्रेन ट्यूमर और उसकी गंभीरता के बारे में जानकारी मिल जाती है, और जब सही समय पर मिलती है जानकारी तो वो उसकी रोकथाम के लिए प्रयास भी करते हैं और दूसरों को जागरूक भी कर देते हैं। ऐसी जानकारी जिसके द्वारा ब्रेन ट्यूमर की शीघ्र पहचान हो सके, ब्रेन ट्यूमर की रोकथाम के उपायों का प्रचार प्रसार करना भी विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। श्रोताओं, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के अवसर पर आम जन को ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों की जानकारी दी जाती है। सामान्य लक्षणों की बात करें तो लगातार इसमें सिरदर्द बना रहता है, उल्टी आने की संभावना रहती है, उल्टी आती रहती हैं, समय समय पर दौरे पड़ते हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और कभी कभी तो पक्षाघात यानी पैरालिसिस भी हो जाता है। ऐसे परिवर्तन जब शरीर में आने लगते हैं तो समझ लीजिए वो लक्षण हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना है। तो ऐसी जानकारी खास तौर से इस दिन पर दी जाती है, और इस रोग से बचने के लिए भी नियमित व्यायाम और मनोरंजन करना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए श्रोताओं, जब बात मनोरंजन की आ ही गई है तो अब हम आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ही तरफ, और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा जिसे फिल्माया गया है डिंपल कपाड़िया पर। क्यों है डिंपल कपाड़िया का ये खास गाना, इसके विषय में भी हम आपसे चर्चा करेंगे।

0: फिलहाल सुन लेते हैं बॉबी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस समय हम बात कर रहे हैं कुछ जानकारियों की। श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं तिथि विशेष के बारे में। तो श्रोता साथियों, रेडियो के लिए आज का दिन बेहद खास है। जी हाँ, क्योंकि आज ही के दिन यानी 8 जून सन 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी कर दिया गया था। और श्रोताओं, आज से ठीक 90 साल पहले इसे भारतीय सरकारी रेडियो सेवा के नाम से जाना जाता है। तो आज रेडियो के और आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, आज का दिन और भी एक वजह से खास है, क्योंकि आज के दिन यानी 8 जून सन 1948 को पहली बार एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी थी। श्रोताओं, मुंबई से काहिरा और जिनेवा होते हुए लंदन जाने वाली इस ऐतिहासिक उड़ान में 35 यात्री सवार थे। और चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन जन्मे कुछ विशेष महान व्यक्तित्व। तो श्रोताओं, 8 जून सन 1957 को भारतीय हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और लोकप्रिय अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का जन्म हुआ था। डिंपल कपाड़िया, जिन्होंने केवल 16 वर्ष की उम्र में बॉबी फिल्म से अभिनय की शुरुआत की और अपनी डेब्यू फिल्म से ही वो रातों रात स्टार बन गई थी। श्रोताओं, आज ही के दिन एक और प्रसिद्ध अभिनेत्री का भी जन्म हुआ, और 8 जून सन 1975 को जन्म हुआ था लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का। शिल्पा शेट्टी वे आज फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ फिटनेस आइकन और उद्यमी भी हैं, और उन्हें वर्ष 1933 में फिल्म बाजीगर में डेब्यू करने का मौका मिला, और 2007 में ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर जीतकर शिल्पा शेट्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई थी। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई कुछ ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने जन्म लिया, और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे महान शख्सियतों के विषय में भी जिन्होंने आज ही के दिन दुनिया को कहा अलविदा। 8 जून वर्ष 2009 को प्रसिद्ध पटकथा लेखक, नाट्य निदेशक, महान कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का इंतकाल हुआ था। उन्हें साल 1969 में संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड और 1983 में पद्मश्री और इसके साथ साथ वर्ष 2002 में पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से भी नवाजा गया। श्रोताओं, इतना ही नहीं, हबीब तनवीर जी वर्ष 1972 से 1978 तक संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भी रहे। 8 जून सन 1968 को भारतीय कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायक मैदुरे मणि अय्यर का देहांत भी हुआ था। वे अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध थे। मैदुरे मणि अय्यर कल्पना स्वरम ने ऐसी उपलब्धि हासिल की संगीत के क्षेत्र में जो उन्हें कला निधि सम्मान से नवाजा गया, 1960 में राष्ट्रपति सम्मान और 1962 में ईसाई पैरा रिग्नर सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। और श्रोताओं, आइए अब जान लेते हैं अखबारों की खास सुर्खियां। मेरठ से प्रकाशित समाचार पत्र हिंदुस्तान लिखता है कि भारत की जन्म दर में ऐतिहासिक गिरावट। देश के इतिहास में पहली बार कुल प्रजनन दर 2.3 से घटकर 1.9 पर आ गई है। वहीं दिल्ली में प्रजनन दर फिनलैंड से भी कम 1.2 हो गई है। घटती प्रजनन दर पर अमेरिकी उद्योगपति एलन

नाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप केंद्र बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटाइट अनुदान, सीड कैपिटल सहायता और पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। श्रोताओं, बात कर लेते हैं मेरठ से ही प्रकाशित समाचार पत्र अमर उजाला के विषय में। अमर उजाला लिखता है कि दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत चीन समझौते को बताया चिंता का कारण। उन्होंने कहा, लिपुलेख कालापानी नेपाल के क्षेत्र, कूटनीति से सुलझाएंगे सीमा विवाद, तीसरा पक्ष मंजूर नहीं। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत चीन के बीच समझौते पर आपत्ति जताते हुए नेपाल ने फिर दावा किया कि कालापानी व लिपुलेख क्षेत्र उसके हिस्से में आते हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत के साथ सीमा विवाद कूटनीति और खुले दिल से बातचीत के जरिए सुलझा लेने की उम्मीद जताई है। उन्होंने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर भारत के रुख का समर्थन भी किया है। वहीं अमर उजाला यह भी लिखता है कि पंचायत चुनाव पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी, 10 को आएगी अंतिम मतदाता सूची। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। अनंतिम सूची जारी करने के बाद आए दावे आपत्तियों पर सुनवाई कर उनको निस्तारित कर दिया गया है। पूरा डाटा ऑनलाइन फीड कर दिया गया है। 10 जून को राज्य निर्वाचन आयोग अंतिम सूची प्रकाशित करेगा। अब इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं बात करें मेरठ से ही प्रकाशित समाचार पत्र दैनिक जागरण की, तो दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है महंगाई का झटका, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 29 रुपये और बढ़ी। आमजन को महंगाई का एक और झटका लगा है। सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर अब 913 रुपए के बजाय 942 रुपए का मिलेगा। पश्चिमी एशिया संकट के बाद से ये पिछले 3 महीनों में घरेलू गैस के दामों में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 7 मार्च को भारत सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए थे। लगातार दूसरी बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि प्रति सिलेंडर अभी भी करीब 700 रुपए का घाटा सरकार झेल रही है। श्रोताओं, दैनिक जागरण की ही एक और खबर है कि संसद की शिक्षा संबंधित समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा प्रश्न, पेपर लीक की परिभाषा क्या है। संसद की एक समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसकी परिभाषा में पेपर लीक किसे माना जाएगा। समिति ने यह भी पूछा कि वर्ष 2018 से अब तक आयोजित परीक्षाओं में क्या किसी प्रश्न पत्र के लीक होने की घटना हुई। सूत्रों के अनुसार समिति की प्रश्नावली पिछले सप्ताह उसके समक्ष NTA के अधिकारियों की पेशी के बाद आई। अधिकारियों ने समिति को बताया कि उनकी प्रणाली में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो श्रोताओं, ये थी आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की मुझे यानी अपने साथी जसवंत सिंह को दीजिए अनुमति। श्रोताओं, नमस्कार।

0: තාත්සා. अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ. हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर. सुबह के 8 बजने वाले हैं. कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे.
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है.
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है. भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं. आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काशवी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने

0: व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
5: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया।

0: उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
0: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टैगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से उसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी तेज जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिविजनल 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क्यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम माहौलियाती तहफ्फुज के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदामात और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है, दलदली जमीनों, मैंग्रोव्स और साहिली माहौलियाती निजाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आलूदगी को कम करने और दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरियाओं के माहौलियाती निजाम को बहाल करने के मकसद से साल 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम का आगाज किया गया था। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: साल 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी ने उससे बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
3: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक क्लीदी सुतून है, जबकि इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगैनियो ने कल नई दिल्ली में वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर के साथ वसी तर मुजाकरात के गहरे तहजीबी राब्तों का जिक्र करते हुए वजारत खारजा ने कहा कि भारत इंडोनेशिया का जामे क्लीदी शराकतदारी जारी रहेगी, जिससे तआवुन के नए शोबों में इजाफा होगा। इससे पहले दिन में जनाब सुगैनियो ने बताया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के आइंदा दौरे के मुंतजिर हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर देर रात मिसाइलों से हमले किए। 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद से इसराइल पर इस तरह का यह पहला हमला है। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसराइली वजीर आजम नितिन्याहू को बताएंगे कि वो ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज करें। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इसराइल के कई इलाकों में ईरानी हमलों के बाद

0: सायरन की आवाजें सुनी गई क्योंकि इसराइल की जानिब से बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुजाकरात मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों को निशाना बनाया जा सकता है। शुमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में आज एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिससे खित्ते में कई हफ्तों से जारी जंगबंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए, जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम पॉइंट के तौर पर शनाख्त की थी, जिसने इतवार को बेरूत के दाहिया जिले को निशाना बनाया था। लेबनान के सेहत से मुतालिक अहलकारों का कहना है कि बेरूत में हमले से 2 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने अपने हवाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तेहरान ने इस ऑपरेशन को मजाहमत की एक मुनजम कार्रवाई करार दिया है। ईरान की मुसल्ला अफवाज के कमान सेंटर खातिमुन नबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने खबरदार किया था कि लबनान की राजधानी पर कोई भी हमला सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ होगा। आबादी वाले मुकामात के बजाय मखसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर ईरान की फौजी क्यादत ने यह इशारा दिया कि वो खित्ते में पायदार अमन की खातिर माहिदे के लिए जारी मुजाकरात को खतरे में डाले बगैर इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जर्व ने इटली के फेलियो कोबिलियो को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मर्तबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फेलवियो को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 29 साला खिलाड़ी ऐसे पहले जर्मनी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1937 में हेनर हेंकेल के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोबिली भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास JCM की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वजीर खारजा के इस बयान को नुमायां किया है कि भारत नेपाल मिलकर एक साथ काम करने के ख्वाहां दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तिजारत सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारतीय सनती तरक्की योजना भव्य पोर्टल का आज करेंगे इफ्तिताह। इस इकदाम का मकसद भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस खबर को प्रताप ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीद नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरब ने इटली के फेलियो कोबिल को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली।
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8:45 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं, गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आइए कार्यक्रम का

आवाज करते हैं मन्ना डे की आवाज के इस प्यारे से नगमे के साथ। फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर। गीत लिखा है नीरज ने और इस गीत में संगीत है शंकर जयकिशन का।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान में माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में अभी आपने सुना मन्ना डे को, और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ रुक जाते हैं कुछ जरूरी संदेशों के लिए।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आइए, गोल्डन हिट्स प्रोग्राम का एक बेहतरीन नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं संघर्ष फिल्म से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने और इस गीत में संगीत है नौशाद का।

0: इंसानों हर पल चंदन का एहसास।
1: गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वक्त फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में। रवि के संगीत निर्देशन में ये गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

वक्त फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मन्ना डे की आवाज में। और आइए गोल्डन हिट्स कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं पत्थर के सनम फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पत्थर के सनम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विधाता फिल्म का ये गीत, सुरेश वाडेकर और अनवर की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, अब अंतिम प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं मजबूर फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ का ये नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, मजबूर फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को है। अगला कार्यक्रम जिले की हलचल आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा।
1: आकाशवाणी का
0: प्रतीक्षा करें।
1: जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का।
3: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा में 24 व 25 मई को 2 दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के पहले दिन उप मुख्यमंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में प्रतिभाग किया। दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री केपी मलिक की उपस्थिति में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गर्मी के कारण डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि
4: धूप में निकले सर ढक के रखें।

0: और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे। जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल सभी को अलर्ट पर रखते हुए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ अस्पताल का रख रखाव और स्थितियों का व्यवहार IPD OPD अच्छी स्थिति में है।
1: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना डोर टू डोर अमरोहा में 22 मई से शुरू हो चुकी है जो कि 20 जून तक चलेगी। जिले में अब तक 3,518 प्रगणकों द्वारा 95,000 मकानों का सूचीकरण व गणना कर ली गई है। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि
2: हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी सेंसस कर्मचारी आपके घर पे आए आप उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस दें। आप उनको पूरा डेटा एकदम शुचिता से अवेलेबल कराएं। इस डेटा का जो उपयोग है भारत के जनगणना में जो डेटा मिलता है उसका पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में उसका रोल होता है। जितना शुचितापूर्ण डेटा होगा उतनी अच्छी पॉलिसीज बनेंगी और उतनी अच्छी लोकोन्मुखी स्कीमों का धरातल पे क्रियान्वयन किया जा सकेगा। लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन पूरी और एकदम एक्यूरेटली दें। इससे कोई भी प्रोसिक्यूशन वाली कार्रवाई किसी के भी नहीं की जाएगी। ये केवल एक डेटा कलेक्शन की एक एक्सरसाइज है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा हर समय कायम रखें।
1: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में अमरोहा में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विकास भवन सभागार में 1 जून को जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद स्तर पर कुल 18 मेधावी विद्यार्थियों को प्रत्येक को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर अमरोहा के 6 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए नकद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 29 मई को अमरोहा में अनेक स्थानों पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा गजरौला में हवन एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, किसानों एवं क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ से हुआ। इसके उपरांत आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के जीवन संघर्ष, किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा देश के विकास में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों की आशा और विश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उनके विचार और सिद्धांत प्रासंगिक हैं तथा देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का मार्ग दिखाते हैं। 1 जून से 30 जून तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर 1 जून को अमरोहा में कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनौरा, गजरौला एवं हसनपुर ब्लॉक के किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर AK मिश्र ने कहा कि समय की मांग है कि सभी किसान अपने खेत को बचाने के लिए अपने खेत की मिट्टी को पहचानने और उसमें आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग करने से मृदा का स्वास्थ्य, भूजल स्तर एवं वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शीशपाल सिंह ने फसलों के साथ साथ सब्जियों एवं बागवानी में कृषकों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में कृषि रसायनों का उपयोग करने के कारण इकोलॉजिकल संतुलन बिगड़ गया है। इसके कारण लाभदायक कीट एवं मधुमक्खियों को काफी नुकसान हो रहा है जिसको बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अमित तोमर ने जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक एवं विभिन्न प्राकृतिक अवयवों को अपनाने पर जोर दिया जिससे वातावरण का संतुलन बना रहे।
3: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का।
4: प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे लगाए और कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है। मंत्री ने पौधारोपण को प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि लगाए गए पौधों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रह सकें। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जिले में रात्रि प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ भोगनीपुर तहसील के अमरौधा ब्लॉक के स्थित रनिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना था। इस दौरे के दौरान मंत्री संजय निषाद ने जन सुनवाई में लापरवाही करने पर नाराजगी जताई। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध और गाँवों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रात्रि चौपाल के माध्यम से सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद की पहल को और मजबूत किया गया। जनपद कानपुर देहात और आसपास के क्षेत्रों में पिछले हफ्ते हुई बारिश और गरज चमक से भीषण गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन राहगीरों और किसानों को राहत का एहसास हुआ है। पिछले सप्ताह हुई बौछारें और बादलों की आवाजाही ने चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं लू से काफी हद तक निजात दिलाई। बारिश के कारण पारे में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम में ठंडक और हवाओं में ताजगी महसूस हुई। प्री मानसून की इस बारिश ने खेतों और पेड़ पौधों को नई जान दी है, जिससे किसानों और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश के बाद तापमान में उतार चढ़ाव और उमस बढ़ने की स्थिति भी देखी गई है। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 के तहत नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया। विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार और जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस तिस्ती रसूलाबाद से केंजरी रूरुआ होते हुए अकबरपुर माती तक संचालित होगी। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट के नाम पर हुए 400 करोड़ के जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मूसानगर थाने में FIR दर्ज की गई। जिलाधिकारी कपिल सिंह की जांच रिपोर्ट के बाद कानपुर कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लेते हुए ग्राम सभाओं की जमीनों का पुनर्ग्रहण निरस्त कर दिया है। 761.41 एकड़ जमीन को वापस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करके ग्राम सभा के नाम निहित करने का आदेश जारी हो चुके हैं। कानपुर देहात के गौसगंज भोगनीपुर मूसानगर में अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अहिल्या आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। अहिल्या आर्मी भारत एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर ने देश भर के अनेकों मंदिर घाटों धर्मशालाओं कुओं और सड़कों का निर्माण कराया था। उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महेश्वर को सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया और महेश्वरी साड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया, जो आज भी प्रसिद्ध है। कानपुर देहात में हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं में जनपद स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 19 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। मेधावी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन को दिया। राज्य मंत्री ने कहा, ऐसे सम्मान से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य छात्रों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। अब पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीता पंत की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस रुहेलखंडी लोकगीत के साथ।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम बासमती

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रुहेलखंडी लोकगीतों का, ये धरती गाती है, और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीता पंत की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत।

श्रोताओं, इसी रुहेलखंडी लोकगीत के साथ कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। इस कार्यक्रम के आज के अंक में वाचन, स्वर और संकलन है दिव्यम कंडवाल और इशिका कौशिक का।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूं इशिका कौशिक
1: और मैं दिव्यम कंडवाल।
0: और जैसा कि आप जानते ही हैं, बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: इशिका, आज के प्रोग्राम के लिए मैं 15 मिनट देरी से पहुंचा। पता है क्यों? क्योंकि स्टेशन रोड पर अपनी स्कूटी खड़ी करने के लिए जगह ढूंढने मुझे पसीने छूट गए।
0: अरे दिव्यम, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। नजीबाबाद की हर गली, चाहे वो चौक बाजार हो या कल्लूगंज, चाहे जगन्नाथ का चौराहा हो या फिर स्टेशन रोड, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, भाई गाड़ी कहाँ लगाऊं?
1: बिल्कुल, पार्किंग की समस्या अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि हमारे शहर की तरक्की में एक रुकावट बन गई। इसलिए आज बात आसपास के केस अंक में हम शहर में बढ़ते वाहन और पार्किंग की समस्या पर चर्चा करेंगे।
0: हमने बाजार जाकर कुछ दुकानदारों और राहगीरों से बात की, चलिए सुनते हैं उनके विचार।
2: आपका नाम? ओम अग्रवाल। तो ओम, आप बताइए कि क्षेत्र में पार्किंग की समस्या पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: क्षेत्र में कि पार्किंग की समस्या बहुत बढ़ गई है और यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह निकलने के लिए भी बहुत समस्या होती है। इसके लिए मैं भी बोलता हूँ लोगों की अपनी गाड़ी जो है साइड में लगाया करें, और इसके लिए नगर पालिका को भी कुछ करना चाहिए। कोई पार्किंग की व्यवस्था सेपरेट करनी चाहिए, जहाँ पे जो गाँव से देहात से आने वाले व्यक्ति है और जो शहर के बाहर के व्यक्ति है वो अपनी पार्किंग वहाँ पे लगा सके कार वगैरह, इसके लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए।
0: आपका नाम?
4: मेरा नाम लवी अग्रवाल।
0: सर, पार्किंग की जो समस्या है शहर में, उस पर आपके क्या विचार हैं?
4: देखिए, नजीबाबाद में पार्किंग की बड़ी जघन्य समस्या हो गई, इसको लेके सभी यात्री परेशान हैं, यहाँ आगंतुक परेशान हैं, जो रोजमर्रा के काम वाले वो भी परेशान हैं। हमारे शहर में ई रिक्शा बहुत हो गई है। सबसे पहले मैं प्रशासन से मांग करता हूँ की इन ई रिक्शा को एक तरफ कर दिया जाए, वन साइड। ये आए अगर स्टेशन से इधर को तो निकलेंगी पीछे बालाग्राम में। कुछ व्यवस्था ऐसी बनाए जो A to B, B to C, तब हम लोग कामयाब हो सकते हैं। अब कुछ लोग, हम लोग दुकानदार भी हैं, अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो, उस पर भी प्रशासन ध्यान दे। मैं सब लोगों से अब अनुरोध करूंगा, दुकानदार भाइयों से भी, कि अपनी अपनी दुकानों के बाहर सामान ना लगाएं, हम लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा ध्यान दें, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी ना।
5: मेरा नाम पंडित मनोज गौड़ है।
0: सर, शहर में जो पार्किंग की समस्या है, उसको लेकर आपके क्या विचार है?
5: शहर में पार्किंग की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसके कारण ग्राहक कस्टमर नहीं आते। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें जो आगे बढ़ा रखी है उससे बहुत ज्यादा अतिक्रमण, और बाइक खड़ी करने का किसी के पास कोई साधन नहीं है, और उससे ज्यादा व्यवस्था हो रही है वो मिनी मेट्रो से ज्यादा हो रही है। के कारण शहर के बाहर ही बाहर मिनी मेट्रो होनी चाहिए और शहर के बाहर कोई पार्किंग बाइक खड़ी करने के लिए होनी चाहिए। इसका समाधान जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा।
2: आपका नाम?
6: कुलवीर सिंह।
2: तो कुलवीर, जिस तरह से हम देखते हैं कि आप मार्केट में दुकान लगाते हैं, तो पार्किंग की समस्या हमारे शहर में है, उस पर आप क्या सोचते हैं?
6: ये पार्किंग की समस्या तो हर शहर में है, पर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है। हर जगह पार्किंग नहीं मिल पाती आसानी से। जिस तरह हम मतलब दुकान लगाते हैं तो ग्राहकों को भी परेशानी होती है, कहीं भी कोई भी गाड़ी लगा के चला जाता है, कोई रूल वूल कुछ है नहीं। तो इस पर ना थोड़ा मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों को थोड़ा काम करना चाहिए। एक रूल होना चाहिए कि पार्किंग की कौन सी जगह है वहीं पर पार्किंग हो। कहीं भी लगा देते हैं, स्कूल का आगे, कॉलेज का आगे, कहीं भी लगा दें, रोड पे, बीच में, कहीं भी।
0: आपका नाम?
7: ललित कुमार प्रजापति।
0: जैसे आपने देखा है हमारी गलियों में ट्रैफिक कितना ज्यादा है, निकलने की जगह ही नहीं है, दुकानों के सामने हो या फिर सब्जी मंडी में ही सही, उस पर आपके क्या विचार हैं?
7: सब्जी मंडी हो या कोई भी हो, कुछ तो दुकानदारों का ही इस चीज में अहम योगदान है। दुकानदार की दुकान तो बहुत छोटी है, लेकिन उसने अपनी दुकान के बाहर इतना फैलावा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, वो खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार है। अगर आपको किसी इमरजेंसी में जाना पड़ जाए या किसी बच्चे को एग्जाम के लिए जाना पड़ जाए, इस तरह के अतिक्रमण अगर वो फंस जाता है तो उसी का नुकसान होता है। उसको समय से पहले ना पहुंच पाना, उसके लिए बहुत ज्यादा उसका भविष्य उस चीज पर निर्भर होता है। इसमें सरकार का तो अहम रोल है ही, साथ में जो दुकानदार होते हैं या आसपास के लोग होते हैं उनको इस चीज पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके भी बच्चे होते हैं या कोई होता है, उनको भी इस चीज के लिए सामना करना पड़ता है उसका।
0: आइए जानते हैं एक रिक्शा चालक से। आपका नाम?
8: मोहम्मद मुश्ताकी।
0: पार्किंग को लेकर आपकी क्या क्या समस्याएं हैं या क्या अपील है जनता से?
8: हमारी जनता से ये अपील है, जो रोड के किनारे पर बाइकें वगैरह कारें वगैरह खड़ी करते हैं, चलने वालों को दिक्कत होती है, ये ना हो, अपने वाहन जो है साइड में लगाए, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, यही हमारी अपील है।
1: श्रोताओं, लोगों की समस्याओं को तो हमने जाना, पर प्रशासन ने इसके विषय में क्या कदम उठाए और प्रशासन का क्या रोड मैप है?
0: आइए जानते हैं श्री विपिन चौहान से। सर, हमारे शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग एरिया हमारे पास बहुत कम है, तो सर उस पर आपके क्या विचार हैं?
9: पार्किंग एरिया यहाँ पे मतलब कोई अर्बन एरिया में तो ऐसा कोई जगह है नहीं, मतलब लोकल बॉडी के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जो वहाँ पे पार्किंग मतलब सुविधा दी जा सके। अब जैसे अभी नया स्टेशन यहाँ पे डेवलप हुआ है, तो स्टेशन पे कोई पार्किंग बन सकती थी, मतलब बेसमेंट में पार्किंग हो सकती थी, उसमें फर्स्ट मतलब फ्लोर वाइज हो सकती थी, उसका कोई चार्ज रखा जाए तो उससे गवर्नमेंट को भी मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम आएगी, लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, शहर में जाम की स्थिति जो ज्यादा रहती है वो नहीं होगी, और इसमें पुलिस प्रशासन भी मतलब सब हेल्प करें कि भाई आप यहाँ पे पार्क करोगे और अंदर फोर व्हीलर जाना

0: पड़ेगा, क्योंकि जैसे संसाधन है, जैसा स्ट्रक्चर है शहर का, उसके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि भाई हमारा छोटा शहर है, छोटी गलियां हैं, तो हम थोड़ा सा अपना मतलब देखभाल के खड़ी करें, कहाँ हम पार्क कर रहे हैं, हम पार्क कर रहे हैं तो दूसरा बंदा, दूसरी गाड़ी या कोई भी व्हीकल क्रॉस होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारी भी अपनी भी सेल्फ ड्यूटी बनती है हर सिटीजन की, कि वो भी इस पे अवेयर हो और ध्यान दें, सीरियसली इस चीज को लें, क्योंकि कितने लोग इसमें सफर करते हैं, जाम में फंस रहे होते हैं, कोई ऑफिस को लेट होता है, कोई स्कूल को लेट होता है, कई बार लोगों की जान चली जाती है, हॉस्पिटल के लिए लेके जा रहे हैं और पता चला कृष्णा टाकीज माल गोदाम स्टेशन जाम है, कहां से आप निकलोगे, कोई रोड नहीं है कि आप गाड़ी लेके निकाल के ले जा सको। तो इसमें लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, और जो शॉपकीपर हैं वो अपनी दुकान पे जो सामान लेने आ रहा है तो वो अपनी एक ड्यूटी निभाए कि हाँ आपने यहाँ बाइक खड़ी करी, भैया यहाँ नहीं, आप प्लीज यहाँ इसको इस तरीके से लगाओ, तो उससे भी काफी मतलब पोटेंशियल मतलब जाम वाला कम हो सकता है।
1: सर, जो लोग अवैध तरीके से या फिर अनियंत्रित रूप से पार्किंग कर रहे हैं उनके लिए जुर्माने का कुछ प्रावधान है?
0: जुर्माने का प्रावधान तो नगर पालिका को भी है लगाने का, लेकिन वो हर समय संभव नहीं है कि आप हर समय कर सकते हो, उसके लिए कुछ स्पेशल अभियान चलते हैं, उस समय वो जुर्माना कट जाता है। कुछ लोग जैसे व्यापारी सामान बाहर रख लेते हैं, हम जुर्माना काट दें, सामान जब्त कर लेते हैं, लेकिन जुर्माना लेके छोड़ दिया, उसके बाद आप 2 घंटे बाद शहर में निकलोगे फिर आपको वही स्थिति मिलेगी। वो उतनी देर ही अवेयर होते हैं जितनी देर उनको कोई डर होता है, उसके बाद में वो ये नहीं सोचते कि हाँ इससे क्या, इसका साइड इफेक्ट है क्या है, वो उतनी देर डर से भय से काम करते हैं, उसके बाद वो फिर अपनी उनकी साइकोलॉजी जो है वो सेट है, वो फिर वहीं आ जाते हैं।
1: भविष्य में कुछ नए पार्किंग स्थलों के निर्माण के हमारा कोई विचार?
0: पार्किंग के लिए मतलब जैसे यहाँ पे हमने पहले चिन्हित करे थे, जो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं उनके नीचे पार्किंग की व्यवस्था की थी, लेकिन वो भी कोई ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 3 फ्लाईओवर हैं बड़े, डबल फाटक पे हैं, रायपुर अड्डे पे हैं और इधर तहसील के सामने, तो यहाँ उसको भी यूज किया जा सकता है अगर सब लोग मिलकर उस पर प्रशासन पूरा ध्यान दे, तो वहाँ भी एक छोटा एक रास्ता निकल सकता है।
2: जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
0: जनता से यही है कि वो खुद अवेयर हों और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएं, अपना व्हीकल अपना वाहन खड़ा करने से पहले मतलब सोचें और उसको सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा करें। कुछ दूर चलना भी पड़े तो कोई बात नहीं है, उसको जहाँ पे संसाधन हो, जगह हो, वहाँ पे आप पार्क करके थोड़ी देर पैदल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाम में फंसने से अच्छा है पैदल चल के अपना शॉपिंग परचेजिंग जो भी है आप करें। तो यही मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करूंगा जो भी नगरवासियों से, कि वो इस चीज पे विशेष ध्यान दें, इससे उनको भी और सामने वाले को सभी को लाभ पहुंचेगा।
2: प्रशासन तो अपना काम करेगा ही, लेकिन क्या हम नागरिकों का कोई फर्ज नहीं है? लोग अक्सर अपनी सुविधा के लिए दुकान के बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं, भले ही उससे आधी सड़क ब्लॉक हो जाए।
1: सही कहा इशिका, अगर हम थोड़ा पैदल चलने की आदत डालें और गाड़ी को सड़क के बीच में छोड़ने की बजाय सही जगह पार्क करें तो आधा जाम वैसे ही खत्म हो जाएगा।
2: जी हाँ, और दुकानदारों को भी अपनी दुकानों का सामान सड़क पर फैलाकर अतिक्रमण करने से बचना चाहिए।
1: तो दोस्तों, नजीबाद हमारा है और शहर की पार्किंग की सुगम व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी।
2: श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सही जगह पार्क कीजिए, साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम बात आसपास की। वाचन, स्वर एवं संकलन था दिव्यम कंडवाल और इशिका कौशिक का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफ़र।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं चरणजीत सिंह।
1: और श्रोताओं, मैं भी हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो मित्र जसवंत सिंह। दोस्तों, आज एक ऐतिहासिक तारीख है। जी हाँ, आज ही वो दिन है जब भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज तारीख है 8 जून 2026, और एक तारीख थी 8 जून 2036। क्यों चरणजीत?
0: जी हाँ, 8 जून 1936 वो भी एक ऐतिहासिक

0: तारीख थी। और बिल्कुल जसवंत, इन वर्षों के बीच रेडियो आकाशवाणी के रूप में कैसे लोगों के दिलों में बसा, कैसे जन जन की आवाज बना, ये आज हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। और साथ ही साल 2026 की कुछ प्रमुख घटनाओं का भी हम जिक्र करेंगे जिन्हें आकाशवाणी ने आवाज दी और जन जन तक पहुंचाया।
1: बिल्कुल सही कहा चरणजीत। जैसे घटनाओं का जिक्र तो हमें करना ही है, लेकिन आज चूंकि बड़ा विशेष दिन है, आज हम 90 साल पूरे कर रहे
0: जी बिल्कुल।
1: हैं, तो बात उस दौर की हम याद कर लेते हैं जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तब सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए देश में गिने चुने ही प्राइवेट ट्रांसमीटर हुआ करते थे।
0: जी हाँ, और साल 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत हुई।
1: और केवल 6 वर्षों में, यानी साल 1936 में ही इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया।
0: और ये ऐतिहासिक तारीख थी 8 जून सन 1936,
1: और चरणजीत यहां से अखिल भारतीय रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई।
0: और इसके साथ ही देश का पहला रेडियो स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया।
1: इसके बाद साल दर साल किसी न किसी रूप में उपलब्धियां हमारे भारतीय प्रसारण क्षेत्र से जुड़ना शुरू हो गईं।
0: जी हाँ जसवंत, जैसे कि 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन की स्थापना होने से दुनिया भर में समाचार प्रसारित किए जाने लगे।
1: और इन समाचारों से श्रोताओं का जुड़ाव ऐसे हो गया, जैसे ही समाचार का समय होता था, श्रोता अपने रेडियो सेट से चिपक
0: बिल्कुल
1: जाते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखेगा कि केवल 10 वर्षों के भीतर ही जब वो ऐतिहासिक घड़ी आई ना कि देश साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ, तब भारत के पास दिल्ली समेत केवल 6 रेडियो स्टेशन थे।
1: और वो रेडियो स्टेशन भले ही 6 रहे हो चरणजीत, लेकिन उनकी पहुंच बहुत ज्यादा लोगों तक हो गई थी, क्योंकि हर किसी को नई खबर सुनने की एक जिज्ञासा रहती थी और
0: बिल्कुल।
1: सबसे नई, सबसे ताजा तरीन जानकारी मिलती थी आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से।
0: और जरा ये भी तो बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि वो 6 रेडियो स्टेशन कौन कौन से थे।
1: वो उस समय के 6 रेडियो स्टेशन थे मुंबई, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। अस्तित्व में ये आ चुके थे और इन्हीं से तमाम श्रोता निरंतर जुड़ते जा रहे थे।
0: जी हाँ, और साल 1936 के बाद साल 1956 तक, यानी 20 वर्षों में सूचना प्रसारण के क्षेत्र में अमूल्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के साथ ऑल इंडिया रेडियो का औपचारिक नाम जसवंत आकाशवाणी के रूप में पहचाना जाने लगा।
1: बिल्कुल। और इतना ही नहीं चरणजीत, अगले साल यानी साल 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हो गई थी, और यहां से आकाशवाणी के कार्यक्रमों में ऐसे बदलाव आए जो नए युग की शुरुआत करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए।
0: जी हाँ बिल्कुल। और देखिएगा साल 1977 में भारत के पहले FM यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रसारण मद्रास से शुरू हुआ, और इसके बाद साल 1997 में प्रसार भारती निगम की स्थापना हुई।
1: और चरणजीत आज साल 2026 में भारत में 450 से भी अधिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के कार्यक्रमों को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है।
0: जी हाँ, और 90 वर्षों के इन ऐतिहासिक पलों में आकाशवाणी का विशाल नेटवर्क विकसित हुआ, जिसमें 90% से अधिक आबादी और 80% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में यह संस्था सक्रिय है।
1: और डिजिटल क्रांति के युग में भी 90 वर्ष पुरानी यात्रा को निर्बाध रूप से जारी रखे हुए हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। और चलिए, जानकारी तो हो ही गई है, लेकिन
0: देखिएगा जसवंत, हम अक्सर ये कहते हैं अपने श्रोताओं के साथ बातों में कि भाई जानकारियां संबंधित साल की बहुत सारी होगी, लेकिन आज चूंकि एक खास दिन है, 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 8 जून 2026 की वो ऐतिहासिक घड़ी है, हमने 1936 से और साल 2026 तक बहुत नपे तुले शब्दों में और सारगर्भित बात करते हुए अपने श्रोताओं को इन 90 वर्षों की सैर जसवंत हमने कराई, तो हम गीत संगीत का सिलसिला भी लेकर चलेंगे अपने श्रोताओं के साथ। लेकिन क्या हम इस, चूंकि ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक घड़ी है, तो आकाशवाणी से ही जुड़ी हम कुछ जानकारी अपने श्रोताओं के साथ साझा कर लें।
1: बिल्कुल चरणजीत।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल

0: जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम सुहाना सफर में बहुत बहुत स्वागत। और जसवंत, जैसे अभी ये धुन बजी थी आकाशवाणी की, तो ये वास्तव में हर किसी को मोह लेती है, सम्मोहित कर लेती है।
2: बिल्कुल, ये बहुत ही कर्णप्रिय धुन है। और जैसे ही ये धुन हम कहीं सुनते हैं या हमारे श्रोता भी कहीं सुनते हैं, तो उन्हें आकाशवाणी की याद और भी ज्यादा ताजा हो जाती है।
1: बिल्कुल जसवंत, अब हम याद ताज़ा करते हैं साल 2026 की, क्योंकि ये कार्यक्रम सुहाना सफर हमारे वर्ष विशेष से भी जुड़ा होता है। जसवंत,
2: बिल्कुल।
1: तो जसवंत, साल 2025 में एक दर्दनाक घटना घटी थी, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में कई पर्यटकों की जान चली गई थी। तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की थी और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर।
2: हाँ, बिल्कुल सही कहा चरणजीत। और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। इस ऑपरेशन में भारत की ओर से 10 बहादुर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। और इस ऑपरेशन की पहली बरसी पर मई 2026 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना की बहादुरी और आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस के संकल्प को याद भी किया था।
1: और जसवंत, ये कोई बात ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी पिछले महीने की ही बात है, तो हमारे श्रोताओं के जहन में ये सारी बातें हो सकता है ताजा भी हो ना।
2: जी बिल्कुल। और उधर पाकिस्तान ने अपनी सेना के जरिए इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित करने की कोशिश की, वही जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। इस ऑपरेशन सिंदूर की कार्यवाही के बाद नियंत्रित रेखा के पास के जो गांव थे, वहां दशकों बाद शांति और सुरक्षित माहौल लौटा था।
1: और जसवंत, इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो किरकिरी हुई थी, उसे कौन भूल सकता है। और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि आकाशवाणी ने इन संवेदनशील राष्ट्र की सुरक्षा और भारतीयों की सुरक्षा व भावनाओं से जुड़ी खबरों को तत्काल और सधे हुए अंदाज में देश दुनिया में पहुंचाया।
2: और चरणजीत, अब हमें लग रहा है कि जानकारियां तो बहुत हो गई हमारे श्रोताओं के लिए, जानकारी और भी हम बीच बीच में देते रहेंगे, क्यों ना यहाँ हम 2026 में आई फिल्म का कोई गीत अपने श्रोताओं को सुनवा दें।
1: जी बिल्कुल,
2: तो आइए श्रोताओं।
1: कौन सा गीत आप सुनवाने वाले हैं जसवंत?
2: ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साल 2026 में ही आई फिल्म बॉर्डर 2 का गीत। आवाजें हैं विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की।

0: तो जसवंत, इस गीत से पहले हम ऑपरेशन सिंदूर की बरसी की बात हम कर रहे थे, जिसमें खूब गोला बारूद बरसे थे और अभी हाल ही में कुछ और भी बरसा था। क्या बरसा था, क्या ये मालूम है आपको?
1: हाँ हाँ बिल्कुल मालूम है चरणजीत भाई। 28 मार्च से 31 मई तक दनादन क्रिकेट के नाम से मशहूर आईपीएल भी संपन्न हुआ है और बेंगलुरु की टीम इसमें चैंपियन बनी है। इस आईपीएल में कई कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं।
0: बिल्कुल जसवंत, इस सीजन महज 15 साल के राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती और एक सीजन में सर्वाधिक 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ। क्रिस गेल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। और वहीं गेंदबाजी में सर्वाधिक 29 विकेट लेने वाले गुजरात टाइटंस के लीडिंग गेंदबाज कैगिसो रवाडा को पर्पल कैप मिली है इसमें जसवंत।
1: बिल्कुल, ये आईपीएल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। और चरणजीत, आईपीएल सीजन

0: ये भी हुआ जब पहली बार तीन भारतीय बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 700 से ज्यादा रन बनाए।
1: बिल्कुल, ये एक बड़ा कीर्तिमान, बड़ा रिकॉर्ड।
0: और आईपीएल की इन सभी प्रमुख खबरों को आकाशवाणी ने देश दुनिया में बसे खेल प्रेमियों तक पहुंचाया और इस दौरान रोमांच बिल्कुल चरम पर रहा।
1: और जसवंत, अब हम कार्यक्रम को संगीत के लिए आगे बढ़ाते हैं और श्रोताओं को सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत। तो कौन सा गीत
0: बिल्कुल श्रोताओं के लिए अब हम लेकर आए हैं, धुरंधर द रेवेंस फिल्म का ये प्यारा सा गीत खान साहब और शाश्वत सचदेवा की आवाज में।

0: श्रोताओं, साल 2026 की हम बात कर रहे हैं आपके मनपसंद कार्यक्रम सुहाना सफर में। और श्रोताओं, साल 2026 में एक और ऐतिहासिक और सुखद घटना घटी थी, वो भी खेलों के क्षेत्र से ही थी, जब भारत ने न्यूजीलैंड को फाइनल में 96 रनों से हरा कर 2026 पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया था। और ये फाइनल मुकाबला हुआ था 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में।
1: और जसवंत, भारत और श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट की जो थी सह मेज़बानी की थी, और इस टूर्नामेंट की एक ऐतिहासिक जीत के समय भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे और संजू सैमसन, जिन्होंने 321 रन बनाए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। और फाइनल मैच में 4 विकेट लेने वाले भारतीय सीमर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।
0: बिल्कुल सही कहा चरणजीत। अगर कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं की बात करें तो साल 2026 में नीट और जेईई यानी JEE परीक्षाओं पर विवाद खूब हुआ। शिक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं और डाटा लीक की खबरों को लेकर पूरे देश में राजनीतिक और छात्र संगठनों के बीच भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले।
1: और जसवंत, साल 2026 अब तक जो है वो कई उतार चढ़ावों वाला रहा है। कहीं विरोध प्रदर्शन तो कहीं उपलब्धियों का मेला देखा गया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, जो कि दिल्ली में आयोजित होने वाला वैश्विक सम्मेलन था, और 3 सूत्र इसमें आप देखेगा कि पीपल प्लैनेट और प्रोग्रेस, इसकी विशेषता ये थी कि इसी के माध्यम से भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति को आकार दिया गया था। जसवंत
0: और चरणजीत, ईरान अमेरिका के बीच तनाव को भला कौन भूल सकता है। इस तनाव और युद्ध ने पूरी दुनिया को मानो विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था।
1: और साल की शुरुआत से ही दुनिया के कई देश अलग अलग खेमों में बढ़ते हुए नजर आए थे जसवंत, और वहीं भारत स्थिर बना हुआ था और अपनी मध्यस्थता और युद्ध खत्म करने की भूमिका में दुनिया भर की नज़रें वो भारत पर टिकी थी। ईरान और अमेरिका के बीच दिनों दिन बढ़ते संघर्ष वैश्विक घटनाक्रम को लेकर जसवंत, आकाशवाणी ने हर दिन हर किसी को अपडेट रखा और ताज़ा खबरें उपलब्ध कराई।
0: बिल्कुल, और आकाशवाणी का तो काम ही रहा है कि भ्रांतियों को तोड़ना, भ्रांतियों से दूर रखना और सटीक सही जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचाना। तो चरणजीत, 2026 की खास घटनाओं और आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर और उपलब्धियों का जिक्र करते करते हम अब आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर।
1: और जसवंत, मेरा मन कर रहा है कि चलते चलते क्यों ना हम अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत भी और सुनवा दें भी।
0: बिल्कुल, आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं साल 2026 में ही आई एक शानदार फिल्म दो दीवाने शहर में। और इस गीत में आवाजें हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की।

0: इंसान तो बता दो ना बोलने का।
1: सिर्फ ना काफी नहीं है क्या?
2: श्रोता, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत दो दीवाने शहर में इस फिल्म का, और ये फिल्म भी आई थी 2026 में ही, और 2026 में आकाशवाणी ने अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता से निभाया जिस जिम्मेदारी के लिए आकाशवाणी जाना जाता है। क्यों चरणजीत?
3: बिल्कुल जसवंत, और सुहाना सफ़र जो आज का ये कार्यक्रम रहा, साल 2026 की कुछ ताज़ा तरीन घटनाओं को हमने साझा किया, और साथ ही 2026 के हमने प्यारे प्यारे से गीत भी अपने श्रोताओं को सुनवाए जसवंत। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हमारे श्रोताओं को आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा।
2: बिल्कुल, और चरणजीत अब अपने श्रोताओं से लेते हैं अनुमति। तो श्रोताओं, मुझे यानी जसवंत सिंह को
3: और मुझे यानी चरणजीत सिंह को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं, गीत तुम्हारे कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ गए हैं,
1: जी हाँ, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह।
0: और श्रोताओं, आइए शुरू करते हैं आपके द्वारा भेजे गए मैसेज का वो सिलसिला। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। हमारा मोबाइल नंबर,
1: जी हाँ जसवंत, हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288 यानी 9457078288। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम चूंकि आपका है, आप ही के लिए है, तो आप फटाफट से हमें मैसेज भेजना शुरू कर दिया। और जसवंत, देखिएगा जैसे कि हमने ये नंबर बताया है और टिमटिमाने लगे हरे रंग के सितारे हमारी स्क्रीन पर।
0: तो चलिए शुरू करते हैं मैसेज पढ़ने का सिलसिला। ये मैसेज हमारे पास आ गया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। लिखने वाले हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और आपके साथ हैं।
1: और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचा है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन भाई, एमडी यासीन, शेख चांद फारूक और करीम और इनके साथ ही इनके परिवार के अन्य सदस्य। और ये अगला मैसेज जसवंत किन का है?
0: ये मैसेज हमारे पास सनावद से आया है, शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुड़ाना का, कुमार सानू की आवाज़ का कोई गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं।
1: जी हाँ, और ये मैसेज हम तक पहुँचा है गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और ये मैसेज हमें भेजा गया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से।
0: एक और मैसेज हमारे पास आ गया है, ये मैसेज है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता, आरजू, हंसमुख लाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव, बंटी और आपका पूरा परिवार। चकला बाजार से ये मैसेज हमारे पास आया है।
1: जी, और ये मैसेज गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का। रामदेवरा से दिनेश चौहान ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है। डांगरी से मैसेज लिखने वाले हैं बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, इन्होंने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है जसवंत। और अगला मैसेज,
0: ये मैसेज हमारे पास है वहीद रहमान, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान, फुरकान, जाकिर और फैज, फूलगंज निजामाबाद तेलंगाना से इन्होंने मैसेज किया है, कोयला फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं।
1: और अगला मैसेज हमें मिला है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, इसके साथ ही इनके परिवार के अन्य सदस्य। और जसवंत, अगला मैसेज,
0: ये मैसेज हमारे पास भेजा है गांधी बाग अकोला से। लिखने वाले हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर और सरोज चौक अमरावती से हैं कमरुला ठेकेदार और आपके साथ नसीमा बेगम। तो लीजिए, आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं कोयला फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जल्दी से हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हमारा नंबर है 9457078288।
1: और जसवंत, लगातार हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज मिल भी रहे हैं, जैसा कि एक मैसेज हमें और मिला है, ये ज़िला मुरादाबाद के गांव महेशपुर खेम से लिखने वाले तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सकलैनी, गुलशन साहिबा और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और ये मैसेज सहेली रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावद मध्य प्रदेश से शाइना खत्री, शबीना खत्री, रानी खत्री, बेनू खत्री, हफ्शा और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा, बाबू भाई खत्री और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
0: और एक और मैसेज हमारे पास आया है ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला जिला बिजनौर से, लिखने वाले हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महवेश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर।
1: गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से, डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सानू कुंभार, अर्चना कुंभार, कोयते वसी पुनावले से, अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अविका सोनवणे, साइशा सोनवणे का भी मैसेज हम तक पहुंचा है।
0: और एक और मैसेज हमारे पास आ गया है मोहल्ला अफगानान शेरकोट जिला बिजनौर से, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत।
1: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है गांव कैरों जिला तरनतारन पंजाब से, गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद का।
0: और ये मैसेज हमारे पास आ रहा है गुजरात गांधी ग्राम से, प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी का, कह रहे हैं कि दोस्ताना फिल्म का गीत सुना दीजिए।
1: चलिए, और ये मैसेज हम तक है जिला मुरादाबाद के गाँव दुल्हापुर से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। और अगला मैसेज,
0: ये मैसेज हमारे पास आ रहा है मोताला महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं विजय सुरलकर, रतन माला, ओम कुमार सुरलकर और पूरा परिवार।
1: ये अगला मैसेज है अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले। और ये मैसेज भेजा गया है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से। अगला मैसेज है पुनावले पुणे से, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने का।
0: और जल्दी से एक और मैसेज ले लेते हैं, यह पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, अकिल कुरैशी और बेबी हबीबा अरीबा। तो आइए अब सब की फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ का ये प्यारा सा नगमा दोस्ताना फिल्म का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और जल्दी से आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी है समय, और इसमें सुनिए आप अपनी पसंद का गीत। मैसेज भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: और जसवंत, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है उसी रफ्तार के साथ देखिएगा हमारे पास मैसेज वो भी उसी रफ्तार के साथ पहुंच रहे हैं। लेकिन हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप जो मैसेज हमें एक बार भेज दें और आपका मैसेज पढ़ लिया जाए, या अभी क्यू में लगा हो तो आप रिपीट मैसेज ना भेजें, एक प्रतीक्षा करें और दूसरे श्रोताओं को इस कार्यक्रम में बन लेने का मौका दें। और देखिएगा जसवंत, ये मैसेज मिला है विनोद मुणत, नेहा जैन और दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मुणत का, बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: बिल्कुल। और चरणजीत, हमें लग रहा है कि हमें अपने श्रोताओं की जिज्ञासाओं को भी समझना चाहिए, वो कितने जिज्ञासु हैं, कितनी हमारे प्रति आत्मीयता रखते हैं कि चलो एक और मैसेज। और अंततः जब उनका मैसेज पढ़ा जाता है तो यकीनन उन्हें प्रसन्नता होती होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये मैसेज हमारे पास आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से, लिखने वाले हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना और आपका पूरा परिवार
1: जी। और लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा का भी मैसेज हम तक पहुंचा है।
0: और एक और मैसेज हमारे पास पहुंच रहा है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से, और ये मैसेज भेजने वाले हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान।
1: और मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोर्डाना का मैसेज मिला है हमें जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। और एक मैसेज सुदामा नगर खंडवा से हमें भेजने वाले हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप।
0: और ये मैसेज सब्जी मंडी बुलडाना से हमारे पास भेज रहे हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयजा, अनम, मुदस्सिर और आपका पूरा परिवार।
1: और जसवंत, ये मैसेज हमें मिला है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहरी बाई बागड़ी, प्रभुलाल बागड़ी और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
0: बिल्कुल। और एक और मैसेज हमारे पास लिखकर भेजा है तेलंगाना निजामाबाद से, लिखने वाले हैं शेख अल्लाह बख्श,

0: बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख और ये फूल और कांटे फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं।
1: चलिए सुनवा दीजिए इन्हें, इन्हीं की पसंद का कार्यक्रम का ये गीत।

0: श्रोताओं, फूल और कांटे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गीत लिखा था समीर ने और इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। और श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं पत्रों के माध्यम से। पत्र भेजने के लिए आप लिखें हमारा पता है कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763। और श्रोताओं, अब ये कार्यक्रम गीत तुम्हारे यहीं संपन्न करने की मुझे यानी जसवंत सिंह
1: और मुझे यानी चरणजीत सिंह को दीजिएगा अनुमति।
0: नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। और कार्यक्रम में हम आपके साथ बहुत प्यारे प्यारे से गीत साझा करेंगे और आप लेंगे उन गीतों का आनंद। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म परदेस का, और इस गीत को आवाज़ दी कुमार सानू ने। गीत आनंद बख्शी का लिखा था और संगीत नदीम श्रवण का था। और देखिएगा, दो दिल जब मिलते हैं तो चुपके चुपके ही मिलते हैं, क्योंकि ये प्यार का एक प्यारा सा एहसास जगाता है मन में। और जब प्यार का एहसास मन में जागता है तो समा भी बंध जाता है।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना हम दिल दे चुके सनम का ये प्यारा सा गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज़ों में। ये गीत रचना थी समीर की और संगीत दिया था अनु मलिक ने। गीत संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और गीत संगीत में श्रोताओं, कभी कभी ना दिल के भावों को, दिल की बातों को बड़े सुकून भरे अंदाज में भी बयां कर दिया जाता है। और जब सुकून दिलों पर छाता है ना, तो मन तो हमारा प्रसन्न होता ही है, एक भाव मन में जागता है। और कैसा भाव जागता है कि एक दूसरे से प्यार के कदम हम कदम दर कदम आगे बढ़ाते हैं।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और श्रोताओं जो गीत अभी आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म हंगामा से। इस गीत को आवाज़ें दी थी अभिजीत, अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों ने। गीत रचना समीर की थी और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, प्यार जताने के लिए शब्द ढूंढता हूँ, प्यार जताने के लिए शब्द ढूंढता हूँ, लेकिन जब सामने कुछ कहने की बारी आती है तो न जाने क्यों कुछ कह पाने में बहुत हिचकिचाहट होती है। और दोस्तों, ये तभी होता है जब किसी से दिल जुड़ा होता है इश्क के खरे पैमाने पर। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं इश्क फिल्म का ही ये प्यारा सा गीत।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी। परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है। कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
2: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की।

0: तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिरपरिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी
2: प्यारे बच्चों नमस्ते, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: कौवे को यूं बुदुवनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था, वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।

0: ठीक है।
1: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना,
0: हाँ हाँ,
1: उठाकर मुझे दे।
0: अच्छा ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ
0: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
2: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
0: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
0: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
0: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
0: ठीक है।
1: अब बना।
3: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
0: भाई
1: हा?
0: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
0: ठीक है
1: चल चल चल चल, चल।
0: हाँ,
1: हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
0: हाँ, ठीक है, चल,
2: चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
3: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही।

0: सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राज वर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राज वर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
0: रवि
4: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
4: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेंसन,
5: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
5: नहीं नहीं,

0: ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
0: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे।

0: चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको अब दे देते हैं सबसे पहले हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। लोक कलाकार कुमारी मीना से जॉन सारी लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकधारा में अब दोपहर 1:45 पर। परिवार जगत कार्यक्रम में की जाएगी विश्व महासागर दिवस पर चर्चा और दी जाएगी विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस पर जानकारी। दोपहर 1:15 पर प्रसारित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में मॉडर्न करियर में टेक्नोलॉजी की भूमिका विषय पर भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी, जिसमें वर्धमान कॉलेज बिजनौर के शिक्षा शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेशु शर्मा से बातचीत करेंगी ज्योतिपाल। शास्त्रीय संगीत में कलाकार पंडित मणिराम का गायन आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 12:05 पर। राग होगा पट्टदीप की विलंबित

एक ताल और द्रुत तीन ताल। तबले पर संगत करेंगे उस्ताद निजामुद्दीन खान, सारंगी पर सुल्तान खान। अब आपको दे देते हैं आज संध्याकालीन प्रसारण सभा के अंतर्गत प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में। दिल्ली केंद्र से पब्लिक स्पीक का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत सुगम संगीत के अंतर्गत कलाकार वंशिका सोती से भजन आप सुनेंगे शाम 7:32 पर। विविधा के अंतर्गत वार्ताकार सुभाष चंद्र वर्मा से वार्ता आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। वार्ता का विषय होगा प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर विषय वस्तु विशेषज्ञ कुलदीप सिंह से प्रमोद सिंह की बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:15 पर। बूझो तो जाने कुछ खास है आज कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे। इस कार्यक्रम में आप लेंगे गीत संगीत का भी आनंद। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है आप सुनेंगे शाम 5:00। श्रोताओं ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कलाकार पंडित मणिराम से गायन। राग है पट्टदीप की, विलंबित एक ताल द्रुत तीन ताल। तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद निजामुद्दीन खान, सारंगी पर हैं उस्ताद सुल्तान खान।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे कलाकार पंडित मणिराम से गायन, राग था पट्टदीप की, विलंबित एक ताल और द्रुत तीन ताल। तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद निजामुद्दीन खान और सारंगी पर थे उस्ताद सुल्तान खान। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिडडे मेलोडी। मिडडे मेलोडी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, दोपहर का समय है और दिन की भागम भाग चल रही होगी हर तरफ, और कहीं तो लोग तनाव भरे माहौल में होंगे, कहीं जल्दबाजी में होंगे, कहीं कोई काम छूट रहा होगा तो कहीं किसी काम को पकड़ने की कोशिशें चल रही होंगी। इस आलम में लोग कहीं ना कहीं व्यस्त इतने हो जाते हैं कि आपाधापी में आनंद लेना यानी समय का लुत्फ उठाना भी भूल जाते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको कुछ ऐसा ही गीत सुनवा रहे हैं कि आप इस गीत को सुनने के बाद अपने काम के साथ साथ आप झूमने भी लगेंगे।

तो दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसे हमने लिया था फिल्म झुमरू से। इस गीत को लिखा भी किशोर कुमार ने और संगीतबद्ध भी किशोर कुमार ने ही किया। और दोस्तों, देखिएगा कि मस्ती भरे अंदाज में जब कोई वक्त गुजारा जाता है तो सकारात्मकता का एक भाव पैदा होता है। यानी तनाव से जब हम दूर हो जाते हैं, मस्ती भरे आलम में आ जाते हैं, तो हर काम सिद्ध होने लगता है। और फिर होता क्या है, फिर हम कदम दर कदम अपनी मंजिल की ओर बड़ी आसानी से बढ़ने लगते हैं। और दोस्तों, देखिएगा जैसे ज़िंदगी भी कहते हैं ना कि थोड़े ही समय के लिए होती है, हालांकि बड़े लंबे अरसे तक हम लोग जीवन जी जाते हैं। और ये कहा जाता है कि एक औसत आयु होती है, लेकिन औसत आयु को भी हम तभी पार कर जाते हैं जब हम तनाव मुक्त रहते हैं, हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं, अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। और गीत संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसे गाते गुनगुनाते वक्त और जीवन कब और कैसे गुजर जाता है इसका पता ही नहीं चलता।

दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। और गीत संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसे गाते गुनगुनाते वक्त और जीवन कब और कैसे गुजर जाता है इसका पता ही नहीं चलता।

0: भ्रमण था।
1: अभी आपने सुना मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों को इस प्यारे से गीत में, जिसे हमने लिया फिल्म प्रोफेसर से। गीत रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत शंकर जयकिशन का था। और दोस्तों, जैसे इस गीत में कहा गया कि ज़माना हमारा था और हमारा है, जी हाँ, ये ज़माना हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। लेकिन इस ज़माने में जीने का हमें एक हुनर चाहिए होता है, और उस हुनर को किसी साथी के साथ अगर बांटा जाए तो क्या होता है कि एक तो किसी साथी का साथ मिल जाता है, दूसरा जब काम बढ़ जाता है ना, तो बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी आसानी के साथ और तनाव रहित रहते हुए वो काम आगे बढ़ता है। और जब कभी कोई दिलरुबा साथ जुड़ी हो तो वो हमारे दुख सुख में हमारा साथ भी देती है और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों को दिल दे के देखो फिल्म के इस प्यारे से गीत में, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया उषा खन्ना ने। श्रोताओं, गीत संगीत जो होती है वो अपने जीवन की राह को आसान कर देती है, मन में रस घोल देती है और किसी को अपना बनाने की ओर इशारा कर देती है।

0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को सुन रहे थे आप फिल्म मजबूर के इस प्यारे से गीत में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया। श्रोताओं, अब एक अल्प विराम ले लेते हैं और सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय

0: संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: इस संदेश के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, गीत संगीत का हम आनंद ले रहे हैं और गीत संगीत के साथ मन में एक खुमारी सी छाई है और मस्ती का आलम इस समय इस कार्यक्रम में पूरी तरह से बना हुआ है। और देखिएगा, जिस तरह की एक मौसम की बात हम कर रहे हैं कि मस्ती का आलम, तो मौसम भी इस समय चूंकि भीषण गर्मी का समय है और कहीं चटक धूप है, तो कहीं हल्के हल्के बादल जो हैं वो हमारे मन को शीतलता भी पहुंचा रहे हैं। यानी एक हल्का सा मौका मिलता है मौसम के कड़क मिजाज से बचने का। और जब कभी ऐसा मौका मिलता है तो वो होता है मौसम जब आकाश पर घने बादल छाए होते हैं, और ऐसा जब मौका बनता है ना, तो भी दिल मस्ती में डूब जाने को करता है।

ये प्यारा सा गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म चित्रलेखा से। सहर लुधियानवी का लिखा ये गीत था और संगीत इसमें था रोशन का। और दोस्तों, जैसे जैसे पल बीतते हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता है और पहर बीतता है, तो दिन का मिजाज भी बदलता चला जाता है। इस दिन के मिजाज में कुछ लोग नए मिलते हैं, कुछ मिलकर बिछड़ जाते हैं। ये मिलने जुलने का सिलसिला जो होता है वो दिन भर चलता रहता है। इस बदले हुए मिजाज को भी कुछ लोग दिल में बसाते हैं, और जो लोग इस बदले मिजाज को दिल में बसाते हैं, कुछ मीठी मीठी यादें अपने साथ रखते हैं, और उन यादों को साथ रखने के साथ मुस्कुराते हैं, इठलाते हैं और किसी के दिल में बस जाते हैं, किसी को अपने दिल में बसा लेते हैं, तब ये दिन खूबसूरत बन जाता है।

0: इस प्यारे से गीत को भी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम हिम्मत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुन लेते हैं फिल्म नमकीन का ये प्यारा सा गीत आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ में। गीत गुलजार ने लिखा है और संगीत आर डी बर्मन का है।
1: Mm-hmm.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम परिवार जगत, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट दीप्ति माहेश्वरी। आज हम बात कर रहे हैं विश्व महासागर दिवस की, जो हर साल आज के ही दिन अर्थात 8 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें महासागरों के महत्व को समझने और उनके संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये एक नीले ग्रह के रूप में दिखाई देती है। इसका कारण है कि हमारी पृथ्वी की 71% सतह महासागरों से ढकी हुई है। यही महासागर हमारी धरती को जीवन प्रदान करते हैं। हम जो सांस लेते हैं, जो वर्षा हमें पानी देती है और जो जलवायु हमारे जीवन को संतुलित रखती है, इन सब के पीछे महासागरों का बहुत बड़ा योगदान है। महासागरों के इसी महत्व और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित विश्व सम्मेलन में हुई थी। बाद में वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से 8 जून को विश्व महासागर दिवस घोषित किया। श्रोताओं, महासागर केवल पानी का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि ये महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवन तंत्र है। दुनिया के लगभग 80% जीव जंतु और वनस्पतियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महासागरों से जुड़ी हुई हैं। छोटी सी प्लवक से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक लाखों प्रजातियां महासागरों में निवास करती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऑक्सीजन उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा महासागरों से आता है? समुद्र में मौजूद सूक्ष्म पौधे और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन बनाते हैं। यानी हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं वो महासागरों की ही देन है। महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य से प्राप्त गर्मी को अवशोषित करते हैं और उसे पूरी दुनिया में वितरित करते हैं। अगर महासागर ना होते तो पृथ्वी पर मौसम या तो अत्यधिक गर्म होता या फिर ठंडा होता, जिससे जीवन संभव नहीं रह पाता। दोस्तों, महासागर हमारे आर्थिक जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्रों पर निर्भर हैं। मत्स्य पालन, समुद्री व्यापार, पर्यटन और समुद्री परिवहन जैसे उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत जैसे देश में तो समुद्र का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हमारे पास लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे महासागर कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सबसे पहली समस्या है, जो सबसे बड़ी भी है, प्लास्टिक प्रदूषण। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंच जाता है। प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और अन्य अपशिष्ट समुद्री जीवों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। कई बार कछुए प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्री पक्षी और मछलियां भी इस प्रदूषण का शिकार बन रही हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में महासागरों में मछलियों से अधिक प्लास्टिक हो सकता है। ये केवल समुद्री जीवन के लिए नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक हमारे भोजन और पीने के पानी तक पहुंच चुका है। दूसरी बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन।
बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। इसका प्रभाव कोरल रीफ्स पर पड़ रहा है, जिसके कारण हजारों समुद्री प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। इसके अलावा ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के सामने बाढ़ और विस्थापन का खतरा पैदा हो रहा है। साथ ही महासागरों में आधुनिक तकनीकी के कारण अत्यधिक मछली पकड़ी जा रही हैं, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्रोताओं, आज का ये दिन विश्व महासागर दिवस केवल हमें समस्याओं को याद दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि समाधान खोजने और सकारात्मक कदम उठाने की प्रेरणा भी देता है। हम सभी को अपने स्तर पर महासागरों की रक्षा में योगदान अवश्य देना चाहिए। इसके लिए हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम महासागरों और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने का प्रयास करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहेंगे और दूसरों को

0: चंदन का एहसास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम परिवार जगत में। आज के समय में तकनीक केवल हमारी सुरक्षा का साधन नहीं है, बल्कि हमारे करियर की दिशा और सफलता का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, मीडिया, बैंकिंग और उद्योग, हर क्षेत्र में तकनीक ने कार्य करने के तरीकों को बदल दिया है। ऐसे समय में आधुनिक करियर की चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए तकनीकी की भूमिका को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए एक भेंटवार्ता आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसका विषय है मॉडर्न करियर में टेक्नोलॉजी की भूमिका, जिसके अंतर्गत डॉक्टर ऋषु शर्मा, शिक्षा शास्त्र विभाग अध्यक्ष वर्धमान कॉलेज बिजनौर से बातचीत कर रही हैं ज्योति पाल।
4: श्रोताओं, हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज हर व्यक्ति के जीवन और करियर को प्रभावित कर रहा है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न करियर, यानी आधुनिक करियर में तकनीक की भूमिका। तकनीक ने न केवल हमारे काम करने के तरीकों को बदला है, बल्कि करियर के नए अवसर भी पैदा किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, डाटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्र युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने खास मेहमान को आमंत्रित किया है, जो है बिजनौर के वर्धमान कॉलेज से डॉक्टर ऋषु शर्मा मैम। ऋषु शर्मा मैम शिक्षा शास्त्र विभाग में विभाग अध्यक्ष हैं और हम उनका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम।
5: नमस्कार मैम, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आपने आज इस चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया।
4: तो आइए उनसे जान लेते हैं कि तकनीक आधुनिक करियर को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है और युवाओं को इसके लिए कैसे तैयार होना चाहिए। ऋषु मैम, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आधुनिक करियर के विकास में तकनीक की क्या भूमिका है।
5: देखिए मैम, आज के समय में तकनीक करियर के लिए सिर्फ एक हेल्पिंग टूल नहीं है, बल्कि ये एक रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। इसने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां काम मैनुअल था, सीमित था, वहीं आज तकनीक की वजह से हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, कम समय में बेहतर परिणाम दे सकते हैं और ग्लोबल लेवल पर भी जुड़ सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आज के दौर में तकनीक करियर ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर आप बहुत से देखें तो हमारे देश के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीआई टैग के साथ देश विदेश में पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ का जो फैब्रिक है, हमारे यहाँ के जो हस्तकला शिल्प है, वो भी तकनीक की सहायता से दूर दूर तक पहुंच रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से जो हमारे रीच नहीं बढ़ा पाते थे, उनकी रीच भी अब पूरे विश्व के हर कोने तक बढ़ रही है।
4: मैम, आज के समय में कौन कौन से करियर क्षेत्र तकनीक के कारण तेजी से उभर रहे हैं?
5: देखिए, वैसे तो अगर हम किसी भी करियर की बात करें
4: जी,
5: तो उसको अगर आपको उड़ान देनी है और आप उसमें तकनीक का प्रयोग करेंगे तो उसको पंख लगेंगे। लेकिन अगर हम बात करें आजकल कौन से तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रमुख है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, क्योंकि वो कम समय में बेहतर परिणाम दे सकते हैं।
4: बिल्कुल।
5: डेटा साइंसेज और एनालिटिक्स, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है और डेटा को एनालाइज करके, प्रॉपर अनुसंधान, प्रॉपर रिसर्च करके हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र में बदलाव करने की आवश्यकता है। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा डेटा बहुत सारी जगह शेयर होता है, हम जैसे ही अपने फोन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, हमारे फोटोज, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारी जो लोकेशंस हैं, वो शेयर होती हैं, तो क्योंकि डेटा चोरी का खतरा बढ़ रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन,
6: क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी जो नई पीढ़ी है वो कंटेंट क्रिएशन में बहुत आजकल अपना एक इंटरेस्ट दिखा रही है, एक्टिव है, तो कंटेंट क्रिएशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। एडिटिंग करना, फोटोग्राफी करना, प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स देना, इन सब में ई कॉमर्स, फिनटेक, जैसे भीम, यूपीआई एप्स वगैरह हैं, तो इन सब में डिजिटल पेमेंट्स, बैंकिंग सॉल्यूशंस, ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो बहुत तेजी से उभर रही हैं।
7: जी मैम, जैसे आपने अभी बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी एआई की, अच्छा एआई रोजगार के अवसरों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं?
6: देखिए, एआई से जुड़ा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ जो अभी तक मैंने देखा है एक दो साल में, तो लोगों के मन में डर भी है और एआई अवसर भी है। उनको

0: कई बार ऐसा लग रहा है कि एआई शायद उनकी नौकरियां ले लेगा या ऐसा, जबकि एक जब मैंने सबसे पहला वर्कशॉप एआई के ऊपर अटेंड किया था तो उसमें बताया गया था कि एआई कोई जॉब्स नहीं लेगा, एआई सिर्फ उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो एआई नहीं जानते हैं। तो यानी कि अब दो तरीके के लोग होंगे, जिन्हें एआई को यूज करना आता है अपने प्रोफेशन के हिसाब से और जिन्हें एआई को यूज करना नहीं आता है और उनके प्रोफेशन में उसकी जरूरत है। तो अगर हम देखें तो एआई में है डर और अवसर। तो सच यह है कि एआई उन्हीं कामों को खत्म कर रहा है जो रूटीन टास्क है, जैसे एक ही काम का रिपीटेशन है बार बार, जैसे डेटा एंट्री करनी है तो वो एआई की सहायता से हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं कम समय में। लेकिन इसके साथ साथ ही एआई नए और इनोवेटिव रोजगार भी पैदा कर रहा है, जैसे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई एथिक्स एक्सपर्ट्स और डेटा साइंटिस्ट। तो एक तरीके से देखा जाए तो एआई नौकरियों को खत्म नहीं कर रहा है, उन्हें रीडिफाइन कर रहा है। जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारा काम करने का तरीका है, उसमें वो बदलाव ला रहा है।
1: तो हम एआई को डर ना समझकर अवसर समझे और उसको सीखें और उसके साथ काम करें तो ज्यादा
0: अच्छा है। जी मैम, बिल्कुल।
1: क्या तकनीक पारंपरिक नौकरियों के लिए चुनौती बन रही है?
0: देखिए, चुनौती तो है लेकिन ये एक सकारात्मक बदलाव है। देखिए, अगर हम अब से 20 या 25 साल पहले अपनी बैंकिंग टेक्नोलॉजी को भी देखें तो बैंक्स में देखिए कितने रजिस्टर्स होते थे, लोग लेजर्स और सब मेंटेन करते थे। लेकिन अब हमारे पास CBS है, कोर बैंकिंग सिस्टम्स है, तो बड़े आराम से हम कहीं से भी अपने अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, ATMs, ऑनलाइन बैंकिंग, इतनी चीजें हैं। तो तकनीक से देखिए एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। और जैसे कि पहले ट्रेडिशनल अकाउंटिंग थी, अब हमारे पास डिजिटल सॉफ्टवेयर हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, यदि हम खुद को समय के साथ नहीं बदलेंगे तो हमें पेरिश होना ही है। जैसे कि जो भी जानवर, ये तो हमारा एक बायोलॉजी का नियम भी है कि जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो पेरिश होना ही है, तो उसी तरीके से हमका भी है। लेकिन अगर हम अपनी पारंपरिक स्किल्स के साथ टेक्निक्स को भी सीख लें तो एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक बदलाव हम समाज में ला सकते हैं।
1: परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज हम युवाओं की बात करें तो हर किसी को जॉब चाहिए। बहुत एजुकेटेड है, पढ़ाई लिखाई इतनी कर ली, डिग्रियां उनके पास इतनी है, बट क्या जॉब नहीं है? तो ऐसे कौन से कौशल विकसित करें ताकि उनकी जीविका चले और वो देश का भी विकास हो?
0: देखिए, आजकल के युवाओं के सामने अगर हम देखें तो कुछ चुनौतियां तो हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, जिसमें सबसे पहले आएंगी उनके पास हार्ड स्किल्स, जो उनके जो जॉब की कोर स्किल्स हैं वो उनकी हार्ड स्किल्स आएंगी। जैसे अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर है तो उसके पास बेसिक कोडिंग होनी चाहिए, उसको डेटा को कैसे समझना है, मतलब डेटा लिटरेसी उसको आनी चाहिए, उसे कुछ AI टूल्स अपनी फील्ड के हिसाब से लगाने आने चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि आजकल इतना प्रेशर है, हम देखते हैं कि एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, हम लोग क्योंकि शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल, जो हमारा युवा है, वो एक बड़े ही मानसिक संघर्ष से भी जूझता है, तो उसके पास कुछ अच्छी कॉग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो उस स्ट्रेस को भी कॉम्बैट कर सके, उसकी बेहतर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे जो खास चीज है युवाओं में वो होना चाहिए लर्न अनलर्न रीलर्न, जिसे कंबाइन करके अगर मैं कहूं तो लर्नेबिलिटी, मतलब प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने की उसके अंदर एक इच्छा रहनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये इच्छा खत्म हो जाती है वो उसका जो विकास है वो रुक जाएगा। तो हार्ड स्किल्स हो या सॉफ्ट स्किल्स हो, उसे अगर अपने आप को बनाए रखना है, स्वस्थ रखना है अपनी फील्ड में, मानसिक रूप से भी और एक तरीके से आर्थिक रूप से भी, उसे स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके अंदर ये इच्छा बनी रहनी चाहिए।
1: डिजिटल स्किल्स का वर्तमान नौकरी बाजार में कितना महत्व है?
0: देखिए, क्योंकि समय के साथ साथ चीजें डिजिटलाइज हो रही है, है ना। पहले हमारे पास एनालॉग मॉडल्स होते थे, लेकिन क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस जो है बढ़ रही है, पहले मुझे खुद याद है मैंने 3G फोन यूज किया है, फिर 4G फोन यूज किया और अब 5G फोन यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो इंटरनेट डेटा की स्पीड है वो खूब है, बैंडविड्थ हमारे पास ढेर सारी अवेलेबल है। तो डिजिटल स्किल्स का वर्तमान नौकरी में महत्व तो है ही, यानी कि जितना पहले लिखना पढ़ना जरूरी था उतना ही अब डिजिटल स्किल्स को, डिजिटल टूल्स को जानना और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आजकल के समय में कोई ईमेल्स नहीं चेक कर पा रहा है, कोई अपना बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन नहीं चेक कर पा रहा है, UPI से पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि वो डिजिटली इलिटरेट है। यानी कि जो एक साक्षरता, आजकल एक डिजिटल लिटरेसी जो है वो सभी के लिए होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वो चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ केयर हो। अब देखिए, जैसे हम सबकी आभा ID है हेल्थ केयर की, वो सबकी हमारी ऑनलाइन बनी होती है, हमारी वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल, वो सब चीजें, जनगणना हम अपने आप ऑनलाइन सब कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि कोई फील्ड अब ऐसी है नहीं जिसमें आप टेक्निक का यूज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से कहते हैं भाई हमसे नहीं होता, हमें नहीं आता, हम तो पुराने जमाने के हैं, तो फिर उतना काम चलने वाला नहीं है, मतलब अब कोई एस्केप रूट नहीं है, टेक्नोलॉजी आपको सीखना ही पड़ेगा।
1: ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने करियर निर्माण को कैसे आसान बना दिया?
0: देखिए, पहले ऐसा होता था मैम कि जैसे बच्चे हैं, बहुत सारी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, आर्थिक स्थितियों की वजह से कोचिंग्स लेने के लिए, क्लासेस लेने के लिए बड़े शहरों तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब हमारी ऑनलाइन जो हमारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज, उन्होंने इन सब बैरियर्स

0: खत्म कर दिया है। बच्चे अपने घर के कंफर्ट में, अपने माता पिता के सामने और कम खर्चे में उसी लेवल की कोचिंग प्राप्त कर सकता है जैसे बड़े शहरों में भी बच्चे प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसके साथ साथ ही उनकी सेफ्टी भी है। तो एक तरीके से ई लर्निंग ने शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है। अब हमें, अगर हमारे मन में इच्छा है तो उस इच्छा को हम, हमारे लिए कोई बैरियर्स नहीं है, जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स हों या फाइनेंशियल बैरियर्स हों, अब वो बैरियर्स नहीं है। अगर हमने अपना लक्ष्य बना लिया है कि हमें ये कॉम्पिटिशन क्रैक करना है, तो उसको क्रैक करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी बिल्कुल वैसे ही अवेलेबल है जैसे ऑफलाइन होती
1: है, और बहुत कम पैसों में।
0: और
1: अगर एक लाइन में हम इस बात को कहें तो वास्तव में वही बच्चा सक्सेस है आज के समय में जो पढ़ना चाहता है या कुछ करना चाहता है। कोई बहाना नहीं है उसके लिए कि हमारे पेरेंट्स हमें दूर नहीं भेज सकते,
0: बिल्कुल,
1: हमारे पास पैसा नहीं है, ये किसी तरह का कोई बहाना नहीं है।
0: आपने ये भी देखा होगा मैम, जैसे बच्चे पहले 11th 12th में कोचिंग वगैरह करने के लिए कोटा जाते थे, तो एक तरीके से देखा जाए तो 11th या 12th का जो बच्चा है वो छोटा ही है और कभी घर से बाहर नहीं रहा है, तो उसके ऊपर जो वो प्रेशर पड़ता था, कई बार वो डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार भी होता था। लेकिन अभी क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आप बिना फैमिली के नहीं रह सकते, इतने बड़े शहर में मैनेज नहीं कर सकते चीजें, तो आप उसी कोचिंग को अपने घर के एटमॉस्फेयर में भी कर सकते हैं। और जैसे हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हमारे पास जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्स एरा है, यूडेमी है, पेड यूट्यूब चैनल्स हैं, जिन्होंने सीखने की लागत को कम कर दिया है और हम अपने करियर को अपग्रेड भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरीके से बहुत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने शिक्षा को एक नई दिशा दी है।
1: बिल्कुल। अच्छा, तकनीक के बढ़ते उपयोग से कार्यस्थल की प्रकृति में क्या बदलाव आए हैं?
0: देखिए, सबसे पहले जैसे अब हम देखें जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वहां पे तो वर्क फ्रॉम होम, मीटिंग्स फ्रॉम होम का कल्चर था, लेकिन हमारी जैसे फील्ड है एजुकेशन या बाकी कुछ ऑफिसेज, उनमें वर्क फ्रॉम होम वाला उतना कल्चर नहीं था। लेकिन कोरोना ने हमें एक अपॉर्चुनिटी भी दी कि हम इन सब जूम प्लेटफॉर्म्स, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इनके साथ हम थोड़ा कंफर्टेबल होते चले गए। तो अब जो है, जैसे अभी मोदी जी ने भी कहा ईंधन बचाने के लिए, उन्होंने भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम कुछ दिन, हफ्ते में 3-4 दिन हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और देखिए, वर्क फ्रॉम होम एक तरीके से वर्किंग मदर्स के लिए कितनी बड़ी एक फैसिलिटी है कि वो काम भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं और अपने छोटे बेबी को भी देख सकती हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो रिमोट वर्किंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं, तो उसमें जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, हम एनर्जी भी सेव कर रहे हैं, हम एक तरीके से जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी सेव कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा है। देखा जाए तो वर्क प्लेस अब एक 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, तकनीक से हमें एक हाइब्रिड वर्क कल्चर की आजादी मिल गई है, वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह सब एक नॉर्मल सी बात हो गई है, और अब फोकस इस बात पर है कि आप कितना डिलीवर कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में बैठे हैं और आपने क्या काम किया, तो वो जो बंधन है वो सब टूटते जा रहे हैं अब।
1: अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए तकनीक कैरियर के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं?
0: वैसे अब देखा जाए तो हमारा ग्रामीण और जो रूरल और अर्बन वाला बैरियर है वो तो अब टेक्नोलॉजी ने मिटा ही दिया है, लेकिन फिर भी अब अगर देखा जाए तो वो अपने गांव के से बैठ के भी इंटरनेट और लैपटॉप की सहायता से बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग में आपका वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, ऐसी चीजें आ जाएंगी, वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। अब तक कुछ लोगों ने कुकिंग से इतना हासिल किया है जिसमें उन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र से ही पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। खेती की टेक्निक के ऊपर वो लोग नए स्टार्टअप्स भी शुरू कर सकते हैं, तो ग्रामीण युवाओं के लिए भी अवसरों की कोई कमी नहीं है।
1: बिल्कुल। अच्छा, तकनीक बदलाव के साथ खुद को अपडेट रखना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि जो सॉफ्टवेयर आज ट्रेंड में है वो सॉफ्टवेयर कल ट्रेंड में नहीं होगा, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि लर्न, फिर अनलर्न और फिर रीलर्न, जो हमने सीखा है उसे हमें हटा के फिर दोबारा नई चीज सीखनी है। हम देखते हैं, जैसे हम एक फोन लेते हैं, मैंने जब सबसे पहली बार लिया फोन अपना तो वो था नार्जो 10 और अभी नार्जो 60-90 तक का वर्जन लॉन्च हो चुका है, तो यानी कि सॉफ्टवेयर्स की जो टेक्निक है वो बहुत बार अपडेट हो रही है, तो उसके लिए हमें अपने आप को, नहीं तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे इस समय में, ऑब्सोलीट हो जाएंगे, तो इसलिए परिवर्तन आवश्यक है।
1: अच्छा, साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल। देखिए, अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले सामने आ रहे थे, है ना, और लोगों का कई बार यूपीआई फ्रॉड्स इतने सारे होते हैं, उसके लिए समय समय पर फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारे यहाँ भी कई बार हम बताते हैं लोगों को कि आपको अपना पिन नहीं बताना है, शेयर नहीं करना है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो यूज और मिसयूज वो एक ही कॉइन की 2 साइड्स हैं, तो अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो क्या होता है कि कोई और उसका मिसयूज करने के लिए भी तैयार बैठे हैं, तो उस मिसयूज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कुछ तरीके से एक लाइन ऑफ एक्शन डेवलप करनी पड़ेगी, तो इस फील्ड में भी बहुत सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं।
1: जी, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान है बट हमारे पास कोई भी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, वो काम चल जाएगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा मैम। सॉफ्ट स्किल्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं, जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ही एक टर्म है हमारे पास मैनेजमेंट में और एजुकेशन में भी, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम ईआई स्किल्स बोलते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स की तो हमको और अधिक आवश्यकता है। जैसे हमारे पास इस समय बहुत सारे चैटबॉट्स हैं, लाइक चैट जीपीटी है, हमारे पास जेमिनी है। अगर हमें किसी कंटेंट को लिखना है तो हमारे पास लिखने के लिए लोग सहायता कर देंगे, लेकिन एक्चुअली हमें उसको कैसे अप्लाई करना है अपनी रियल लाइफ में। हम सपोज कीजिए एक मैनेजर हैं, तो हमें अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, उसके लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। लाइफ में अगर हमारे सामने कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जब हमें कुछ सख्त निर्णय लेने हैं, तो उन निर्णयों को हम कैसे लेंगे, कई बार सही गलत का फैसला करना है, तो उसमें हमको सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत पड़ेगी इफ वी वांट टू बी अ गुड। जो हमारा ह्यूमन माइंड है, उसे कोई भी रोबोट या कंप्यूटर कॉपी नहीं कर सकता,
1: इमोशंस ही नहीं है उसके पास।
0: हम हर सिचुएशन के हिसाब से अपना निर्णय लेंगे, हर व्यक्ति के हिसाब से हमारा निर्णय, हमारी सोच अलग होगी, हर परिस्थिति के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से। तो सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत आवश्यक है।
1: अच्छा, भविष्य में किन तकनीक क्षेत्रों में सबसे अधिक अवसर देखने को मिल रहे हैं?
0: देखिए, भविष्य तो कुछ चुनिंदा चीजों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्योंकि वो बार बार हर फील्ड में अपना काम कर रही है। जैसे जनरेटिव एआई है, ऑटोमेशन है, क्लीन टेक है, सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक, हेल्थ केयर, इन सभी में भविष्य बदल रहा है।
1: छात्रों और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है ताकि वे तकनीक का सही उपयोग करके अपना करियर बेहतर बना सके?
0: देखिए, मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि देखिए, देश का भविष्य आप हैं, तो आप तकनीक के उपभोक्ता बनने की बजाय इसके निर्माता या स्मार्ट यूजर बनिए। यानी कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कंज्यूमर बनने की बजाय आप उसके क्रिएटर बनिए। सोशल मीडिया पर रील्स देखकर समय गंवाना बहुत आसान है, लेकिन उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। इसलिए अपने आप को भटकने मत दीजिए, तकनीक को अपने करियर के लिए अपना हथियार बनाइए, क्यूरियस रहिए, लगातार सीखते रहिए और नए नए प्रयोग करिए। भविष्य आपका है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो श्रोताओं, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि तकनीक आधुनिक करियर का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। जो युवा नई तकनीकों को सीखने और अपनाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए अवसरों की कोई भी कमी नहीं है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की रेशु मैम आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम आपका कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इस विषय पर चर्चा कर सकूं।
2: अभी हम सुन रहे थे एक भेंट वार्ता। आशा करते हैं आपको ये भेंट वार्ता अच्छी लगी होगी। दोस्तों, समय समय पर हम आपको भिन्न भिन्न जानकारियां देते रहते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के बारे में, जो हर साल आज के ही दिन अर्थात 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को ट्यूमर के प्रति जागरूक करना, इसके लक्षणों की जानकारी देना और मरीजों व उनके परिवारों को समर्थन प्रदान करना है। श्रोताओं, मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारी सोच, याददाश्त, भावनाओं, गतिविधियों और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। जब मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और एक गांठ का रूप ले लेती हैं, तो उसे मस्तिष्क ट्यूमर कहा जाता है। ये ट्यूमर कैंसर युक्त हो भी सकता है और नहीं भी। मस्तिष्क ट्यूमर के कुछ सामान्य लक्षणों में लगातार सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, दृष्टि में धुंधलापन, सुनने में परेशानी, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी, संतुलन बनाने में कठिनाई और याददाश्त में कमी शामिल हैं। हालांकि ये लक्षण अन्य बीमारियों में भी दिखाई दे सकते हैं, इसलिए समय पर चिकित्सीय जांच कराना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मस्तिष्क ट्यूमर के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन आनुवांशिक कारण, कुछ प्रकार के विकिरणों का संपर्क और अन्य जैविक कारक इस जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में MRI, CT स्कैन और बायोप्सी जैसी तकनीकों की मदद से इसका पता लगाया जा सकता है। आज चिकित्सा क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जैसी उपचारों के माध्यम से कई मरीज सफलतापूर्वक इलाज प्राप्त कर रहे हैं। अगर बीमारी का पता शुरुआती चरण में लग जाए तो उपचार सफलता उपचार की सफलता काफी हद तक बढ़ जाती है। आज के दिन विश्व ट्यूमर दिवस हमें ये संदेश देता है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना

हमारी जिम्मेदारी है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक असामान्य सिरदर्द या ऊपर बताए गए लक्षण महसूस हो तो नजरअंदाज ना करें और तुरंत विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। श्रोताओं, आप सभी स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। इसी संदेश के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, परंतु जाने से पहले जानना चाहेंगे कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी शिकायतें और सुझाव देने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम परिवार जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन नंबर 2467-63। इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त दीप्ति माहेश्वरी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम परिवार जगत संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं लोक कलाकार कुमारी मीना की आवाज में जॉन सारी लोकगीत।

0: कार्यक्रम में आइए अब सुन लेते हैं ये संदेश।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोक धारा में आप सुन रहे हैं लोक कलाकार कुमारी मीना की आवाज़ में जौनसारी लोकगीत। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे लोक कलाकार कुमारी मीना की आवाज में जौनसारी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: and in cricket. India enforced follow-on after bunting out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्वच्छ भारत अभियान पीएम आवास योजना जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में

0: आने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स

0: संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने

0: जापान के विदेश मंत्री आबास अराघजी के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। नई फिल्मों से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, जीवन में जब कुछ नयापन होता है, जीवन में जब कुछ नया होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ पॉजिटिव सकारात्मक होता है, तो एक बदलाव जो होता है वो सही दिशा में आगे बढ़ता है। और सही दिशा में आगे बढ़ने पर जो मन में एक ऊर्जा पैदा होती है, आगे बढ़ने के लिए जो एक अवसर मिलते हैं उन्हें हम तुरंत लेते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर एक सिलसिला शुरू होता है उन्नति का, तरक्की का, आगे बढ़ने का। और देखिएगा, जब कभी भी हम एक फासला तय करते हैं, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो एक ताजगी का एहसास, एक नएपन का एहसास होता है। इसी नएपन के एहसास को आगे बढ़ाते हैं नई फिल्मों से कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे हमने लिया फिल्म छिछोरे से। इस गीत में आवाज़ है अरिजीत सिंह की, गीत रचना अभिजीत अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत प्रीतम ने दिया है।

जी हाँ दोस्तों, वो दिन भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब जमाने थे रोज़ एक नया ख्वाब आँखों में सजा लेते थे। अब तो भागती है ये ज़िंदगी एक पल की फुर्सत के लिए, कभी हम भी बेफिक्र होकर खुलकर मुस्कुरा लेते थे। दोस्तों ज़िंदगी हमेशा नएपन का नाम है। अगर हम एक ही तरह की एक ही भाव के साथ एक ही तरह से ज़िंदगी को जीते रहेंगे तो बहुत बोर सी हो जाती है। तो ज़िंदगी को जीने के लिए हमें कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई बदलाव अपने दिन में, अपने काम में, अपने व्यवहार में हमें करते रहना चाहिए। उससे एक नएपन का होता है एहसास।

0: अभी आपने सुना फिल्म शेर शाह का ये प्यारा सा गीत दर्शन रावल की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा रश्मि विराग ने, जावेद मोहसिन ने इसमें संगीत को पिरोया। और दोस्तों, दूरियां जो हैं वो जीवन में कोई मायने रखती? जी हाँ, दूरियां जीवन में कोई मायने नहीं रखती जब दिल जुड़ा होता है। जीवन के हर सफ़र में कोई अपना अगर मंजिल की तरह देखें तो वो दिल में बसा होता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। श्रोताओं, नई फिल्मों का गीतों को सुनवाने के साथ साथ जीवन में एक नएपन का एहसास भी हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ बातचीत में। और देखिएगा, जीवन के सफ़र में किसी न किसी का साथ होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे हाथ में हाथ हो तो रास्ता आसान लगता है। तेरे हाथ में हाथ हो तो रास्ता आसान लगता है, ये प्यार का सफ़र बड़ा ही खुशनुमा लगता है।

0: श्रोताओं, कुमार के लिखे और अरिजीत सिंह और साथियों की युगल आवाज़ों में विशाल शेखर के संगीतबद्ध किए फिल्म वॉर के गीत को अभी आप सुन रहे थे। और इसी के साथ अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। और इस कार्यक्रम में हम नएपन की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से वो नयापन कहीं ना कहीं हमारे रोज़मर्रा के जीवन से, हमारी जीवन शैली से, हमारे काम से, हमारे व्यवहार से हर दिन हमें किसी ना किसी रूप में नज़र आता है। और उसमें अगर बदलाव नज़र आता है ना, तो हर पल हमें उस नएपन का एहसास, उस ताजगी का एहसास होता है। और देखिएगा श्रोताओं, ताजगी का एहसास आपने महसूस किया होगा कि आइसक्रीम से भी होता है। जी हाँ, कुछ लोग आइसक्रीम को खाने के बाद तरोताज़ा हो जाते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं। और एक तरह से आप देखिएगा कि मन में एक नयापन, एक जोश सा जाग जाता है, ख़ास तौर से इन दिनों में जब गर्मियों का चिलचिलाती गर्मियों का मौसम है, भीषण गर्मी समय है, तो ऐसे में। लेकिन हाँ, अगर इस आइसक्रीम को अगर हम ज़िंदगी से जोड़ कर देखें, जी हाँ, इस आइसक्रीम को अगर हम ज़िंदगी से जोड़ कर देखें, तो होता क्या है कि भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में आइसक्रीम को जब हम खा रहे होते हैं, तो एक तरफ तो ताजगी का एहसास हो रहा होता है, तो मन ये करता है कि इस आइसक्रीम को थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से खाया जाए, ताकि ये ताजगी, ये नयापन, ये जोश जो है कुछ लंबा खिंच सके, यानी गर्मी से कुछ और राहत पाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस ये आते हैं कि भाई तेज़ धूप में, ज़्यादा गर्मी में ये आइसक्रीम पिघल भी रही होती है। जी हाँ, तो इस पिघलती आइसक्रीम को समय से खा लेने में ही समझदारी है, ताकि एक ताजगी का एहसास भी बना रहे और जो नयापन हम चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं इस गर्मी से बचाव के लिए, वो भी बना रहे। तो फिर इस प्यारे से गीत के साथ फिर से जुड़ते हैं कार्यक्रम में और लेते हैं फिर से एक नयेपन का एहसास, एक ताजगी का एहसास।

अभी आपने सुना फिल्म कबीर सिंह का ये गीत सचे टंडन और परंपरा ठाकुर की युगल आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत सचेत एवं परंपरा का। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है इस जिंदगी के लिए और जिंदगी से जुड़े प्यार के किस्सों के लिए कि तेरे प्यार की राहों में चलते जाना है, हर मुश्किल को हंसते हुए सहते जाना है। थाम कर तेरा हाथ ओ मेरे हम सफ़र, जिंदगी के हर मोड़ पर मुस्कुराते जाना है। श्रोताओं, हम भी आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और लेते हैं एक और प्यारे से गीत का आनंद।

अभी आपने सुना पलक मुच्छल की आवाज़ में MS धोनी की फिल्म का ये गीत, मनोज मुंतशिर के लिखे और अमान मलिक के संगीतबद्ध किए। और दोस्तों, प्यार को शब्दों में बांधना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। प्यार तो उस आज़ाद पंछी की तरह है कि जिसे खुला आसमान चाहिए होता है। अगर इस परिंदे को, यानी प्यार रूपी परिंदे को, अगर खुले आसमान में छोड़ा जाए तो ही वो बहुत ऊंची परवाज भर सकता है। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म नीरजा में ये गीत हमने लिया है और इस गीत को आवाज़ दी है शेखर खाजियोनी ने, शादाब फरीदी ने और फरहान साबरी ने। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है विशाल खुराना ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्याकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी द्वितीय प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के

0: आकाशवाणी से जुड़े उनके अनुभवों के बारे में।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर आकाशवाणी से अपने जुड़ाव की बात करूं कि रेडियो मैंने कब सुनना शुरू किया, तो ये बहुत पहले की बात है। जब मैं एक छोटी बच्ची हुआ करती थी और हमारे घर में एक रेडियो हुआ करता था, हमारी आंखें ही आकाशवाणी के कार्यक्रम वंदना से खुलती थी। यानी सुबह सवेरे आकाशवाणी के प्रसारण शुरू होते थे रेडियो पर, सब अपना अपना काम कर रहे होते थे और रेडियो सुन रहे होते थे। गर्मियों की छुट्टियों में जब हम गांव में जाते थे, तो वहाँ हमने महसूस किया कि टीवी नहीं है, समाचार पत्र नहीं है, मैगजीन्स नहीं हैं, तो लगता था कि यहाँ के लोगों को जानकारी कैसे मिलती है, मनोरंजन का क्या साधन है। फिर नोटिस किया कि एक रेडियो सेट हर एक घर में है, और चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, कोई महिला हो, कोई बच्चा हो या कोई कामकाजी व्यक्ति, सब रेडियो सुनते थे। सूचना के जो अन्य साधन है, जैसे समाचार पत्र है या टीवी है, तो उसके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखे हों, आपकी आंखें सही हों या आप तक वो साधन पहुंच पाए। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है समय, कि आपको अगर समय है आपके पास, तभी आप समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। कोई और काम करते करते समाचार पत्र नहीं पढ़ा जा सकता। तो यहाँ रेडियो ने क्या किया कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो अगर आप कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो उस काम को करते करते रेडियो सुन सकते हैं। अगर आप शिक्षित भी नहीं हैं, तभी भी आप रेडियो को सुन करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में टीवी सेट नहीं है, क्योंकि जैसे उस समय में हुआ करता था कि टीवी सेट नहीं होते थे, तो अगर किसी के घर में टीवी सेट नहीं है, वो टीवी नहीं देख सकता, तो भी वो आकाशवाणी के माध्यम से अपनी जानकारी बढ़ा सकता था। यानी कुल मिलाकर लोगों को अपनी आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, देश का कैसा विकास हो रहा है, पड़ोसी देशों से कैसे संबंध हमारे हो रहे हैं, कोई आपदा तो नहीं आने वाली है, कोई बीमारी तो नहीं फैलने वाली है, अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उससे बचाव कैसे करना है। जैसे उस समय की जो महिलाएं थीं, उनको शिक्षा की तरफ कैसे जागरूक किया जाए, कैसे एक महिला को जागरूक किया जाए कि वो खुद पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, स्पेशली बच्चियों को पढ़ाए, तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी थी वो घर बैठे रेडियो के माध्यम से उन्हें मिल रही थी। जो बच्चे पढ़ रहे थे, आगे कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, उनको वो घर बैठे जानकारी मिल रही थी। जो किसान थे, जो शिक्षित नहीं थे और बाहर की दुनिया से बहुत पीछे थे, ऐसे लोगों को कृषि से संबंधित कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी जाती थी कि इस फसल को ये बीमारी लग सकती है, इस बीमारी से बचाव के लिए ये साधन अपनाए जाने चाहिए, या इस मंथ में इस फसल के साथ ये फसल बोनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के समाज के हर तबके के व्यक्ति को जागरूक करने का काम आकाशवाणी ने बखूबी निभाया। आकाशवाणी के माध्यम से रोजगार के साधनों के बारे में पता चलता था, विशेषज्ञों की वार्ताएं प्रसारित की जाती थी, शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकारों को घर बैठे सुनने का मौका मिलता था, और इतना ही नहीं, जो नए कलाकार थे उनको भी उतना ही मौका मिलता था। इसके अलावा जो क्षेत्रीय गायक हैं, यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के, किसी एक विशेष क्षेत्र के जो लोक गायक हैं, उनको भी मौका दिया जाता था अपनी कला को प्रदर्शित करने का। आकाशवाणी ने हमेशा से ही ऐसी भाषा शैली को अपनाया है जिससे किसी भी समुदाय विशेष की भावनाएं आहत ना हो, सबको एक सूत्र में बांध कर रखा है। कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, बहुत ही शालीन तरीके से उस विषय की सही जानकारी जनता तक पहुंचाई गई है। अगर पिछले 9 दशकों से तुलना की जाए, तो आज का समय बहुत ज़्यादा बदल गया है। लोग AI पर निर्भर हो गए हैं। मनोरंजन और जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेकों साधन हैं, लेकिन फिर भी एफएम चैनल,

0: डिजिटल स्ट्रीमिंग और आकाशवाणी के जो ये मोबाइल ऐप्स शुरू हुए हैं, इनके ज़रिए आज की पीढ़ी के दिलों में भी आकाशवाणी अपनी पहुंच बना रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात रही कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मुझे आकाशवाणी से जुड़ने का मौका मिला। मेरे लिए आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत लोगों के साथ इसका आत्मीय संबंध रहा है। भले ही अनाउंसर एक स्टूडियो में बैठा है और वहाँ पर अपनी अनाउंसमेंट कर रहा है, पर उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा अपना है और वो हमारे विषय में ही हमारे ही दिल की बात कह रहा है। और यही बात आकाशवाणी को सबसे अलग बनाती है। पिछले 90 वर्षों की जो यात्रा थी, ये केवल एक संस्थान की यात्रा नहीं है, बल्कि ये देश की संस्कृति और लोकतंत्र की यात्रा है, उसके विकास की यात्रा है। आज के इस विशेष अवसर पर मेरी यही कामना है कि आने वाले समय में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, गरिमा और जन सेवा की जो ये परंपरा है, इसको बनाए रखे और नई पीढ़ी का मार्गदर्शक बना रहे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी ने अपने 90 वर्षों का यादगार सफ़र पूरा किया है। इस दौरान तमाम विषम परिस्थितियां भी आईं, लेकिन आकाशवाणी ने उन परिस्थितियों में भी बेहतर और सुचारू रूप से प्रसारण उपलब्ध कराए। तभी तो आकाशवाणी को सुनने वालों की आज भी भरमार है। अभी आकाशवाणी नजीबाबाद की श्रोता प्रतिभा जी ने आकाशवाणी को लेकर अपने अनुभव और अपने विचार हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारी ये श्रोता इस बात का प्रमाण है कि हर आयु के लिसनर्स हमारे पास हैं और वो आकाशवाणी के प्रसारणों को बड़े चाव से सुनते हैं। आकाशवाणी के प्रसारण के ये 90 वर्ष एक शानदार उपलब्धि है श्रोताओं, जो आकाशवाणी से जुड़े सभी लोगों को गौरवान्वित करते हैं, हमें गौरवान्वित करते हैं और हमारे सभी श्रोताओं को भी गौरवान्वित करते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम रिश्ता ये खास है का ये अंक अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की दोनों सभाओं के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक प्रसारित किया जाएगा, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज क्रम होगा गपशप अड्डा। साथ ही युवा श्रोता कुछ खास है आज में जानेंगे विश्व महासागर दिवस के बारे में।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनवाया जाएगा शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा कीटनाशकों व फफूंदी नाशक का सही उपयोग। साथ ही कार्यक्रम में आज किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के विषय में भी जानेंगे। इस विषय पर विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री कुलदीप सिंह से प्रमोद सिंह की भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कलाकार वंशिका सोती के स्वर में भजन। ये कार्यक्रम शाम 7:32 पर प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत प्रसारित होगा आज रात 10:00। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनिएगा आज रात 8:30 पर।

रात 9:30 पर मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पी के सिंह से शोभित शर्मा की बातचीत प्रसारित की जाएगी। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे वैज्ञानिक BEDF डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा से सुवेंद्र सिंह की भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता का विषय होगा बासमती में रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानियां। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार में अभिनेता जीवन द्वारा अभिनीत फिल्मों के गीत सुनवाए जाएंगे।

पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनिएगा कल सुबह 10 बजे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं कल सुबह 11:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए प्रसारित होगा कल दोपहर 12:05 पर। महिला जगत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम में कहानीकार दीपा शर्मा की कहानी प्रसारित की जाएगी जिसका शीर्षक होगा मौन प्रेम की ताकत। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कल आप सुनेंगे कलाकार केशव अनुरागी के गाए गढ़वाली लोकगीत। समय रहेगा दोपहर 1:45। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी आप सुन सकते हैं कल शाम 5 बजे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत के अंतर्गत। योजनाएं होंगी आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की दोनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। शाम के 5:15 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: शाम के इस खूबसूरत पल में जब दिन की भाग दौड़ धीरे धीरे थम रही है और रात अपनी चादर फैलाने को तैयार है, हम लेकर आए हैं आपके लिए बातें, विचार, मुस्कान और ढेर सारी ऊर्जा।
1: जी हाँ, क्योंकि ये है युवाओं की आवाज़, उनके सपनों की उड़ान और उनके जज्बों का मंच। और आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी, मैं हूँ आपकी रेडियो पार्टनर रुमान परवीन।
0: दोस्तों, रुमान के साथ मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त और होस्ट मदिया रहमान। तो दोस्तों, कैसे हैं आप?
1: हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे चाय की चुस्की के साथ हमारे प्रोग्राम को।
0: बिल्कुल रुमान, वैसे हम अपने दोस्तों को ये बता दें कि आज है मंडे और मंडे में होता है हमारा मंडे स्पेशल सेगमेंट गपशप अड्डा,
1: जिसमें हम करते हैं आपसे कॉल पर बातें और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद के गीत। तो आप हमें कॉल करना बिल्कुल भी मिस ना करिए और डायल करिए हमारा व्हाट्सएप नंबर
0: जो कि है 9457078288। और अब पूछ लेते हैं आपसे हमारा आज का सवाल।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा आपसे सवाल रहेगा, बॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी?
0: तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा हमारे एबी पेश आकाश है नजरबात पर। तब तक के लिए सुनते हैं आज के कुछ जरूरी संदेश।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
2: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: डॉक्टर साहब सुनो तो।
6: हाँ हाँ बोलो।
5: डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूँ तो मुझे सपने में बंदर दिखाई देते हैं। और पता है आपको?
6: क्या?
5: वो फुटबॉल खेलते हैं।
6: बंदर फुटबॉल खेलते हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लो दवाई, सोने से पहले एक गोली खा लेना।
5: अरे डॉक्टर साहब, ये गोली कल रात को ही खा लूँ ना मैं?
6: कल रात को? हाँ हाँ क्यों, खा लो।
5: अरे नहीं, कल रात बंदरों का फाइनल मैच है ना, मैं मिस नहीं करना चाहता।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
6: दोस्तों, अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। हमारे अगले सेगमेंट कुछ खास है आज के साथ, जिसमें आज हम आपसे करेंगे उस सेगमेंट में ढेर सारी कुछ खास बातें।
5: और आज हम आपसे खास बातें करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि हमारी धरती, हमारे एनवायरमेंट और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है।
6: जी हाँ दोस्तों, आज है विश्व महासागर दिवस। हर साल ये दिन 8 जून को महासागर के महत्व को समझाने और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
5: महासागर केवल पानी का विशाल भंडार नहीं है, वे हमारी पृथ्वी के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वी की लगभग 70% सतह महासागरों से ढकी हुई है।
6: दोस्तों, और यदि महासागर जलवायु को भी सुरक्षित करते हैं, वर्षा चक्र को प्रभावित करने से रोकते हैं और लाखों जीव जंतुओं को छत देने का काम करते हैं।
5: इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी सांसों में मौजूद ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा समुद्री पौधे और सूक्ष्म जीवों से आता है।
6: यानी कि महासागर हमसे दूर जरूर है, लेकिन उसका संबंध हमारी हर सांस से है।
5: लेकिन दुख की बात यह है कि आज महासागर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन, बढ़ता तापमान, समुद्री जीवों का संकट उनके अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है।
6: बिल्कुल सही बात रुमान। समुद्र में फेंका गया कूड़ा और प्लास्टिक पानी को ही नहीं बल्कि उन वहां पे रहने वाले असंख्य जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है।
5: हाँ मदिहा, यही कारण है कि विश्व महासागर दिवस हमें याद दिलाता है कि महासागरों की रक्षा करना केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है।
6: दोस्तों, हम दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके भी बड़ा योगदान दे सकते हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और कचरे को सही जगह फेंकें।
5: क्योंकि जब महासागर सुरक्षित होंगे तभी हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ पृथ्वी का अनुभव कर सकेंगी।
6: तो आइए, विश्व महासागर दिवस के दिन हम सभी प्रकृति के इस अनमोल उपहार को संरक्षण का संकल्प लें।
5: और इसी मैसेज के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं आज की एक खास पेशकश। जी हाँ, जो है लव स्टोरी सेगमेंट का पहला पार्ट। आज की हमारी लव स्टोरी रहेगी उस मोड़ पर, और उस मोड़ पर स्टोरी का आज पहला एपिसोड आएगा।
7: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
8: एक
4: ऐसी मोहब्बत जो वक्त की गर्द में तप तो गई मगर मिट ना सकी। कहते हैं कि कुछ मुलाकातें मुकद्दर लिखता है। कुछ चेहरे हमारी जिंदगी में यूं दाखिल होते हैं जैसे किसी सूखी जमीन पर पहली बारिश उतर आए, और फिर वही शख्स हमारी दुनिया का सबसे हसीन हिस्सा बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जिसमें मोहब्बत है, जुदाई है, गलत फहमियाँ हैं, इंतजार है, और फिर एक ऐसा मिलन जो 20 साल बाद भी अपनी रूहानियत नहीं खोता। ये कहानी है आरिफ मिर्जा और माहिरा की। एक तरफ था आरिफ, एक बड़े जमींदार खानदान का इकलौता वारिस, जिसकी सुबह आलीशान हवेली में खुलती थी और जिसकी शामें शानो शौकत के बीच ढलती थी। दौलत, रुतबा, इज्जत, जो कुछ लोग उम्र भर की मेहनत में हासिल नहीं कर पाते, वो सब आरिफ को विरासत में मिला था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी वीरानी थी। ऐसा लगता था जैसे उसके पास सब कुछ है मगर फिर भी कुछ अधूरा है। और दूसरी तरफ थी माहिरा, बेहद सादा सी मगर खूबसूरत सी लड़की। उसकी खूबसूरती चेहरे में नहीं किरदार की थी। वो उन लोगों में से थी जिनके लिबास भले सादगी से भरे हों लेकिन जिनकी शख्सियत में नफासत और तहजीब की खुशबू बसती है। माहिरा की माँ सिलाई का काम करती थी। घर के हालात भी कुछ ज्यादा बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन माँ की एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और अपने मुकद्दर को खुद लिखेगी। इसलिए माहिरा स्कॉलरशिप के सहारे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी। हर रोज वो पुराने बैग और किताबों के साथ कॉलेज आती मगर उसके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं होती, क्योंकि उसके पास सपने थे और सपनों से बड़ी दौलत दुनिया में कोई भी नहीं होती। एक दिन बारिश हो रही थी, कॉलेज की लाइब्रेरी में भीड़ कम थी। माहिरा जल्दी जल्दी किताबें लेकर जा रही थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। उसकी सारी किताबें फर्श पर बिखर गईं। तभी किसी ने झुककर किताबें उठानी शुरू की। माहिरा ने नजर उठाई, सामने आरिफ खड़ा था। उनकी नजरें मिली और कभी कभी सिर्फ एक नजर पूरी जिंदगी की कहानी लिख देती है। ये आपकी किताबें? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया, माहिरा ने जवाब दिया। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए लेकिन शायद उनके दिल उसी लाइब्रेरी में कहीं ठहर गए थे। उस रात आरिफ बहुत देर तक माहिरा के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या था जो बार बार उसके ख्यालों में चली आई थी। शायद उसकी सादगी, शायद उसकी आंखों की मासूमियत, या शायद उसका वो अंदाज जिसमें कोई बनावट नहीं थी। उधर माहिरा भी उस अजनबी मुस्कान को भूल नहीं पा रही थी लेकिन उसने अपने दिल को समझा लिया था। हमारी दुनिया अलग है माहिरा, बहुत अलग। उसे कहां मालूम था कि मोहब्बत दुनिया नहीं देखती, सिर्फ दिल देखती है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि भरोसे, तकदीर और इंतजार की कहानी है। और दोस्तों, ये कहानी जारी रहेगी अगले पार्ट में, तो आगे की कहानी सुनने के लिए आपको सुनना होगा इश्क का बदलता मौसम, कहानी का पार्ट टू।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे एहसास कर लोटपोट,
2: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
6: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
6: जियो साथ जी, शादी मुबारक हो।
8: अरे शुक्रिया शुक्रिया मेरे पहलवान, चलो आओ खाने की टेबल पर चलो।
6: जी जी चलिए।
8: अरे मेरे शेरों, इस खाने को दुश्मन समझकर इसके ऊपर टूट पड़ो। अरे ये एक पहलवान क्या कर रहा है वहां पे? लड्डू जलेबी खा भी रहा है, दूसरा हाथ जेब में ठूस रहा है। अरे पहलवान ये क्या कर रहे हो तुम? एक हाथ से खा रहे हो और दूसरे हाथ से जेब में रख रहे हो?
6: वो उस्ताद जी, जितने मारने थे वो मार दिए, बाकियों को घर ले जाकर पीटूंगा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो चला है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट का, जो की है
6: गपशप अड्डा। तो आइए लेते हैं हमारे इस

0: हेलो 9457078288।
1: कौन बोल रहा है?
2: ये है गपशप अड्डा।
1: ये है गपशप अड्डा।
3: तो देखते हैं मदिया, आखिर हमारे पास पहली कॉल किसकी आई।
4: चलिए।
3: हेलो।
5: हेलो, नमस्कार।
3: नमस्कार, आपका नाम?
5: मेरा नाम राकेश है और मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश।
3: कैसे हैं आप?
5: ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है
4: जी। तो फिर राकेश जी, वहाँ हिमाचल में तो ऐसा ही मौसम रहता होगा हर टाइम।
5: जी, हर टाइम ऐसा रहता है और गर्मी भी बढ़ती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 25-30 डिग्री तक जो है तापमान रहता है।
4: जी,
5: जब तो बारिश आ जाती है तब तो बिल्कुल ठंडा रह जाता है।
4: जी, सुहाना एकदम, हरियाली वाला।
5: बिल्कुल हरियाली वाला, जैसे आपकी तरह 40-45 डिग्री से ऊपर तापमान चल जाता है जुलाई और क्या बोलते जून तक। तो हमारा जब बरसात आएंगी तो फिर हमारा ये तापमान घट जाएगा, तो फिर तभी तो हमारे जो पर्यटक जो है हिमाचल की ओर आते घूमने दूर दूर से।
4: जी, काफी हमने रील में भी देखा था और न्यूज पर भी कि काफी लोग जा रहे हैं हिमाचल घूमने, तो काफी ट्रैफिक वगैरह भी जाम हो रहा है वहाँ पर।
5: जी,
4: तो फिर आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
5: गाना तो सुनेंगे, सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आज की सेलिब्रेशन की हार्दिक शुभकामना की। आज का दिन जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि आज जो है आकाशवाणी जो है 90 वर्ष पूरा कर चुका है, तो इसके हाथ से शुभकामनाएं। तो आकाशवाणी के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि हर आकाशवाणी के माध्यम से हम जुड़ते हैं और जुड़ना चाहिए, लेकिन आज के युग में अगर भले ही सोशल मीडिया है, मैं ये सोचता हूँ हर युवा को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भले ही आपको सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक अगर चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आकाशवाणी का साथ ना छोड़े, क्योंकि आकाशवाणी से हमें बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ जो है हमें जो है मिलता रहेगा आकाशवाणी।
4: जी, 90 वर्ष की बधाई आपको भी हो, और आपके ये बात सुनकर मुझे लगता है सारे ही आकाशवाणी के लोगों को काफी अच्छा लगा होगा।
5: जी,
4: तो आप अपना गाना बता दीजिए।
5: तो गाना के लाइन पे आ जाता हूँ, तो दिल मुझे गाना सुना है, मुझे नींद ना आए।
3: बिल्कुल, हम अभी आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।
5: जी, बिल्कुल सुना दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी, बिल्कुल धन्यवाद।

0: हेलो,
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: जी। प्रेम जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मैं
0: जी प्रेम जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आकाशन नजीब आवाज से मेरा फोन लग गया तो मैं और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
0: ये तो अच्छी बात है। चलिए, तो आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चल रही है, बादल भी छाए हैं, और परसों यहाँ पे बारिश भी हुई थी।
0: अच्छी बात है। चलिए, तो थोड़ी राहत की बात है कि मतलब बारिश हुई वहां
1: हाँ
0: पर।
1: जी, थोड़ी राहत मिली है गर्मी से, लेकिन जैसे कि बादल छाए हैं ना, तो थोड़ी सी वापस से उमस बढ़ गई है, गर्मी हुई हो गई है।
0: जी, थोड़ा उमस
1: जी
0: वाला हो गया
1: मैं बताऊं
0: मौसम।
1: आपको, जैसे कि अभी आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं
0: जी
1: आज,
0: जी
1: तो आकाशवाणी के लिए मैं बताना चाहूंगा, 2005 से भी मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी मैं 2026 में भी मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनने लगा हूँ,
0: ये
1: जिससे
0: बहुत
1: मुझे
0: अच्छी
1: काफी
0: बात है।
1: फायदा हुआ है, हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिले और अच्छे अच्छे दोस्त बने हमारे आकाशवाणी के जरिए।
0: जी बिल्कुल।
1: जी
0: तो फिर से टुडे आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
1: जी फिल्म का नाम है क्रिश, और गाने
0: जी,
1: के बोले कोई तुमसा नहीं। जी
0: तो हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत आपकी फरमाइश पर।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।

दोस्तों, अब हम आपको सुनवाते हैं आज का एक स्पेशल सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल, जिसमें आज हम बातचीत करेंगे वाईफाई विषय पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के क्रैश कोर्स पैसा वसूल में हम जानेंगे कि आखिर वाईफाई काम करता कैसे है। हम रोज मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी को वाईफाई से जोड़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बिना किसी तार के इंटरनेट हमारे डिवाइस तक आखिर पहुंचता कैसे है। दरअसल वाईफाई एक वायरलेस टेक्निक है जो रेडियो सिग्नल्स दरअसल वाईफाई एक वायरलेस टेक्निक है जो रेडियो वेव्स की मदद से डेटा भेजती है और डेटा को प्राप्त करती है। ये वही रेडियो वेव्स है जिनका इस्तेमाल रेडियो, टीवी और मोबाइल नेटवर्क भी करते हैं, बस उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो दोस्तों, आप समझते हैं वाईफाई का प्रोसीजर। सबसे पहले आपके घर में लगा राउटर इंटरनेट सेवा यानी ISP से इंटरनेट प्राप्त करता है। ये केबल या फाइबर ऑप्टिक लाइन के जरिए राउटर तक पहुंचाता है। इसके बाद राउटर इन इंटरनेट डेटा को रेडियो सिग्नल्स में बदल देता है। जब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में वाईफाई ऑन करते हैं तो आपका डिवाइस आसपास के मौजूद वाईफाई नेटवर्क खोजता है। सही पासवर्ड डालने के बाद डिवाइस और राउटर के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन बन जाता है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका मोबाइल राउटर को एक सिग्नल भेजता है। राउटर उस सिग्नल को इंटरनेट तक पहुंचाता है और इंटरनेट से मिली जानकारी वापस आपके डिवाइस तक भेज देता है। दोस्तों, ये पूरा काम कुछ मिलीसेकंड्स में हो जाता है, इसलिए हमें सब कुछ तुरंत होता हुआ दिखाई देता है। आपने शायद देखा होगा कि राउटर से दूर जाने पर इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो सिग्नल्स दूरी बढ़ने और दीवारों जैसी बाधाओं के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। यही वजह है कि राउटर की सही जगह चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मोस्टली वाईफाई 2.4 GHz और 5 GHz बैंड पर काम करते हैं। 2.4 GHz की रेंज ज्यादा होती है लेकिन उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, जबकि 5 GHz की स्पीड ज्यादा होती है लेकिन उनकी रेंज कम होती है। दोस्तों, अगर शॉर्ट में आपको बताया जाए तो वाईफाई एक ऐसी टेक्निक है जो राउटर और आपके डिवाइस के बीच रेडियो वेव्स के जरिए डेटा का आदान प्रदान करती है और हमें बिना तार के इंटरनेट की सुविधा देती है। इस इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आज का क्रैश कोर्स पैसा वसूल करते हैं यही समाप्त। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिया, देखना आखिर अगली कॉल किसकी आ रही है हमारे पास।
2: चलो चलो।
1: हेलो।
3: नमस्कार,
2: नमस्कार जी, किससे बात हो रही है हमारी?
3: मैं कश्मीर सोना मरग से लतीफ अहमद रीना।
1: कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और क्या कर रहे हैं आप आजकल?
3: बस मैं अभी तो घर में, अभी मैंने चाय पी ली, नमकीन चाय।
1: जी, और प्रोग्राम सुन लिया यू पानी?
3: हाँ, मैं सुनता हूँ प्रोग्राम, बहुत पसंद भी मुझे आता है ये प्रोग्राम रेडियो नजीबाबाद।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक लिसनर हैं जो कि हमें इतनी दूर से सुन रहे हैं,
2: कश्मीर से।
1: और आपके यहाँ मौसम कैसा है?
3: मौसम तो सुहाना है
1: जी।
2: मतलब कश्मीर में तो सुहाना ही रहता है, अगर कश्मीर में सुहाना नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा।
3: वो तो ये तो जन्नत ही जन्नत है, जन्नत बेनजीर है
1: जी। ये बात तो है। और आप आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: खुदा गवाह फिल्म का तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।
1: बिल्कुल, तो हम अभी आपकी फरमाइश पर सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।
3: धन्यवाद मैडम।
1: धन्यवाद।

0: तो मदिहा, देखते हैं कि अगले कॉलर कौन है हमारे पास। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, आपका नाम?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, कानपुर से। मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं
1: सर,
0: आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष हो चुके हैं। 8 के आज ही दिन 8 तारीख है। 8 दिन के पूरे 90 वर्ष हो चुके हैं। तो 90 वर्ष के 1.5 सप्ताह बना देना चाहता हूँ पूरी आकाशवाणी टीम को। और आपके इधर मौसम कैसा है? मेरे तो मौसम बहुत गर्म पड़ता है, और गर्मी के मौसम में जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज है,
0: जी
1: और ये
0: जी
1: जूता सेवन करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा पानी पीना चाहिए, पक्षियों
0: सही
1: को
0: बात
1: पानी
0: है
1: लग,
0: आपकी।
1: और पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। बारिश भी नहीं हुई तो बारिश भी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा।
0: जी
1: तो आपका नजीबाबाद सुनते रहो, एक बारी गुनगुनाते रहो, बहुत बढ़िया लगता है नजीबाबाद के अंदर।
0: बहुत अच्छी बात है। और अब आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे ये भी बता दीजिए हमें।
1: आज मुझे गीत सुना सुना दीजिए, दिलवाले फिल्म का जीता था जिसके लिए, ये गाना सुनना चाहता हूँ। और जीते तमाम सुनने वाले सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ सर जी, मैम जी।
0: जी, हम अभी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हेलो,
2: गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, आपका नाम?
2: जी, मैं काट मोहम्मद कुर्बान बोल रहा हूँ।
1: कैसे हैं आप?
2: जी बहुत बढ़िया मैम, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आप अपना गीत बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: जी मैम, गीत बजाने से पहले दो तीन दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल लीजिएगा।
2: जी मेरे दोस्त हैं विष्णु अग्रवाल जी, दिव्यांशु यादव, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद फरमान, मुकेश कश्यप, महबूब दुकानदार, मोहम्मद फरमान।
1: आप गीत बताइए।
2: जी प्यार दिखता नहीं मूवी है, गाने का बोल है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है।
1: बिल्कुल, हम अभी आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे गीत।
2: और मैम आपके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी कॉल ली लास्ट में जबकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी।
1: जी जी थैंक यू।
2: जी मैम शुक्रिया।

0: दोस्तों, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने पूछा था आपसे एक सवाल। हमारा आपसे सवाल था, बॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, जिसका जवाब है अलमरा।
1: तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे किन किन लिसनर्स ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है। तो हमारे लिसनर्स के नाम हैं दुगाराम साहू, धीरज भाई रबारी, भारत चंडेल, सूरज गगनेजा, नदीम बाकी, खिलाश फुलमानी, राम शरण, गुरमीत सिंह मीता, शाहरुख नूर अंसारी, दीपेश वर्मा, रवि कुमार, राहुल, संजय ढींगिया, शकील अहमद इदरीसी, परितोष कुमार, आसिफ चौधरी, निसार सलमानी, बलवंत सिंह कुमार, राजेश वर्मा, दिग्दर्शन गौर, मोहम्मद अफजल ताज, फागुराम यादव, राधेश्याम पांडे, जगदीश धाकर, सुनीता राणा, गगनेश येले, भुवन प्रकाश, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, विठल सुरोशे, महेंद्र मोदी, विजय सुरलकर, राजकुमार दूदी, अरविंद कुमार, रामकुमार रेवार, मोहम्मद यासीन अंजन और बी आई धाकर।
0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम युवानी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। इसी के साथ दीजिए अनुमति मैं रुमान और मेरी साथी मदीहा को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर शाम के 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: दर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर

0: किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को आपके भैया प्रमोद सिंह की राम राम। भैया कैसे हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक, राजी खुशी? देखो भाई, आजकल गर्मी बहुत हो रही है और इस गर्मी के मौसम में हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में भी काम कर रहे हैं और भैया घर गृहस्थी के बहुत सारे और दूसरे काम भी हैं जो हमें करने पड़े हैं। तो देखो, काम तो सारे ही करने, पर भाई जहाँ तक खेती बाड़ी की बात है तो इस टाइम पर तो हमारे सब किसान भाई बहन अपने खेतों में धान की फसल को बोने की तैयारी कर रहे होंगे। धान की नर्सरी बो रही होगी, देखभाल चल रही होगी, खेतों की तैयारी में लगे होंगे, ये काम कर रहे हैं ना। और भाई हमारे जो किसान भाई गन्ने की फसल लगा हुए हैं,

भैया वो इस टाइम गन्ने की फसल की देखभाल में लगे हुए होंगे, गन्ने की जो जड़ है, जो गोल है, उस पर मिट्टी चढ़ा रहे होंगे, सिंचाई कर रहे होंगे, ये सारे काम हमारे किसान भाई इस टाइम कर रहे हैं। तो भाई देखो, काम तो सारे करने बहुत ज़रूरी हैं, और अगर इन्हीं सब कामों को हम समय पर पूरा करें और सावधानी के साथ में करें, तो भैया फिर तो यूं समझो कि सब काम करने का आनंद कुछ और ही आ जाए। भाई सबसे पहली बात तो यो है कि जो हम बता रहे हैं, बता क्या रहे हैं भैया, देखो महसूस भी कर ही रहे हैं कि गर्मी बहुत हो रही, तो इस गर्मी के मौसम में अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई देखो, पहली बात तो यो है कि जब हम खेतों पर जाएं तो सुबह शाम खेतों पर जाएं, काम करें और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। इस मौसम में भाई पेय पदार्थ हमें ज़्यादा प्रयोग करने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और भाई घर से बाहर निकलें तब भी हमें पीने का पानी अपने साथ में रखना चाहिए। और भैया देखो, इस मौसम में बासी खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि संक्रामक रोग इस मौसम में ज़्यादा फैले हैं, और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो देखो इन सब बीमारियों से और परेशानियों से हम बच सके हैं। भाई मौसम कोई भी हो, हमें सावधानी बरतनी है, और किसी भी मौसम में खेती बाड़ी भी हमें करनी है, चाहे भैया बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, या गर्मी का मौसम हो। अब जैसे इस टाइम पे किसान भाई धान की फसल को बोने की तैयारी में लगे हुए हैं, और भैया वो गन्ने की फसल की देखभाल कर रहे हैं, किसान भाई खेतों से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अपने खेतों में कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, फफूंदी नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि भैया खेत हमारे ठीक ठाक रहें, कीट ना लगे, और हमारी जो फसलें हैं वो अच्छा उत्पादन हमें देती रहें। भाई देखो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, पर भैया इन कीटनाशकों का या फफूंदी नाशकों का इस्तेमाल करते समय हमें बहुत सारी सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे भैया कि ऐसी कौन सी बात है जो भैया हम नहीं जानते। भैया देखो, किसान भाई बहुत समझदार हैं, सारी बातें जाने हैं, लेकिन जो रसायन का इस्तेमाल हम अपने खेतों में कर रहे हैं, अगर हमने इसमें सावधानी ना बरती तो भैया फायदे की जगह नुकसान भी हो सका है। अब देखिए भाई, जो हम बाजार से ये कीटनाशक लेकर आ रहे हैं, फफूंदी नाशक लेकर आ रहे हैं, इसके डिब्बे पे या बोतल पे जो निर्देश लिखे हैं, उन निर्देशों के अनुसार ही हमें जो है इनका प्रयोग करना चाहिए। जितनी मात्रा बताई गई है, जितने लीटर पानी में मिला के इनका छिड़काव करना है, उसी हिसाब से हमें करना चाहिए। ज़्यादा अगर हम कर देंगे तो भाई उससे हमारे स्वास्थ्य पे भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, फसल पे भी विपरीत प्रभाव पड़ सका है, और भैया जो हमारा पर्यावरण है वो भी इससे प्रभावित हो सके है। तो सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, और भाई सावधानी हमें यह भी बरतनी है कि जब इन रसायनों का हमें इस्तेमाल करना है, फसलों में छिड़कना है, तो उस समय भाई हमारे मुंह पे मास्क होना चाहिए, आंखों पे चश्मा पहन कर रखें, और हम अपने शरीर को अगर ढक कर रखेंगे, मतलब ऐसे कपड़े पहनेंगे जिससे कि हमारा शरीर है वो इस दवा की चपेट में ना आवे, इसके संपर्क में ना आवे, हाथों पे दस्ताने पहन के जरूर रखें। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो भैया हमारे खेत भी बढ़िया रहेंगे, फसलों से उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, पर्यावरण भी बढ़िया रहेगा, पर्यावरण बढ़िया रहेगा तो भैया फिर यूं समझो कि हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी फसलें भी ठीक ठाक रहेंगी। तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। भाई देखो, बातें तो हम कर ही रहे हैं, आज के कार्यक्रम में हम और भी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, आपको जानकारी भी दिलवाएंगे। आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपका मनोरंजन भी कराया जाएगा, पर भैया पहले सुनो ले हैं ये कुछ संदेश।

0: विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
3: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
4: देश की धरती को ना उगले, उगले हीरे होती।
2: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
3: खुशहाली का नया प्रयोग।
5: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
3: तो देखो भैया, ये संदेश हमने सुने और भाई हम बात कर रहे थे कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो भैया देखो, जानकारी तो रोजाना महत्वपूर्ण ही रहे है, पर आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए भैया, उसका विषय है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस बारे में आज हम आपको जानकारी दिलवाएंगे, बातचीत आपसे करते रहेंगे। पर भाई बातचीत के साथ साथ अगर गीत संगीत भी होता रहे, मनोरंजन भी होता रहेगा, तो भैया ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, सही बात है ना, अब आपका मन भी कर रहा ना। तो ठीक है, आओ भाई करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं योरागनी।

0: दुनिया में दहेज दोस्तों, भाई दहेज प्रथा की रागनी आपने सुनी नरेंद्र सिंह की आवाज में। और देखो भाई, रागनी सुनकर मनोरंजन तो जरूर होया, पर एक सीख भी हमें जरूर मिली कि भाई हम अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि दहेज प्रथा को भैया वो बहुत कुछ समझते हैं। भाई दहेज ना तो हमें लेना चाहिए, ना हमें दहेज देना चाहिए। दहेज के रूप में हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे संस्कार उनको देने चाहिए। तब देखिए भाई, हम देखेंगे कि देखिए फिर किस तरीके से हमारी जो बहू बेटियां हैं वो ठीक रहेंगी, अच्छे संस्कार उनको दिए जाएंगे, तो भाई वो अपनी घर गृहस्थी को बढ़िया तरीके से चला सकेंगी। और भाई देखो, यो बात भी हमें माननी चाहिए कि आज अगर हम दहेज ले रहे हैं तो कल को जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो भैया हमसे भी तो कोई दहेज मांगेगा। इसलिए दहेज ना तो लें और ना ही दें। बस दहेज में अगर देना है तो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, जिससे देश का भी भला हो और घर परिवार का भी भला हो। तो हमारे सब भाई बहन बड़े समझदार हैं भाई, देखो वो अपनी घर गृहस्थी को बहुत बढ़िया ढंग से चला ही रहे हैं, और भाई साथ में खेती बाड़ी भी वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे कि इस समय भाई हमारे सब भाई बहन अपने धान के खेतों को तैयार कर रहे हैं, खेतों में जो फसलें खड़ी हैं उसकी सही तरीके से देखभाल कर रहे हैं। लेकिन भाई जो खेत इस समय हम धान की फसल को बोने के लिए तैयार कर रहे हैं, उस खेत की अगर हम मिट्टी की जांच करा लें तो हमें यूँ पता चल जाएगा कि हमारे खेतों में किस पोषक तत्व की कमी है, कौन सा पोषक तत्व हमें उसमें कितनी मात्रा में डालना है। और भैया यो तभी होगा जब हम थोड़े से जागरूक हो जाएंगे, अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा लेंगे, क्योंकि भाई खाली खेतों की ही मिट्टी की जांच हम कराते हैं और ये अच्छा समय इस टाइम चल रहा है। और भैया हमारी जो सरकार है वो भी इस ओर बहुत ध्यान दे रही है, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, और ऐसी ही एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो भाई इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का किस प्रकार से हम लाभ उठा सके हैं, ये योजना क्या है, इस संबंध में हमने टेलीफोन पर बातचीत की कार्यालय उपनिदेशक कृषि बिजनौर में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत कुलदीप सिंह से। तो भैया उनसे हमारी क्या बातचीत हुई और ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, आओ आप भी सुनो और जानो भैया इस योजना के बारे में।
1: किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं मृदा स्वास्थ्य योजना पर जानकारी देने के लिए कार्यालय उप कृषि निदेशक बिजनौर में एसएमएस के पद पर कार्यरत श्री कुलदीप सिंह जी। तो कुलदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: सर, आज हम आपसे जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, देखिए वैसे तो हमारी सरकार की किसानों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई
2: जी
1: हुई हैं,
2: जी जी
1: तो आज हम जो जानकारी ले रहे हैं उसका विषय है मृदा स्वास्थ्य योजना। कुलदीप जी,
2: मृदा
1: जानना
2: स्वास्थ्य,
1: चाहेंगे कि ये मृदा स्वास्थ्य योजना क्या है?
2: मृदा स्वास्थ्य योजना पूरी तरह से मृदा के स्वास्थ्य को लेकर स्थिति को जानने के लिए चलाई जा रही योजना है, जिसमें मिट्टी के नमूनों को प्रयोगशाला में जांच करके पोषक तत्वों की स्थिति को जानकारी ली जाती है,
1: जी
2: ताकि किसान मिट्टी की, जैसे आदमी अपनी जांच कराते हैं खून की और उसमें पता करते हैं किन किन पोषक तत्वों की कमी है, ठीक उसी प्रकार मिट्टी की जांच कराकर हम यह पता लगा लेते हैं कि भूमि में, खेत में इन इन पोषक तत्वों की कमी है। इन पोषक तत्वों को मृदा में खाद उर्वरक रूप में डालकर अपनी अच्छी फसल ले सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे सभी किसान भाइयों को अपनी जो खेतों की मिट्टी है, मृदा है, उसकी जांच जरूर करानी चाहिए। इसके लिए कोई विशेष प्रावधान है कि कोई विशेष कैटेगरी का किसान या जिसके पास में कुछ जमीन निर्धारित की गई है, इतनी जमीन होनी चाहिए, वो ही करा सकता है, कोई भी करा सकता है?
2: इसके लिए कोई भी किसान प्रयोगशाला में नमूना ले जाकर मिट्टी की जांच करा सकता है। इसके लिए शुल्क का प्रावधान है,
1: जी
2: 102 रुपए प्रति नमूना, मिट्टी के एक नमूने के लिए 102 रुपए प्रयोगशाला में जमा कराकर, कृषि विभाग की प्रयोगशाला है बिजनौर मुख्यालय पे, और तहसील स्तर पे भी अपना नमूना कृषि विभाग के कार्यालयों में जमा करा दें और वो अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये जो मृदा स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, ये
2: जी
1: हमारे किसान भाइयों को कब करानी चाहिए और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: इसमें मेन चीज ये है कि कोई भी फसल की बुआई से पहले
1: जी
2: जब खेत खाली होता है तब हम मिट्टी का नमूना लेते हैं। खड़ी हुई फसल के बीच से मिट्टी का नमूना नहीं लिया जाना चाहिए। हमारा खेत खाली है, हम उसमें नमूना लेने में विशेष तरह ये ध्यान रखें कि नमूना जो हम ले रहे हैं वो पूरी खेत की मिट्टी का प्रतिनिधित्व करता हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे किसान भाई कि अगर कोई अनाज का ढेर है तो उसमें से हम अगर एक मुट्ठी या दो मुट्ठी अनाज उठा लें तो उसमें सभी प्रकार के दाने आ जाएं जैसे कि हमारे उस ढेर में।
1: जी
2: इसमें थोड़ी सी सावधानी किसान भाई ये रखें कि बात आती है कितनी गहराई से मिट्टी का नमूना लिया जाए। तो मिट्टी का मोटे तौर पर हम ये साधारणतः ये मान लेते हैं कि जहां तक हमारी फसलों की जड़ें जाती हैं, हम जुताई को करते हैं,
1: हाँ
2: उतनी गहराई से एक बी के आकार का गड्ढा बनाते हैं फावड़े से,
1: जी
2: वो मिट्टी वहां से ली जाती है और इस तरह से खेत में चार पांच जगह से मिट्टी ले लेते हैं। उस मिट्टी को अच्छे से मिश्रण करके उसमें से मात्र आधा किलो मिट्टी का सैंपल बना लेते हैं।
1: अच्छा
2: एक पैकेट में सैंपल लेकर उसको प्रयोगशाला में अपना नाम और गांव का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब जानकारी कागज पर लिखकर और उस पैकेट को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जमा करा
1: अच्छा अच्छा ये जो हमें मिट्टी का

0: नमूना लेना है। आपने बताया कि हमें वी आकार का एक गड्ढा खोदना है और वहां से
1: जी
0: हमें मिट्टी लेनी है, तो मिट्टी लेने के लिए उस गड्ढे से कितनी मोटी परत हमें उठानी है और जो आधा किलो हमें बनाना है तो वो किस प्रकार से बनाना है?
1: ये है कि गड्ढे में हम वी के आकार का, अंग्रेजी का वी के आकार का हमने गड्ढा बना लिया है।
0: जी,
1: खुरपी की सहायता से वी के आकार की शेप बन के आई है, उस आकृति में से बारीक से परत खुरच खुरच के मिट्टी निकाल लेते हैं
0: अच्छा
1: और वो खेत के चार पांच जगह से रैंडमाइज तरीके से अलग अलग जगह से वो मिट्टी निकाल लेते हैं। उसको अच्छे से मिश्रण करके उसमें से आधा किलो मिट्टी हम निकालते हैं,
0: अच्छा
1: लगभग आधा किलो मिट्टी।
0: इस तरीके से हमें नमूना तैयार करना है।
1: हाँ, और
0: अच्छा
1: नमूनों को हम प्रयोगशाला में जमा करा दें। ये चीज का और ध्यान रखें कि मिट्टी के नमूना जब लें तो खेत में ज्यादा नमी की स्थिति में ना हो, और नमूना उस स्थान से कदापि ना लिया जाए जहाँ पे किनारों पे बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं,
0: जी
1: वहां की छाया जा रही है खेत में, उस स्थान से नमूना ना लिया जाए। खेत के बीच से कॉर्नर
0: जी
1: से वहां से नमूना ले सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब कहने का ये है कि जहाँ पेड़ है उसके नीचे से नमूना नहीं लेना है, नमी ज्यादा है वहां से नमूना नहीं लेना है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी सिंचाई की नालियां बनी हुई हैं वहां से या
1: वहां से भी
0: उसमें
1: नहीं लेना है।
0: जी अपने जो देशी खाद तैयार करते हैं उसके ढेर लगा देते हैं, तो क्या वहां से
1: हाँ,
0: नमूना ले
1: वहां
0: सकते
1: से
0: हैं?
1: नहीं, नहीं वहां से भी नहीं लेना। सही आपने प्रश्न उठाया, वहां
0: जी
1: से भी नमूना नहीं लेना है। और इतना और ध्यान रखें, जो रासायनिक उर्वरकों के खाली बोरे होते हैं उस पे हम मिट्टी इकट्ठा करते हैं, कहीं तो इकट्ठा करेंगे आप मिट्टी का नमूना तैयार करने के लिए, तो
0: जी
1: रासायनिक के जो बोरे हैं उन पे भी कृपा करके उस मिट्टी को ना रखें, ताकि रासायनिक बोरे जो है उनका प्रयोग ना करें इस्तेमाल
0: जी
1: में। वहां कोई साधारण कपड़ा या कोई पॉली शीट उस चीज का इस्तेमाल कर लें नमूने को, मिट्टी को मिलाने में अच्छे से।
0: जी मतलब जो वो नमूना हमें भरना है वो थैली भी साफ सुथरी होनी चाहिए और उसके ऊपर हमारा नाम, खेत की पहचान वगैरह होनी चाहिए।
1: जी, गांव का नाम सब जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद मृदा लेबोरेटरी वाले, प्रयोगशाला वाले उस नमूने को चेक करेंगे। चेक करने के बाद किसान के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में
0: जी
1: उस नमूने खेत की मिट्टी की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जीवांश कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए, वो उस कार्ड में दर्ज होगा। किन किन किन पोषक तत्वों की कमी है, कितना उसका रिजल्ट है और क्या उसका स्केल है, कितनी मात्रा उसमें होनी चाहिए, कितनी कम ज्यादा नमूने की, वो किसान भाई उसमें पढ़ के आसानी से अपनी खेत की जानकारी ले सकते हैं कि हमारी मिट्टी की क्या स्थिति है। और साथ साथ कार्ड में नीचे ये भी दिया जाता है कि आगामी फसल में इतनी मात्रा में ये खादों का प्रयोग करें।
0: मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जाकर के हमें इसमें कौन सी फसल बोनी है ये भी बताना पड़ेगा क्या?
1: वो जनरली जो इस क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, जनपद में या दूसरे जनपदों में अगर बता दें, अगर कोई दूर के किसान है तो बता दें तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज वो संस्तुति जो फसलें यहाँ पे चलती हैं खरीफ सीजन की या रबी सीजन की, वो सारी फसलों की संस्तुतियां देते हैं।
0: अच्छा, देखिए कुलदीप जी, ये जो हम मृदा परीक्षण करा रहे हैं, देखिए पोषक
1: जी
0: तत्व तो कहा जाता है दो तरीके के होते हैं, मुख्य पोषक तत्व तो और सूक्ष्म पोषक तत्व, क्या ये
1: बिल्कुल
0: दोनों
1: बिल्कुल
0: पोषक
1: बिल्कुल सही।
0: तत्वों का ये नमूना तैयार करके हो जांच दोनों पोषक तत्वों
1: जी जी
0: की
1: एक
0: रहती है?
1: एक ही नमूने से हो जाती है।
0: अच्छा, और दोनों का शुल्क वही है 102 रुपए?
1: दोनों का शुल्क 102 रुपया है।
0: हमारे किसान भाई कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमने नमूना लिया और प्रयोगशाला में भेजा लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट नहीं मिली, तो इसके लिए कहाँ संपर्क करना चाहिए?
1: नहीं, ऐसी स्थिति वैसे होनी नहीं चाहिए, होती नहीं है।
0: जी
1: अगर कोई कृषक भाई को इस तरह की समस्या है तो वो कृषि विभाग के कार्यालय में, तहसील स्तर पर भी कृषि विभाग के कार्यालय हैं, जनपद मुख्यालय पर भी कार्यालय हैं,
0: जी
1: किसान भाई आराम से आ सकता है और अपनी बात को रख सकता है।
0: और ये जांच कितने दिनों में हो जाती है? अच्छा
1: जांच लगभग हफ्ता 10 दिन में जांच करके प्रयोगशाला दे दे,
0: अच्छा
1: वो तभी आप किसान जब आते हैं मृदा नमूना लेने, वो तभी उनको बता दिया जाता है कि लगभग इतने दिनों में आपका नमूना रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा,
0: तो ये तो बहुत
1: कि किसान को
0: अच्छी
1: परेशान ना होना पड़े उसको।
0: ये बहुत अच्छी बात है कुलदीप जी, और हमारे किसान भाइयों को ये जांच जरूर करानी चाहिए जिससे कि हमारे किसान भाइयों की लागत भी कम आएगी और
1: बहुत
0: उत्पादन भी अच्छा
1: ये
0: मिलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी है। किसानों को कम से कम साल भर में नहीं तो 2 साल में अपनी मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए और कार्ड की संस्तुति के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करके अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं।
0: हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कुलदीप जी, आजकल फार्मर रजिस्ट्री के बारे में ज्यादा सुना जा रहा है और ये सुनने में आ रहा है कि उसी किसान भाई को लाभ मिलेगा जिसने फार्मर रजिस्ट्री करा रखी होगी, तो क्या इसके लिए भी फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है?
1: अभी तो सामान्य रूप से चल रहा है, पर भविष्य में जाके हो सकता है कि इसके लिए भी जरूरी कर दें। बाकी सब चीजों के लिए धीरे धीरे जरूरी हो रहा है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए फार्म रजिस्ट्री जरूरी है, अन्य उर्वरकों के लिए जरूरी करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सरकार की मंशा है कि भविष्य में हो सकता है नमूना टेस्टिंग के लिए भी इसकी अनिवार्यता कर दी जाए। फिलहाल इस तरह की अनिवार्यता इसके लिए नहीं है।
0: जी, तो कोई और

0: इस बात इस मृदा स्वास्थ्य योजना के बारे में आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे?
1: मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि वो अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। ये बहुत जरूरी है, इससे हमारे खेत में क्या खेत की स्थिति है, खेत में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, कितनी मात्रा में हम अपना खाद डालें। ऐसा तो नहीं कि हमारे खेत में उस तत्व की कमी ना हो और हम व्यर्थ ही उर्वरक के रूप में पैसे को खर्च कर रहे हैं। इसलिए सही जानकारी के हिसाब से ही अपनी मिट्टी में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें और किसान भाई अपनी बेहतर फसल को ले।
0: और ये तभी संभव है जब हम अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराएंगे तो हम अपने खेतों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं,
1: ले पाएंगे। बिल्कुल सही।
0: जी जी जी तो आज आपने हमारे साथ में जुड़कर किसान भाइयों को ये बहुत अच्छी जानकारी मृदा स्वास्थ्य के बारे में दी है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ये बहुत अच्छी योजना है, इस योजना का लाभ किसान भाई जरूर उठाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसान भाइयों इस संबंध में अभी आपने कुलदीप सिंह विषय वस्तु विशेषज्ञ बिजनौर से की गई यो बातचीत सुनी। और भाई अब आपने ये जान लिया कि ये योजना क्या है और किस प्रकार से हम अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा सके हैं। देखो मिट्टी की जांच करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हमें जो है अपने खेत में किस पोषक तत्व को डालना है, किसको नहीं डालना है, खेत हमारा किस प्रकार का है, मिट्टी वहाँ की कैसी है, ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है। साथ ही भैया इसमें हमें अगर हम ये बता दें कि भाई हमें इसमें कौन सी फसल बोनी है, पहले कौन सी फसल बोई गई है, तो इससे और अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम जागरूक रहें, एक बढ़िया सा नमूना अपने खेत की मिट्टी का तैयार करके उसको मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें और वहाँ हम उसके लिए जो बताते हैं कि एक हफ्ता लगेगा या 10 दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे उसके लिए जानकारी लेते रहें। और जब हमें वहाँ से एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल जाएगा तो उसके हिसाब से जो है भैया हम अपने खेतों में काम करके अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगे, फसलों का उत्पादन भी बढ़ावेंगे। तो ये बहुत बढ़िया योजना है और भाई इसमें शुल्क भी बताया गया है, प्रति एक नमूने का 102 रुपए इसमें शुल्क लगता है। तो इस योजना का लाभ हमारे किसान भाई जरूर उठावेंगे। और भाई देखो लाभ उठाने की जब बात आई है तो लाभ अभी हमें भी उठाना है। एक लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको सुना रहे हैं ये कुछ संदेश।
3: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
4: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
3: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
4: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
3: साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम
2: बासमती

तो भैया ये संदेश हमने सुन लिए, और अब बताओ भैया क्या इरादा? मनोरंजन करना है ना? बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई आओ करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं यो हरियाणवी लोकगीत।

सब हुई पड़ोसन त्यार। भाई यो हरियाणवी लोकगीत आपने सुना सविता साथी और ओम राही की आवाज में। उम्मीद है भाई यो लोकगीत आपको अच्छा लगा होगा। और भाई अब आपको मौसम के संबंध में जानकारी दे देते हैं। ये जानकारी हमारे पास में आई है भारत मौसम विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। भाई देखो 10 जून तक के मौसम के बारे में पूर्वानुमान है कि आम तौर पर मौसम शुष्क रहेगा और किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि मौसम को देखते हुए इस समय किसान भाई धान की सीधी बुआई मतलब DSR को प्राथमिकता दें, ये अच्छा रहेगा। और भाई ये भी बताया गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा इस साल मानसून में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसलिए जो किसान भाई वर्षा आधारित खेती करते हैं वो धान के स्थान पर अगर श्री अन्न मतलब मोटे अनाज मक्का उड़द मूंग तिल आदि फसलों की बुआई करेंगे तो उनसे अच्छा उत्पादन वो ले सकते हैं। तो किसान भाई मौसम की जानकारी आपको मिल ही गई है। और भाई आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें चिट्ठी में लिखकर ज़रूर बताएं। और भाई चिट्ठी लिखने के लिए पता आप हमारा जानू ही हो। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 246763। इसके अलावा आप हमारे पास में व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर आप जानू ही हो। हमारा नंबर है 94-570-78-288। तो भाई आपके व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। और भैया देखो बातें करते करते कार्यक्रम का समय कब पूरा हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो बस आज के कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं। अपने भाई प्रमोद सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हुए हैं। ये समय है हिंदी वार्ताओं के कार्यक्रम विविधा का। इस कार्यक्रम में आज की वार्ता का विषय है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। वार्ताकार हैं सुभाष चंद्र वर्मा।
1: प्रसन्नता को आमतौर पर अपने संपूर्ण रूप से जीवन के व्यक्तिपरक आनंद के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह उस स्तर को दर्शाता है जिस स्तर तक कोई व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुकूल और आनंदमय मानता है। प्रसन्नता कोई मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचा जा सके, बल्कि यह एक यात्रा है जिसका अनुभव किया जाना चाहिए। यह गहन कथन व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों या मील के पत्थर के लिए प्रसन्नता को स्थगित करने के बजाय अपने दैनिक जीवन में खुशी और पूर्णता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे संसार में जहाँ सफलता की तलाश प्राय संतुष्टि की तलाश पर हावी हो जाती है, यह परिप्रेक्ष्य हमें अपनी प्राथमिकताओं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। महात्मा गांधी जी का कथन है कि प्रसन्नता तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं सब एक साथ से। प्रसन्नता का अर्थ केवल किसी विशेष उपलब्धि या स्थिति तक पहुंचने में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करता है। ये विचार हमें यह सिखाता है कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि यह एक जीवन शैली है। प्रसन्नता को प्राय बाह्य कारकों जैसे संपत्ति, सफलता और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। यह धारणा है कि जब हम इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेंगे तभी हमें प्रसन्नता मिलेगी, किंतु यह विचार वास्तविकता से बिल्कुल दूर है। प्रसन्नता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, न कि भौतिक उपलब्धियों पर। महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जैसे

महान विचारकों ने भी प्रसन्नता के आंतरिक स्रोत पर बल दिया है। उन्होंने ये सिखाया कि वास्तविक प्रसन्नता केवल तब मिल सकती है जब हम अपने भीतर शांति और संतोष प्राप्त करें। वर्तमान समय में जहां लोग धन, शक्ति और प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, प्रसन्नता की खोज और भी जटिल हो जाती है। लोग सोचते हैं कि यदि वे अधिक धन अर्जित करेंगे, अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, तो वह प्रसन्नता को प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि यह मानसिकता उन्हें निरंतर असंतोष और तनाव की स्थिति में धकेलती है। प्रसन्नता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक और सामाजिक स्तर पर ही महत्वपूर्ण है। एक समाज जहां लोग संतुलन और प्रसन्नता के साथ जीते हैं, वह समाज स्थिर तथा समृद्ध होता है। भारत जैसे विकासशील देश में भी जहां आर्थिक और सामाजिक समस्याएं मूल रूप से अभी भी विद्यमान हैं, प्रसन्नता की यह एक प्रमुख खोज महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जहां लोग आर्थिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे भी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रसन्नता के स्तर में बहुत पीछे है, जो यह दर्शाता है कि हमें प्रसन्नता को समझने और उसे अपने जीवन में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। मनोविज्ञान में प्रसन्नता को सकारात्मक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमन ने सकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रसन्नता जीवन के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों आनंद, संलग्नता और अर्थपूर्ण जीवन पर आधारित है। यदि हम इन तीनों स्तंभों पर ध्यान दें तो हमें प्रसन्नता की एक मार्ग के रूप में अपना सकते हैं और इसे केवल एक लक्ष्य के रूप में देखने से बच सकते हैं। भारत की प्राचीन परंपराएं, विशेष रूप से योग और ध्यान, प्रसन्नता को जीवन का अभिन्न अंग मानती है। योग के सिद्धांतों में बताया गया है कि वास्तविक प्रसन्नता तब मिलती है जब हमें अपने मन और शरीर के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं। योग एवं ध्यान मानसिक शांति और आंतरिक प्रसन्नता के साधन हैं। ये हमें बाह्य जगत के तनाव और चिंताओं से ऊपर उठने में सहायता करते हैं तथा हमें यह सिखाते हैं कि प्रसन्नता एक आंतरिक विषय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत ने संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता और मानसिक शांति भी इसी परंपरा को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय दर्शन में प्रसन्नता को मोक्ष अर्थात आत्मा की मुक्ति के रूप में देखा जाता है। यह जीवन चक्र से मुक्त होने की स्थिति है जहां व्यक्ति पूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति करता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि निष्काम कर्म योग द्वारा व्यक्ति वास्तविक प्रसन्नता और शांति प्राप्त कर सकता है। गीता के अनुसार जब व्यक्ति अपने कर्मों को फल की अपेक्षा के बिना करता है, तब उसे यह वास्तविक प्रसन्नता मिलती है। ये विचार आधुनिक समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। जहां लोग अपने कार्यों के परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं और इससे मानसिक तनाव का सामना करते हैं, नैतिक कर्तव्य ही व्यक्ति को वास्तविक प्रसन्नता की ओर ले जाता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में जहां अलग अलग संस्कृतियां, धर्म और जातियां एक साथ रहती हैं, सामाजिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। प्रसन्नता केवल तभी संभव है जब समाज में समानता, न्याय और आपसी प्रेम और सम्मान की भावना हो। भारत की सामाजिक नीतियां जैसे सबका साथ सबका विश्वास की दिशा में प्रयास कर रही है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और संसाधन प्राप्त हों, जिससे उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रसन्नता अक्षुण रहे। प्रसन्नता का संबंध शासन की नीति निर्माण से भी है। यदि सरकारें जनहितैषी नीतियां बनाती हैं और सामाजिक न्याय, समानता तथा अवसरों की उपलब्धता को प्राथमिकता देती हैं, तो समाज में प्रसन्नता का स्तर बढ़ता है। भूटान का उदाहरण यहाँ प्रासंगिक है, जहाँ ग्रास नेशनल हैप्पीनेस को सकल घरेलू उत्पाद से अधिक महत्व दिया जाता है। भूटान ने यह आदर्श प्रस्तुत किया है कि आर्थिक विकास केवल एक साधन है, न कि अंतिम लक्ष्य। सरकार यदि प्रसन्नता पर केंद्रित नीतियां बनाए तो इससे समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान हो सकता है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यह कथन हमें सिखाता है कि हमें प्रसन्नता को एक गंतव्य के रूप में देखने के बजाय उसे जीवन की एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। प्रसन्नता का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं है बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में है। व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसन्नता की खोज और उसकी प्राप्ति से ही एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है। भारत जैसे देश में जहां आर्थिक और सामाजिक असमानताएं

0: व्याप्त हैं, प्रसन्नता पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार, समाज और व्यक्ति सभी को मिलकर प्रसन्नता की दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि हर नागरिक मानसिक शांति तथा संतोष का अनुभव कर सके। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि प्रसन्नता केवल एक लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि एक सतत यात्रा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। जीवन का प्रत्येक क्षण प्रसन्नता का स्रोत हो सकता है, बशर्ते हम उसके प्रति समुचित दृष्टिकोण अपनाएं। प्रायः लोग समझते हैं कि सफलता, धन या रिश्ते मिलने पर वे प्रसन्न होंगे, परंतु यह प्रसन्नता क्षणिक होती है। यह कथन कहता है कि प्रसन्नता को एक अंतिम लक्ष्य न माने, बल्कि इसे अपनी यात्रा का भाग बनाएं। दलाई लामा का कथन है कि खुशी कोई पहले से बनाई हुई चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। यह कथन प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता, प्रसन्नता ही मार्ग है। यह गहरा विचार बताता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे भविष्य में पाया जाए, बल्कि यह एक उपाय है, एक यात्रा है जिसे हर पल किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है सफलता या बाहरी उपलब्धियों के लिए खुशी को टालने के सिवाय हमें वर्तमान क्षण में ही संतुष्टि, कृतज्ञता और आनंद खोजने पर ध्यान देना चाहिए। यह दर्शन हमें सिखाता है कि खुशी एक आंतरिक अवस्था है जिसे हमें अपने विचारों और कार्यों से विकसित करना है, न कि किसी बाहरी चीज के पूरा होने की प्रतीक्षा करना। प्रसन्नता एक गंतव्य नहीं, एक तरीका है। इसे पाने के लिए कोई अलग मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता के साथ जीना ही मार्ग है। यह कथन दार्शनिक रूप से सुझाव देता है कि प्रसन्नता को दूर के लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। यह वर्तमान में प्रसन्नता और संतुष्टि पाने के महत्व पर जोर देता है, न कि कुछ शर्तों के पूर्ण होने तक इसे स्थगित करने के लिए। प्रसन्नता एक चयन है जो कभी कभी प्रयास की मांग करता है। यह उद्धरण हाल ही में प्रसारित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थिति को देखते हुए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 147 देशों की सूची में भारत 118वें पायदान पर है। भारत की स्थिति पड़ोसी देशों यथा नेपाल और पाकिस्तान से भी खराब है। प्रसन्नता की खोज नैतिकता और सभ्यता की नींव है। लाख का कहना है कि यदि प्रसन्नता प्राप्त करने की हमारी कोई इच्छा नहीं होती तो हम भोजन करने और सोने जैसी साधारण सुखों से भी संतुष्ट रहते, परंतु प्रसन्नता की इच्छा ही हमें आगे महान और उच्च सुखों की ओर ले जाती है। संक्षेप में यह एक गहरा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हर क्षण प्रसन्न रहना सीखें, क्योंकि प्रसन्नता का कोई और मार्ग नहीं है, यही रास्ता है।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ताकार सुभाष चंद्र वर्मा की वार्ता। शीर्षक था प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म बेमिसाल से। संगीत आर डी बर्मन का है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, जिसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन का था। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म जब जब फूल खिले से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। कार्यक्रम छाया गीत आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आँखें से। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है रवि ने।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म आंखें के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक प्रसारित किया जाएगा जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कलाकार वंशिका सोती के स्वर में भजन। ये कार्यक्रम शाम 7:32 पर प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत प्रसारित होगा आज रात 10:00। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनिएगा आज रात 8:30 पर। इस कार्यक्रम में आज फिल्म केदारनाथ के गीत सुनवाए जाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय रहेगा रात 10:30। ये विवरण था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में। अब एक नज़र कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल रात 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण, जिसमें प्रस्तुति होगी आकाशवाणी झांसी की। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 9:30 पर मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पी के सिंह से शोभित शर्मा की बातचीत प्रसारित की जाएगी। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा कल शाम 6:05। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे वैज्ञानिक BEDF डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा से सुवेंद्र सिंह की भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता का विषय होगा बासमती में रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानियां। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम

एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अभिनेता जीवन द्वारा अभिनीत फिल्मों के गीत सुनवाए जाएंगे और कार्यक्रम महिला जगत सुनिएगा कल दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम में कल कहानीकार दीपा शर्मा अपनी कहानी पेश करेंगी। कहानी पाठ का शीर्षक होगा मौन प्रेम की ताकत। श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की दोनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
2: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
3: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
4: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
5: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से

0: शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निरखकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा,
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
7: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
8: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
7: चलो,
6: कहाँ
7: एडमिशन कराने?
8: खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार वंशिका सोती के गाए भजन।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप आनंद ले रहे हैं कलाकार वंशिका सोती के गाए भजन का। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला भजन।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के स्वर में फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। संगीत नदीम श्रवण का है और शब्द रचना है समीर की।

अनुराधा पौड़वाल और कुमार सानू के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये खूबसूरत सा गीत। समीर के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में फिल्म दिल है तुम्हारा से। इस गीत को भी नदीम श्रवण की जोड़ी ने ही संगीत में पिरोया है और बोल भी समीर के ही हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म दिल है तुम्हारा का ये गीत।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है तुम्हारा का ये गीत। कार्यक्रम गीत संध्या आप आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से सुन रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम के स्वर में फिल्म बेवफा सनम का ये गीत। संगीत निखिल विनय का है और शब्द रचना है अताउल्लाह खान की।

बेवफा सनम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निखिल विनय का था और शब्द रचना थी अताउल्ला खान की। स्वर था सोनू निगम और साथियों का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़ में फिल्म सनम से। समीर के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने।

पंकज उदास की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम का ये गीत। आनंद मिलिंद का संगीत था और शब्द रचना थी समीर की। कार्यक्रम गीत संध्या का आज का ये अंतिम गीत, आइए अब सुनते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है जतिन ललित ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है का ये प्यारा सा गीत।

फिल्म कुछ कुछ होता है के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साल 2018 में आई फिल्म केदारनाथ के गीत। इस फिल्म के सभी गीतों को संगीत अमित त्रिवेदी ने दिया है और गीत के बोल जो लिखे हैं वो लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। तो लीजिए पेशे खिदमत है फिल्म का पहला गीत अमित त्रिवेदी की ही आवाज़ में है।

सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म केदारनाथ का ये खूबसूरत सा गीत। फिल्म केदारनाथ साल 2018 में रिलीज हुई थी, हमने आपको पहले बताया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने। फिल्म का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया था और निर्माता थे रॉनी स्क्रूवाला। आइए कार्यक्रम का ये अगला गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ में सुनते हैं, आनंद लीजिए।

0: केदारनाथ फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
3: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक

0: पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7

0: विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
1: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: All India Radio, marking the beginning of a remarkable journey in broadcasting, information, education and culture. Post-independence, the network expanded rapidly and officially adopted the name Akashvani in 1956. To mark the occasion, Akashvani organized a cultural program named Spectrum at Akashvani's Rang Bhavan in New Delhi today. Talking to Akashvani News, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi said, Akashvani has served as the backbone of the society for generations.
1: Since the establishment of All India Radio 90 years ago, Akashvani has remained the heartbeat of its listeners and of the nation every day and every moment. Through every medium, Akashvani has continued to provide news, information and entertainment in the voices of people living in every corner of the country.
2: Samachar, Suchnaye aur Manoranjan Akashvani deti rahi.
0: India recorded the biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. India ended their campaign at the inaugural World Yogasan Championships with 114 medals, including 102 gold today. Japan came second with 11 medals, including 3 golds, while Argentina took third, led by Nabila Baraza's 2 golds and 3 silvers. Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. Sensex shed 719 points to close at 73,524. NSE Nifty slipped 244 points to settle at 23,123. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents gallantry awards to armed forces and police personnel at defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Vishakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs, to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on Air app. That's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस अहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनुआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस अहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड्स अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जम्हूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाईयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर

0: मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्तगीर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जनतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हुसूल में अहम संगे मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंबा 5 लाख रुपए तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। वहीं जनाब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के आवाम को फायदा पहुंचाएगी, अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों।
1: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज से रियासत के लाखों अहल मुस्तफदीन को फायदा पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आज लगी जबरदस्त आग में 8 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 6 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि जाए हादसे पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वजीर आजम मोदी ने महलुकीन के लवायकीन को फीकस 2,00,000 रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफसीली जांच का हुक्म जारी किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खुसूसी लम्हा था, जिसकी आवाज नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी के साथ वसत दी गई और साल 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक रक्स कलबेलिया पेश किया गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी ने नस्ल दर नस्ल समाज की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आकाशवाणी ने इत्तेलात, सकाफत और तकलीक के जरिए अवाम को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा अहम शोबों में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर लेकर आया है। आज माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल निफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। दलदली जमीनों, मैंग्रोव्स और साहली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सौरभ

0: गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: 2015 में शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन एक अहम इकदाम है जो जंगलात और माहौलियाती निजाम की बहाली के लिए वक्फ है। 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
3: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का फिर से इम्तिहान कराने के लिए इम्तिहान के शहरों की पर्ची जारी की है। ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को होना है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अलॉट किए गए शहरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: एजेंसी के जरिए जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक फिर से होने वाला यह इम्तिहान भारत के 551 शहरों और गैर ममालिक के 14 शहरों में 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और कागज के जरिए लिया जाएगा। एनटीए ने वादे किया है कि इम्तिहान के शहरों से मुतालिक जारी की गई पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उम्मीदवारों को इम्तिहान के मरकज के बारे में जानकारी देने के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि उम्मीदवार इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी करने से मुतालिक ताजा ऐलानात के लिए उसके सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए नीट यूजी का इम्तिहान इस साल 3 मई को हुआ था, लेकिन इसको पेपर लीक के इल्जाम के तनाजुर में एनटीए ने 12 मई को मनसूख कर दिया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
3: भारत ने तरमीमशुदा यूरोपीय यूनियन इंजबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी ज़राअत से मुतालिक अशिया की बरामदात जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय यूनियन ने नए जाब्तों के बाद भारत को इन मसनूआत को बरामद करने के अहल ममालिक की अपने फहरिस्त में शामिल किया है। इन जाब्तों का मकसद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुतालिक खदशात से निमटना है। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को दरामद करने वाले अहल ममालिक की फहरिस्त में भारत की शमूलियत यूरोपीय बाजार में भारतीय बरामदकारों की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। ये पेशरफ्त माही परवरी के शोबे के लिए खास तौर पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को बरामद की जाने वाली भारत की मछली और आबी मसनूआत का हजम फिलवक्त तकरीबन 1.59 अरब डॉलर है। INDIA इंतखाबी इत्तेहाद की आज दोपहर नई दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव और दीगर शामिल थे। वहीं कुछ अपोजिशन जमातों जैसे आम आदमी पार्टी और डीएमके ने खुद को इस मीटिंग से अलग रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 अपोजिशन जमातों ने INDIA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत की। जनाब खड़गे ने मजीद कहा कि INDIA इत्तेहाद की सभी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि हर 2 महीने बाद इस तरह की मीटिंग होगी और अगली मीटिंग अगस्त के महीने में तेलंगाना के हैदराबाद में होगी।
5: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
3: दूसरी जानिब नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी तर्जमान संबित पात्रा ने कहा कि आवाम पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को गैर मौसर करार दे चुके हैं और इस तरह की मीटिंगों के जरिए अब वो दोबारा अपनी अफादियत साबित करना चाहता है।
6: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।

0: भारत ने मगरबी एशिया में ताजा हमलों पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि यह ताजा पेशरफ्त पूरी बैन अवी बिरादरी के लिए बहुत ज्यादा तशवीश की बात है। भारत ने फरीकैन से कशीदगी कम करने को कहा है और कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। वजारत ने सब सिफारती हल के लिए जारी बातचीत मुकम्मल करने की भी अपील की ताकि खत्ते में अमन इस्तेकाम फिर से कायम हो सके। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिजाइल हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया में जंग बंदी को नुकसान पहुंचा है। ईरान में भारतीय सिफारतखाने ने भी ताजा हमलों के तनाजुर में भारतीय बाशिंदों को ईरान का सफर न करने की सलाह दी है। भारतीय सिफारतखाने ने यह सलाह भी दी है कि जो भारतीय बाशिंदे ईरान में हैं वो सफर के दस्तियाब वसाइल से ईरान से चले जाएं। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज मुल्क भर के 100 सनती पार्कों की तरक्की में तेजी लाने के मकसद से भव्य पोर्टल का आगाज किया। नई दिल्ली में इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भव्य पोर्टल का मकसद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ मरबूत सनती इको निज़ाम, काबिल एतबार यूटिलिटी निज़ाम, डिजिटल हुक्मरानी मैकेनिज्म, कारकुन इमदादी बुनियादी ढांचा और पायदार तरक्की खसूसियात तश्कील देना है। जनाब गोयल ने कहा कि यह पहल सरमायाकारी के लिए तैयार सनती बुनियादी ढांचे की तश्कील के जरिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाले कदम की अक्कासी करती है। भारत ने आज उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम की जब उसने न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से शिकस्त दे दी। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने भारत की एक इनिंग्स और 272 रन की पिछली फतह को भी पीछे छोड़ दिया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड अदा किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-04-81-2371-7117 या 2371-7106 और 2331-44-44। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289।

0: 0909-40-44, इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफी आगे था, केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान ले कहीं बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो
0: जी। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम जी, सब्जियों के लिए प्रणाम
0: जी।
1: नमस्कार, नमस्कार जी।
2: सब्जी, मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: ब्रह्मज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं और आजकल मोटे अनाजों की भी काफी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफी संभावना है और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज्यादा तो वहां केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं, कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है।

0: साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीरा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
0: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर किसान भाई एक या दो या ज्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है। लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए, लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस जो कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे, तो वहां पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है
1: हो जाती
0: और
1: है।
0: उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश
1: जी,
2: राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
2: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
1: डॉक्टर मीना।
0: हाँ, तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया, वो क्या है ना, ज्यादातर आपकी मिट्टियां अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है, और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज्यादा हो गई। तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना, कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है। मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल है और इसकी कमी बहुत ज्यादा है, किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा। तो
1: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर
0: बहुत जरूरी है,
1: किसान कराते रहे। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
3: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
3: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी,
3: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
1: डॉक्टर
0: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूंगा कि अपने खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीजें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूंगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि

0: तो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें, तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
2: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
0: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी, और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उस केंद्र की हो, राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है, और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सब योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो, और किसानों के जो संगठन बने आज के किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश की मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
3: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए, कितनी गहरी ली जाए?
1: जी डॉक्टर मीना।
4: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा, जो क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है, और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी वे सीजनल फसल है जो एक सीजन में खत्म होती है, उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती है, ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए, और जितना ओपन एरिया है वहां से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके, और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। समय समय पर श्रोताओं, जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ जरूर ले। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए?
4: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियां हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है, तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे

0: की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे, जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे, जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं, उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में? डॉक्टर,
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर साहब मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना आदि का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉयल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए, साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारी गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से मैं गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जाए कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जिनके माध्यम से दे सकते हैं या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाए। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
3: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
3: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
2: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूं कि हमारे यहाँ ब्लैक स्मट एक गेहूं में बीमार वो आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से सही फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगी, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीजें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको प्योद को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
4: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
4: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजातीय लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
0: जैसे इंद्रमान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे वो ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहां पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहां पे एरिया में ले जा सकते हैं कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनके अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है, और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहां पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुंच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: वहां पे ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
2: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहां से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 0112584 1670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर हम हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकल इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहां पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है
1: जी। हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
5: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
5: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी
1: जी,
5: एक
1: जी। राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछें।
5: जी, जो शहर का बेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
0: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को पहले हम उसका क्या ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जांच करा लें, क्योंकि जांच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है।

0: केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में सवाल जानना चाहूंगी कि उर्वरक और का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखो एक्सेस उर्वरक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी। और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित कर होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर शब्द उपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझे, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।
2: नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आकाशवाणी के इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आपका हार्दिक स्वागत है श्रोताओं। ये कार्यक्रम उन अनमोल गीतों को समर्पित है जो कभी श्रोताओं के दिलों की धड़कन हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ रेडियो और मंचों पर कम सुनाई देने लगे। मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपका साथी नमित राज, और अगले कुछ समय तक हम साथ मिलकर सुनेंगे हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे गीतों को, कुछ ऐसे मधुर गीतों को जिनकी खुशबू आज भी संगीत प्रेमियों के मन को महका देती है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुधा मल्होत्रा के स्वर में फिल्म बाबर से। संगीत रोशन का है और शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की।

सुधा मल्होत्रा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाबर का ये गीत। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया था रोशन ने। श्रोताओं, पुराने गीतों की यही तो खासियत है कि ये केवल धुने नहीं होते बल्कि अपने साथ यादों का एक पूरा कारवां लेकर चलते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत भी कुछ इसी तरह का है, जो हमने लिया है फिल्म आग से, गायक कलाकार मुकेश के स्वर में। संगीत राम गांगुली का है और शब्द रचना है बेहजाद लखनवी की। तो आइए सुनते हैं फिल्म आग से, गायक कलाकार मुकेश के स्वर में ये गीत।

0: जिंदा हूँ इस तरह। गायक कलाकार मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आग का ये गीत। संगीत राम गांगुली का था और शब्द रचना थी बहजाद लखनवी की। वाकई श्रोताओं, पुराने दौर के संगीतकारों और गीतकारों ने ऐसे गीत रचे हैं जो समय की कसौटी पर आज भी खरे उतरते हैं। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको ऐसे नगमे सुनवाएं जो रेडियो पर बहुत अधिक ना बजते हों लेकिन संगीत की दृष्टि से बेहद मूल्यवान हों। और इसी क्रम में कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बूंद जो बन गई मोती फिल्म से। गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर, संगीत सतीश भाटिया का है और इस गीत के बोल लिखे हैं भरत व्यास ने। तो आइए साथ में सुनते हैं सुमन कल्याणपुर के स्वर में ये गीत।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो गीत एक बड़ा ही अनोखे अंदाज का गीत है और जो बरसों तक याद भी रहा श्रोताओं के। और ये गीत हमें उस दौर में ले जाता है जब गीतों में मनोरंजन के साथ साथ जीवन की छोटी छोटी बातों को बड़े दिलचस्प अंदाज में पिरोया जाता था। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विदाई का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म बिदाई से अभी आप ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे। बड़ा ही मज़ेदार गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। ये गीत उस दौर की याद दिलाता है जब धुनों में सादगी हुआ करती थी और गायकी में बसती थी आत्मा। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में पेश खिदमत है फिल्म हुस्न का गुलाम का ये गीत, जिसे संगीत में पिरोया है रॉबिन बैनर्जी ने और बोल लिखे हैं योगेश ने।

सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म हुस्न का गुलाम से ये गीत। संगीत रॉबिन बैनर्जी का था और बोल लिखे थे योगेश ने। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब ज़्यादा वक्त कार्यक्रम में बचा नहीं है। एक गीत हम आपको और सुनवाएंगे, जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म सौदागर से। आदेश श्रीवास्तव का संगीत है और इस गीत के बोल लिखे हैं कुलवंत जानी ने।

इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये अंक अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ये एक पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम होता है, जिसमें आपके भेजे गए मैसेजेस को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जो भी गीत आप सुनना चाहते हैं उस गीत को सुनवाने का प्रयास करते हैं और आपके नाम भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो हमारे ज़्यादातर श्रोताओं को हमारा नंबर पता है, जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज भेजना है। लेकिन हमारे जो नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए हम बता देते हैं, हमारा नंबर है 9457078288। नंबर पुनः सुन लीजिए, 9457078288। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कार्यक्रम की जो पहली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है करण अर्जुन फिल्म के गीत की, और इस गीत को गायक कलाकार जिन गायक कलाकारों ने गाया है वो हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी है ज़िला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फ़हीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहाँ, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। इसी गीत को आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से भी सुनना चाहते हैं। फरमाइश करता है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहाँ। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर। इसी गीत के ख्वाहिशमंद हैं नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से फरमाइश करता है श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। वड़िंगखेड़ा पंजाब से ये मैसेज हमें भेजा है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम वेपोस्ट राहु नंगली से आचार्य सत्यवीर चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्क चौहान, भव्य, सीमा रानी, राघव चौहान, वेदांश चौहान। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से फरमाइश करता है अनिल मोहन, ऊषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। इसी गीत को सुनना चाहते हैं

बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाइश करता है पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, सोपान तायडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है मैसेज भेजकर, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। गांव फ्रांसी जिला हिसार से आप हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और करण अर्जुन फिल्म के इसी गीत के लिए अंतिम फरमाइश। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से फरमाइश करता है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म करण अर्जुन से ये प्यारा सा गीत।

करण अर्जुन फिल्म से ये गीत सुनने के बाद आइए एक बार फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है फिल्म आन मिलो सजना के गीत की, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत है, बड़ा प्यारा सा गीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाज़ार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सदर बाज़ार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। परीमहल कासगंज से आप हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली। मीरसराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। सहावर रोड गंज डुंडवारा से फरमाइश करता है मोहम्मद उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी और शमसुल कमर राही। अनारकली बाज़ार जगराव से ये मैसेज हमें लिख भेजा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव जी ने। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से आप हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मैसेज हमें लिख भेजा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। आन मिलो सजना के इसी गीत को सुनना चाहते हैं शाही मार्केट चौहारा ज़िला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना अरफात, अदीब और कादिर चौधरी। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आप हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से फरमाइश करता है राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। एक अन्य मैसेज इसी गीत के लिए चंडीगढ़ से आया है सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनका परिवार। गांव गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करनपुर राजस्थान से राजू टूटेजा, खुशदिल, उर्मिला टूटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव सेठी, करनपुरी, इस्माइल टूटेजा और अमृत बड़वाल। एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, इसमें जगह का नाम नहीं लिखा है, इमरान अंसारी का यह मैसेज है, तो आपका मैसेज भी हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है इसी गीत के लिए। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से ये मैसेज हमें भेजा है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से खिल्लू परवेज, इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। गणेशपुर एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, कुलफराज शेख,

बेबी मुस्कान का भी कार्यक्रम में मैसेज हमें मिला है, इसी गीत के लिए हमने कार्यक्रम में शामिल भी कर लिया है। एक अन्य मैसेज हमें प्राप्त हुआ है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। फरमाइश करता है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशबद सिंह राहुल। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा नायक, टिल्लू नायक और मधु नायक। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। और इस गीत की अंतिम फरमाइश हमें लिखकर भेजी है गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से। फरमाइशकर्ताओं के नाम है जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आन मिलो सजना से मोहम्मद रफ़ी के सुर में ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है फिल्म कुदरत का कानून का ये गीत है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में, और इस गीत को सुनना चाहते हैं रसूलपुर नंगला ज़िला उत्तर ज़िला बिजनौर से वैभव नामदेव, दीपक नामदेव, चुनमुन नामदेव, पूर्णिमा नामदेव, मनीष जी, उषा नामदेव और सावित्री नामदेव। इसी गीत को सुनना चाहते हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। एक अन्य मैसेज इसी गीत के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से मिला है, फरमाइश करता है सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडा ने। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से साहित्यकार एवं पर्यावरणविद रविंद्र कुमार राणा का मैसेज भी हमें कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है, उसे भी हमने इसी गीत की फरमाइश में शामिल किया है। एक अन्य मैसेज मेरठ कैंट से लिख भेजा है दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, अनिल जैन, संजय ढिंगिया, मनदीप मक्कड़ और दर्शन भाई ने। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन। मोहाली पंजाब से आप हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ये फरमाइश हमें भेजी है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबिहा निवादा ज़िला गाजीपुर से भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है, फरमाइशकर्ताओं के नाम है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से आप हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोज़ा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और इनके परिवार के सदस्य। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मारहरा दरवाज़ा एटा से, फरमाइशकर्ताओं के नाम है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी। साथ ही सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। तो श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुदरत का कानून से ये गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। तो लीजिए, आनंद लीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की

0: by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर प्रथम प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।